0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हरिओम प्रभु जी, मेरा सवाल है
2: जी।
1: मैं पहले से सत्संग जाता रहा हूँ लगातार 98 से, मेरे पास भगवान की कृपा है और क्योंकि मैं आपको सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी एकदम से निराकार की वाणी मेरे को अंदर से कैच होती जो मेरे गुरु भगवान ने बताया है। अभी मेरी जो समस्या है वो ये है कि मैं इतना गुरु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कृपा बरसाई जाती, फिर भी मैं उसी अपने आचरण में परिवर्तन नहीं लाता। तो मेरे को एक दिन विचार आया कि जो ये पुरानी परंपराएं थी जहां पर जन्म से पहले और जन्म के समय और जन्म के बाद गुरु द्वारा ज्ञान दिया जाता था, हम लोग जल्दी चढ़ जाते थे। अभी मेरे को कुछ चीजें कैच होती इन 25 सालों के बाद, तो अगर ये शिक्षा हम लोगों को बचपन से मिलती तो हम शायद आगे बढ़ते।
2: हाँ, ये तो परम सत्य बात है। इसीलिए चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का पुत्र हो, गुरुकुलों में इसीलिए भेजा जाता था कि उसे शास्त्र ज्ञान होता था। अब अभी कल कुछ बड़े बड़े अधिकारी जन बैठे थे तो उनसे यही प्रार्थना की थी कि हमें बहुत चुभ रहा है इस समय का वातावरण कि हमारी नवीन पीढ़ी जो है उसको ये ज्ञान ही नहीं हो रहा कि मैं पतन के मार्ग में जा रहा हूं, मेरा पतन हो रहा है, मेरा सर्वनाश जो करने वाली विकार की वृत्तियां हैं उनका बढ़ावा मिल रहा है। अब हमारी बात सुने समझे तब तक तो आग लग चुकी होती है, नहीं लग चुकी। अगर उनसे यही प्रार्थना की थी कि अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, अगर विद्यालयों में जो आप चाहे मतलब गुरुकुल शब्द से कहते हैं, अब गुरुकुल जैसा वातावरण तो नहीं रह गया कि कोई अपने बच्चों को ऐसे, और वैसी व्यवस्थाएं भी भंग हो चुकी हैं, इतनी आधुनिकता बढ़ चुकी है ना कि उस तरह से सतोगुण में रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अब हमको क्या चाहिए, बुद्धिमानी से जैसी परिस्थिति उसमें संभालना चाहिए। तो अगर स्कूलों में एक कोई ऐसा 30 मिनट का 20 मिनट का क्लास लगाया जाए जिसमें हम अपने शास्त्रों की बातें उनके उपयोगी अधिकार के अनुसार, उनको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा मत दो, हम कह रहे हैं उनको वैराग्य की शिक्षा मत दो, पर वो राग पूर्वक धर्म से जी सके ये तो शिक्षा दे दो कि इस अवस्था तक यदि आप ऐसे रहोगे तो आप बहुत बढ़िया गृहस्थ बन जाओगे, आप ऐसे चलोगे तो बहुत बुद्धि प्रवीण होगी, आप हर विषय में बहुत सुंदर ज्ञानी बन जाएंगे, आप ऐसे स्वस्थ रहेंगे, आप ऐसे धर्मात्मा बन जाएंगे, आप हमारे देश और समाज के उत्तम सेवक बनेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर की बात ही, जैसे आप बोले ना वो अंदर की बात, पर उसमें क्या है कि ना अपने पास ऐसी अर्थव्यवस्था है ना अपने पास कोई ऐसा अधिकार है, पर हम चाहते हैं कि हमारा देश का जो स्वरूप है वो सबसे पहले धार्मिक शब्द आता है, भारत एक धार्मिक देश है, ऐसा आता ना, दयावान देश है ये, सत्यवान, ऋषि महात्माओं के द्वारा जहां गंगा यमुना भगवान के विविध अवतार, ये एक अद्वितीय स्थान है। आप आए तो आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्या कि जैसे अब नए नए बच्चे आते हैं ना और वो अपनी दुर्दशा बताते हैं तो हृदय जल जाता है कि अगर इनको कहीं ब्रह्मचर्य का ज्ञान होता तो हम हितधाम में कई वर्ष पहले ब्रह्मचर्य के विषय की, हे नवीन पीढ़ी के भाइयों आप ध्यान दीजिए, आप जो हस्तमैथुन करते हैं, आप जो गंदे वीडियो देखते हैं, आप जो गंदी आदतें करते हैं, आप देखना आप कैसे पतित हो जाएंगे, और उसके परिणाम हिम्मत करके उनके भगवान की कृपा जो बोल पा कि मेरी इस क्रिया से ऐसी दशा हो गई, ऐसे दसियों बच्चियों ने बताया। अब हम कैसे क्या कर सकते हैं इस पर, हमारे पास तो बात ही है, अगर आप हमारी बात मान लोगे तो ये बात आपको ऊंचाई पे चढ़ा देगी, पर अब उनके कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बात पहुंच ही नहीं रही। अच्छा, टेलीविजन वो टीवी आदि में ऐसे कहानियों का सीरीज क्या कहते हैं, हाँ ऐसी बनाई जा रही है कि संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्र की प्रति कोई श्रद्धा नहीं, मनमानी गंदे आचरणों का दृश्य दिखाई देता है, नवीन बच्चे देखते हैं वैसे ही मन नवीन अवस्था में बदमाशी करने के लिए प्रेरित करता है, गंदे आचरण के लिए, अब वो तो दिखाई दे रहा है ना और प्रमाणित किया जाता है, ये सब चलता है, तो नए बच्चों को लगता है कोई पाप थोड़ी है, कोई अपराध थोड़ी है, कोई शरीर में हानि थोड़ी होगी, ये तो मनोरंजन है, बस वहीं से भ्रष्ट आचरणों को बढ़ावा मिलता है, फिर जवानी आते आते इतनी कमियां इतनी कमजोरियां कि वो गृहस्थ लायक नहीं रह जाते, वो समझ नहीं पा रहे। अब इस पर ये कि आप सब लोग मिल करके कम से कम ना विद्यालय में तो अपने घरों में अपने बच्चों को बैठा के मित्रवत ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं दे। आप मोबाइल चेक करो, आप उनको समझाओ, आप उनको इतना प्यार दुलार दो कि पिता के साथ वो तुम्हें दोस्त मानने लगे, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करने लगे, जिससे उनका उत्साह आप बढ़ा सके। नहीं तो बहुत हालत खराब है और आगे और भी खराब हो जाएगी। बच्चे बच्चियां तिनके के समान माता पिता घर परिवार को छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग भी सहयोग करें। आप लोगों का सहयोग ये कि अपने घर के बच्चों को इतना प्यार दुलार से बात करें कि वो अपनी कमजोरियां आपसे बता सकें, आप उनका निर्णय कर सकें, आप उनको सपोर्ट दें। नहीं नहीं बिल्कुल तुम जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा सुंदर ब्याह करवाएंगे, बस तुम छुपाना नहीं, हर बात हमसे शेयर करो और हम दोनों मिलकर के ऐसे, तो उनको लगेगा कि यार मेरे पापा मेरे पिताजी मेरे मित्र भी हैं, मैं उनके साथ अपनी बात कर सकता हूं। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, किसी के मोबाइल में कुछ वजह से आते रहते हैं गंदी बातों वाले कि आप इससे फोन करो, आप मिलो, आप ऐसी बात करो, तो उसने देखा और उसने बात की और उसके पास वो ब्लैकमेल कहते हैं, उसके आ गए कि देखो तुम्हारी बात तुम्हारी सब है, इतना रुपया हमें दो नहीं तो हम ये ओपन कर देंगे कि आप हमसे ऐसा ऐसा देखे ऐसा ऐसा बोले। अब वो थोड़ा बुद्धिमान था, उसने अपने पिता से बात की, खेल खेल में हमसे ऐसे हो गया, अब आप वो पुलिस से मिले संभल गई। अब वो अगर बच्चा ना कहता, अब वो पैसे चुराता उसको भेजता, अब हर बार तो फिर वो यही सोचता कि इससे तो अच्छा है मर जाए, या फिर वो बहुत ही गंदी हरकतों में उतरता अपने ही घर में, ये चुरा के बेच देना। अब उसको तो किसी तरह अपनी बात ना खुले, ये इस तरह का कोई व्यवहार हो तो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए कि तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं हम पूरा सपोर्ट देंगे, हमें कुछ अब छुपाना मत। हमें लगता है थोड़ा सत्संग सुनाना चाहिए, थोड़ी शास्त्रों की बात सुनानी चाहिए। तो हम लोग बताते जब हम बच्चे थे ना तो हमारे परिवार के जन शाम टाइम आरती करके, वहां बिजली तो थी नहीं गांव में, तो दीपक या लालटेन होती थी, जला के रख दी गई, रामायण है भागवत एस, चलो सब बैठो चुपचाप हाथ जोड़ के बैठो और सुनो 20 मिनट 30 मिनट गा गा के बड़े भाई सुला रहे, अर्थ उसका बता रहे, तो उसके संस्कार पढ़ते हैं, ए संतों के चरण दो देखो आए संतों के पास बैठो, तो उनकी बातें सुनकर के पवित्रता हृदय में आती है। अब ऐसे फिल्म दिखाई जाती है, ऐसे सीरीज दिखाए जाते हैं, है वो ड्रग्स बेचने वाले, वो व्यभिचार करने वाले, वो फ्रॉड काम करने वाले, बच्चे बच्चियों को बेचने। अब दिमाग में नई पीढ़ी क्या, मतलब सब ड्रामेबाजी है, सब पाखंड, ये सब चोर, ये ऐसी भावना आने लगी ना, अब बताओ संभलेंगे कहां से। अगर राजा भी अपने राज्य को ठीक से चला सकता था तो उसके ऊपर महात्मा होते थे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो वशिष्ठ जी, परम ज्ञानी जनक जी तो सदानंद जी, इंद्र देवराज है तो उनके ऊपर बृहस्पति गुरु, दैत्यराज तो शुक्राचार्य, हर जगह महात्माओं का आधिपत्य रहा है। हाँ क्योंकि आप माना संसार के भोग, लेकिन आप कैसे भोगोगे, आप कैसे चलोगे, ये विधान तो अध्यात्म से ही आपको पता चलेगा ना। अब अध्यात्म का अस्तित्व मिटाया जा रहा है, शास्त्रों के पन्ने फाड़े जा रहे हैं, आओ बैठो हम जैसे कहें वैसे तुम कुछ दिन आचरण करो, अगर आप रो के ना बोलो कि सत्य लिखा है तो हमें बताना। अब तुम गंदे आचरण करोगे मलिन बुद्धि तो तुम्हें शास्त्र समझ में आएंगे, झूठे तो लगेंगे ही क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। तुम सच्चे मार्ग के पथिक बनो, अगर तुम प्रणाम न करने लगो उसी शास्त्र को तो हमें, वो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा लिखा हुआ, कोई ऐसे मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा थोड़ी लिखा हुआ है। अब संत जन हम मानते हैं कि इस वेश का आश्रय लेकर गंदे आचरण वाले कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो अपने को बचाव पक्ष में इस वेश का दुरुपयोग करके मलिनता करते हैं, पर सब नहीं ऐसे। हाँ असली नोट का ही नकली होता है, अगर नकली मिला है तो असली उसका होगा। अगर हमको संतों का संग मिले और शास्त्रों का स्वाध्याय करें और हम अच्छी बातें समझें तो कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हम चाहें कि अपने घर में सात्विक वातावरण करें, और कहीं ऐसा अगर विधान हो जाए कि स्कूल में एक क्लास लगने लगे शास्त्रीय पद्धतियों का, कि भाई 20 मिनट आकर के ब्रह्मचर्य के विषय में बोलेंगे, इंद्री क्या होती है, मन की क्या चाल होती है, कैसे हम शरीर को स्वस्थ रखें, माता पिता की सेवा का क्या फल होता है, गुरुजनों को प्रणाम करने का क्या फल होता है, सुबह कितने बजे उठने से क्या लाभ मिलता है, और अगर सूर्य उदय हो गया इसके बाद उठने से क्या हानि होती है, तो बच्चों में वो चेतना जागृत हो। अब वो सत्संग की बातें तो कही जा सकती, पर जिसके आचरण में सत्य आचरण नहीं है तो केवल बातें ही बातें रहेंगी, बात में असर नहीं होगा। असर होगा जब स्वयं में वो आचरण में हो।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज। डॉक्टर साहब के यहां पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
0: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 90765065750।

वन गमन के लिए श्री राम माता कौशल्या की आज्ञा और आशीर्वाद ले चुके हैं। उसी समय आकुल सीता वहां पहुंचती हैं। सास के चरणों की वंदना करके सिर झुकाकर वहां बैठ जाती हैं। पैर की अंगुलियों के नाखून से धरती कुरेदती हुई सोच रही हैं कि किस सुकर्म का फल उन्हें प्राप्त होगा। शरीर तथा प्राण दोनों पति के साथ जाएंगे या केवल प्राणों को ही उनका साथ प्राप्त होगा। उनके सुंदर नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। पुत्र वधु की ये दशा देख माता कौशल्या उनके लिए सास ससुर और सभी कुटुंबियों के स्नेह और सद्भाव की चर्चा करती हैं। जिस सुकुमारी के पिता राजाओं के शिरोमणि जनक हैं, श्वसुर सूर्यवंश के सूर्य और पति सूर्य कुल के कमल को खिलाने वाले चंद्रमा के समान रूप और गुण के भंडार हैं, ऐसी रूप राशि और शीलवंती बहू को माता कौशल्या ने आंखों की पुतली के समान प्यार से रखा है। माता कौशल्या का श्री राम से प्रश्न है कि सीता के लिए उनकी क्या आज्ञा है। क्या विधाता ने सीता को वन के कष्ट भोगने के लिए रचा है? सीता यदि घर ही रहें तो माता कौशल्या को बड़ा सहारा मिल जाएगा।

वन गमन के लिए तैयार श्रीराम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सहे हैं, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुश कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और खूह, रीछ बाघ भेड़िये सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं डिगा पाए।

और लक्ष्मण पिता के वचन पालन हेतु वन गमन के लिए तैयार हैं। इधर सीता अपने स्वामी का साथ छोड़ अयोध्या के महलों में रहने को सहमत नहीं। कहती हैं, स्वामी के संग में पशु पक्षी उनके कुटुंब होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। उदार हृदय वन देवी और वन देवता सास ससुर की भांति उनकी देखरेख करेंगे। कंद मूल और फल अमृत के समान आहार होंगे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 620313956।
10: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारीलाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारीलाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारीलाल विजय कुमार।
4: मुरारीलाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता

0: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क 99 393 65 930।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198869793।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
9: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, सासा मूसा में भी फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जाने का मामला आया सामने। हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरौली के अंचलाधिकारी पर भी लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है राजद, और नाबालिग की पिटाई करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। सासा मूसा में नेशनल हाईवे के किनारे करोड़ों की जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर भू माफियाओं के कब्जा करने की कोशिश के मामले में अब न्यायालय में केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अब अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई भी की है, और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता शारिक इमाम APP रमेश सिंह ने कोर्ट को बताया कि आरोपी मंगल राय के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन को सासा मूसा के अजय दुबे के हाथों 1980 में बेच दिया। उसकी जांच के बाद नगर परिषद ने नगर थाने में कांड दर्ज कराया है। इस मामले में विजय राय के पिता कृपा राय के नाम पर फर्जी जमीन का दस्तावेज सासा मूसा के जमीन 22 मार्च 1947 को बना दिया गया, तब से ना दाखिल खारिज भी नहीं कराए और अब दाखिल खारिज कराने के दावा कर रहे हैं। विजय राय भू माफियाओं के एक बड़े नेटवर्क का सरगना है, जो शहर से लेकर कुचायकोट और अन्य जगहों के महंगे जमीनों का फर्जी कागजात बाप दादा के नाम से तैयार कर अपने रसूख के बल पर जाल फरेब कर कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजेंद्र नगर बस स्टैंड में पन्ना जोड़ा गया, उसी तरह से यहाँ भी पन्ना जोड़ा गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ दस्तावेज कोर्ट के सामने रखा गया और दावा किया गया कि 1947 में रजिस्ट्रार के साइन भी नहीं मिल रहे हैं। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम बाबू सिंह ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास कोई कागजात नहीं है, इनका दावा निराधार है, केस भी झूठा दर्ज किया गया है, इसलिए जमानत दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर लगातार फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में प्राथमिकी अभियुक्त शंकर चौहान, पिता स्वर्गीय नथुनी चौहान जो बड़हरा बरई पट्टी थाना गोपालपुर का निवासी है, उसके घर से पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस ने प्राथमिकी अभियुक्त पवन कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया। यह गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चैलवा गांव के परमात्मा सिंह का पुत्र है, इस पर भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। इसको भी आज पुलिस ने गिरफ्तार कर दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया। इधर राजद पार्टी ने सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने की योजना बना ली है। पार्टी का कहना है कि राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा अन्य जन समस्याओं को लेकर 9 जून को सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा और अगली कड़ी में 17 जून को जिला मुख्यालय पर भी विशाल धरना दिया जाएगा। इसकी सफलता के लिए राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह के अध्यक्षता में बैठक की गई और पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और इस बार धरना प्रदर्शन को जोर शोर से करने की नीति बनाई गई। इधर राजस्व विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि जहां बिहार के 9 अधिकारियों और कर्मियों पर राजस्व विभाग की गाज गिरी है तो वहीं गोपालगंज तक भी इसकी आंच पहुंच रही है। भ्रष्टाचार, अनियमितता और कर्तव्यहीनता के मामलों में बरौली सीओ प्रशांत कुमार पर भी आरोप लग रहा है। दाखिल खारिज के मामलों में FIFO नियम उल्लंघन सहित कई गंभीर आरोप, पेंशन कटौती, विभागीय कार्रवाई और बर्खास्तगी की अनुशंसा तक भी सुनने को आ रहा है। अब तक राज्य के 32 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिले के आम जनता विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, चाहे वो थाना हो या राजस्व विभाग हो, ब्लॉक अंचल हो, आम जनता को जगह जगह भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। आम जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ऐसे में जब किसी भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और उन पर कार्रवाई होती है तो जनता को काफी सुकून महसूस होता है। इधर माझा बाजार में एक नाबालिग बच्चे को मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर बंधक बनाकर मार पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में अब पुलिस ने संज्ञान लिया है। माझा के थाना अध्यक्ष ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया और नाबालिग बच्चे को सुरक्षित मुक्त कराते हुए उपचार के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया, जहां उसके स्वास्थ्य की स्थिति फिलहाल सामान्य और नियंत्रण में है। इस मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसमें 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध केस हुआ है। इस कांड का अनुसंधान करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर अभियुक्त अरमान अली, पिता आलमगीर अंसारी, साकिन माझागढ़ नया बाजार थाना माझा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। आज गैस को लेकर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने बताया कि जिले के कुल 3 गैस कंपनियों के माध्यम से संचालित सभी गैस गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में गैस के सिलेंडर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि HPCL, BPCL और IOCL के प्रबंधकों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में IOCL के 26 विक्रेता हैं और इनके स्टॉक में 11,899 सिलेंडर उपलब्ध हैं। BPCL के 8 थोक विक्रेता हैं और इनके पास 5,297 गैस सिलेंडर हैं। तो वहीं HPCL के 12 विक्रेता हैं और इनके पास 6,613 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस प्रकार इस जिले के 3 एजेंसी IOCL, BPCL और HPCL के विक्रेताओं के पास कुल 23,809 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मीरगंज थाना की पुलिस ने 18 लीटर देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि सुरवनिया सड़क के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां मोटरसाइकिल से 18 लीटर देशी शराब पकड़ी गई। इस मामले में अमरेंद्र दुबे, पिता माला दुबे, और फतेह कुमार सिंह, पिता चंद्रिका सिंह, ये दोनों साकिन पचफेरा थाना मीरगंज के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार कर इनकी मोटरसाइकिल और शराब को जब्त करने के बाद पुलिस ने आज इन्हें पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मीरगंज नगर परिषद ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें नगर परिषद का कहना है कि अगर नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार की शिकायत, सुझाव अथवा स्वच्छता, जलापूर्ति या सड़क तथा अन्य कोई भी अगर समस्या है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर मीरगंज नगर परिषद को संपर्क कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर 18002728047 है। इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके मीरगंज नगर परिषद की समस्याओं को रख सकते हैं। इधर नगर थाना की पुलिस ने भी चोरी के मामले में 2 अप्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सुसन माझी, पिता रामचंद्र माझी, साकिन बहोरा टोला थाना माझागढ़ जिला गोपालगंज को गिरफ्तार किया, तो वहीं मनीष कुमार, पिता नगीना महतो, साकिन साधु चौक वार्ड नंबर 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हजियापुर चौक से दोनों को गिरफ्तार किया और इन पर चोरी का मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर माझा थाना की पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट के प्राथमिकी आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मुन्ना सहनी पिता हरिंदर सहनी साकिन सहलादपुर नौका टोला थाना माझागढ़ का निवासी है। पुलिस ने इस पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया था और तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार की बहू श्वेता राज का आर्टिकल रिसर्च इश्यू इन ब्रिजिंग एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूट इनोवेशन एंड टू वे अप्रोच जो ब्लूमबेरी पब्लिकेशन के द्वारा छापा गया है, इसकी काफी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इसका ऑफिस न्यू दिल्ली लंदन एक्सफोर्ड न्यू यॉर्क सिडनी में है, जिसमें आर्टिकल छापना अपने आप में ही बहुत बड़ी कामयाबी है। आज इनके परिजनों ने इसकी जानकारी दी। श्वेता मूल रूप से वाराणसी की रहने वाली है और इनकी शादी 2020 में गोपालगंज के सामाजिक कार्यकर्ता आनंद बिहारी श्रीवास्तव के पुत्र से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों की तरक्की जबरदस्त तरीके से हो रही है। टैक्सेशन के रूप में राज रंजन इनके पति पूरे भारत में एक अलग पहचान बना रहे हैं, तो वहीं इनकी पत्नी श्वेता राज कोलकाता यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज TH के जैन कोलकाता में प्राध्यापक है। अब इनकी आर्टिकल जो इंटरनेशनल लेवल पर छप रही है उसको लेकर काफी उपलब्धि मानी जा रही है। इनके सभी जानने वाले लोगों ने श्वेता को बधाई और शुभकामनाएं दी। और आज बिहार सरकार के कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा तथा गोपालगंज के बैकुंठपुर से विधायक और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी दोनों लोग का गोपालगंज आगमन हुआ था। इस दौरान सर्वप्रथम दोनों नेताओं ने थावे माँ भवानी का दर्शन पूजन कर जिले के सुख समृद्धि की कामना के लिए प्रार्थना की। इसके बाद जिला मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा और तमाम जन प्रतिनिधि तथा पदाधिकारियों के साथ उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। देर शाम तक 20 सूत्री की बैठक चल रही थी। 20 सूत्री की बैठक में जिले के विकास कार्यों पर चर्चा करते हुए मंत्रियों ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक एक बिंदुओं पर चर्चा कर जिले में चल रही विकास कार्यों को और गति प्रदान करने की दिशा में एक अच्छी पहल शुरू की गई है। हालांकि इस बैठक की खबर मिलने तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई थी। बैठक फिलहाल चल रही है और दो दिवसीय दौरे पर दोनों मंत्री गोपालगंज हैं। रविवार को भी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और विजय सिन्हा के कुछ कार्यक्रम हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं में शिक्षा मंत्री और विजय सिन्हा कृषि मंत्री के आगमन को लेकर काफी उत्साह है। जगह जगह दोनों ही मंत्रियों का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सासामूसा में भी फर्जी दस्तावेज पर जमीन कब्जाने का मामला आया सामने। हत्या के प्रयास में दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरौली के अंचलाधिकारी पर भी लग रहा है भ्रष्टाचार का आरोप। धरना प्रदर्शन की तैयारी में जुट गया है राजद। और नाबालिग की पिटाई करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
11: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
10: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
14: ठक ठक।
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
17: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
17: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
19: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
17: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
20: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
17: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
21: दोस्तों, ये है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन। माइथोलॉजिकल कहानियों का वो सफर जिसमें हम एक साथ चलते हैं पुराने वक्त में, आस्थाओं की सड़कों पर नए पात्रों से मिलने, नए किस्सों का सामना करने। कभी युद्ध होता है, कभी प्यार होता है, कभी वैराग्य होता है, कभी तकलीफ, कभी खुशी। ये सारी जिंदगियां, ये सारे पात्र कहीं ना कहीं आपके और हमारे जैसे ही तो हैं। तो आइए इन माइथोलॉजिकल कहानियों में अपनी आस्था ढूंढते हैं, अपना विश्वास ढूंढते हैं और शायद थोड़ा सा अपने आप को ढूंढते हैं। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है राम की शक्ति पूजा। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। कुछ पलों पहले ही तो आज का युद्ध खत्म होने की घोषणा की गई थी। राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का युद्ध आज भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गया था। वैसे मैं बताऊं, अच्छाई और बुराई की ये लड़ाई तो कभी खत्म ही नहीं होती, सिर्फ दोनों पक्षों से लड़ने वाले लोग बदल जाते हैं। फिर भी उस शाम को मैं राम को थके कदमों से शिविर की तरफ लौटता देख रहा हूं। ये युद्ध जिसमें एक तरफ है वनवासी राम, बालों को जूड़ा बनाए, कंधे पर तरकश बांधे, हाथों में धनुष लिए राम, लेकिन वो राम आज थके लग रहे हैं। गले की रुद्राक्ष की मालाएं अस्त व्यस्त हैं, कंधे पर, बाहों में, इधर उधर कई घाव लगे हैं जिनसे लहू चू रहा है। जिस धनुष की टंकार से घबराकर सागर तक ने पुल बनाने के लिए रास्ता दे दिया था, वो धनुष भी राम की तरह झुका हुआ है। दूसरी तरफ रावण है, जो अभी अभी युद्ध भूमि से वापस गया है। उसका रथ मानो हथियारों का जखीरा है और फिर भी सोने से मढ़ा हुआ। सारे राक्षस सैनिक उसके रथ के आगे पीछे नाचते गाते कूदते लंका वापस गए। सैनिकों के कदम ताल से लग रहा था धरती टलमल कर रही हो। मैं सिर्फ देख सकता हूं राम को जूझते हुए, लेकिन मैं राम को हारता नहीं देख सकता। आज अपनी तरफ से तो राम ने पूरे कौशल से युद्ध लड़ा था, अपने सबसे तेज और तीखे बाण चलाए थे, लेकिन रावण न जाने किस मिट्टी का बना था। राम के हर वार को खाली कर दिया था उसने। सनसनाते राम बाण को रावण ने रास्ते में ही काट गिराया था। रावण की हर बढ़त पर राक्षसों का दल जय घोष करता और वानर सेना खींच जाती। हर असफलता के बाद राम का क्रोध बढ़ता जाता, आंखों से आग सी निकलती और बढ़ते क्रोध के साथ बाण अपने लक्ष्य से भटक जाते और रावण अट्टहास करता। आज के युद्ध में पलड़ा रावण का ही भारी रहा, तो क्या रावण के इस पराक्रम के आगे राम की सेना टिक नहीं पाएगी? क्या सीता को रावण की कैद से छुड़ाना असंभव है? निराशा के गहरे बादलों में डूबते राम धीमी चाल से शिविर की तरफ बढ़ रहे थे। पूरी सेना बिखरी चाल में पीछे चल रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान में छाते जा रहे अंधकार में राम जैसा एक विशाल पर्वत भी खो गया है। राम के पीछे पीछे पूरी सेना शिविर को लौट आई थी। सेना के प्रमुख लोग अगले दिन के युद्ध की रणनीति पर विचार करने राम के शिविर में आ गए थे। सबकी निगाहें राम पर जा टिकी थीं। बाहर अंधेरे का साम्राज्य था। आसमान घना अंधकार उगल रहा था और इस अंधेरे में न दिशा का पता चल रहा था, न हाथ को हाथ सूझ रहा था। हवा भी खामोश थी और उस खामोशी को बेरहमी से कुचल रही थी पीछे महासागर की जोरदार आवाज। राम शांत सर झुकाए बैठे थे। गुफा में सिर्फ मशाल के जलने की चट चट की आवाज आ रही थी। मैं भी इस गुफा के अंदर किनारे दुबक कर इनकी चर्चा सुनने के लिए पसीने से तर बैठा हुआ था। हम तो राम को इतना स्थिर इतना शांत जानते हैं, फिर उनके मन में ये संशय क्यों? उनके मन में रावण से हार जाने का डर क्यों? जो आज तक किसी दुश्मन से तोला भर भी नहीं डरा, जिसके तीर सीधे निशाने पर जा लगने के लिए विश्वविख्यात हैं, वही राम कल के युद्ध को लेकर इतने घबराए हुए क्यों हैं? बाहर फैला अंधकार राम के मन में भी छाता जा रहा था और ऐसे ही घने अंधकार के पलों में उनके मन में बिजली की चमक की तरह आन बसी थी वैदेही यानी सीता। वही छवि जैसी पहली बार देखी थी राजा जनक के बाग में, पहली बार देखा था राम ने। सामने थी सीता, इस तरफ राम और बीच में फूल के झब्बों से भरी एक लता। राम को याद है कैसे दोनों के बीच आंखों आंखों में बात हो गई थी। पहली बार आंखें मिली थीं और सीता की नजरें झुक गई थीं। राम को लगा था जैसे आम के नए लाल लाल पत्ते हल्की हवा में कांप रहे हों। सीता की वही छवि राम के मन में अभी तक छपी है और हमेशा रहेगी। सीता की उस छवि को याद करके राम के मन में रोमांच हो आया। राम क्षण भर को ये भूल गए कि वो आखिर बैठे कहां हैं और उनकी भुजाएं कुछ ऐसे फड़की जैसे शिव धनुष की डोरी चढ़ाते वक्त फड़की थीं। राम को याद आ गए अपने अनगिनत मंत्र सिद्ध दिव्यास्त्र, अपनी वो सारी विद्याएं जो विश्वामित्र ने उन्हें सिखाई थीं। उन्होंने खुद ताड़का सुबाहु खरदूषण जैसे राक्षसों का वध सामने मशाल में जल मर रहे पतंगों की तरह किया था। लेकिन फिर आज की रणभूमि में रावण का वो प्रचंड तेज भी याद आ गया था उनको। एक तरफ सीता के राम से भरी आंखें थीं, दूसरी तरफ रावण का खल खल अट्टहास था। राम खुद को असहाय महसूस कर रहे थे और उनकी आंखों से दो बूंद मोतियों के झर गए थे। राम का उतरा हुआ चेहरा देखकर हर कोई गुमसुम हो गया। विभीषण राम की शरण में आए मेहमान से अधिक अब दोस्त बन चुके थे। वो उठ के राम के पास आए। मित्र राम, आज आपके चेहरे पर वो तेज क्यों नहीं जिसको देखकर सारे वानर वीर दिन भर की मेहनत भूल जाते हैं? आपका खिला चेहरा देखकर ही तो इन वीरों ने सागर पर पुल बनाने जैसा कठिन काम कर दिखाया। आपके तरकश में वही तीर हैं, आप वही हैं, आपके हाथों में वही कौशल है, वही साथी संगी हैं, वही वीर सेनापति हैं, वही भाई लक्ष्मण है जिसने इंद्र को जीत लेने वाले मेघनाथ तक को हरा दिया। जब आप जीत के इतने निकट पहुंच गए हैं राघव, तो फिर ये भाव क्यों? क्या आप ऐसे हार मान लेंगे? क्या इसी दिन के लिए आपने मेरा राज्याभिषेक करके मुझको लंकापति कहना शुरू किया था? विभीषण के स्वर का आवेश बढ़ गया था। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राम की आंखों में कोई भाव नहीं आया था, जैसे विभीषण की इन ओजस्वी बातों का उन पे कोई असर ही न पड़ा हो। कुछ देर बाद राम ने अपनी खामोशी तोड़ी। मित्र, इस युद्ध को अब जीता नहीं जा सकता। ये सिर्फ राक्षसों से हो रहा युद्ध नहीं है, खुद महाशक्ति दुर्गा रावण की तरफ से युद्ध भूमि में उतर आती हैं। जिधर अन्याय है, महाशक्ति भी उस पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही हैं। राम की बात से उनके मन का गहरा अवसाद झलक रहा था। वहां मौजूद सारे लोग विकल हो गए, लेकिन जामवंत पूरी सेना में सबसे अधिक अनुभवी थे। वो अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए थे, लेकिन राम ने बोलना जारी रखा, पर अब उनका स्वर कुछ ज्यादा सहज था। मेरे जिन बाणों से समूची सृष्टि का नाश हो सकता है, वही दिव्यास्त्र रावण के सामने खाली कैसे जा रहे हैं? मैंने खुद युद्ध भूमि में मां दुर्गा के क्रोधित नयन देखे थे, और फिर मुझसे धनुष की डोरी तक नहीं खींची गई। कहते कहते राम की आवाज विचलित हो गई थी। जामवंत धीरे से उठकर राम के पास आए।
0: रघुबर, इससे इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर रावण के पास शक्ति है तो आप भी शक्ति धारण करें। उसकी आराधना का आप दृढ़ आराधना से उत्तर दें। अगर रावण अन्यायी होकर शक्ति की पूजा करके आपको संकट में डाल सकता है, तो सोचिए, आप तो न्याय की राह पर हैं, और शक्ति सिद्ध करके आप रावण को ध्वस्त कर देंगे।
21: राम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तब उन्हें उन्हीं दुर्गा जी की साधना करके शक्ति प्राप्त करनी थी, रावण से लड़ने के लिए, सिद्धि मिलने तक। जामवंत का प्रस्ताव और उस पर राम की सहमति देखकर पूरी सभा खिल उठी थी। कोने में बैठा मैं बार बार देख रहा था कि राम इस प्रस्ताव पर शायद मन ही मन विचार कर रहे हैं। उनकी कमल जैसी आंखें शून्य में कुछ ताक रही थीं। राम अचानक बोल पड़े थे कुछ, लेकिन इस बार उनकी आवाज में आवेश के बजाय विश्वास का पुट था।
14: हे दशभुजा माँ, हे दुर्गे, मैं आपकी शरण में हूं।
21: राम कुछ देर तक तो माँ दुर्गा की छवि में ही लीन रहे, फिर जब आहिस्ता से उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आसपास बैठे मंत्रियों, सेनापतियों सब ने देखा, राम के चेहरे पर मंद मुस्कुराहट थी। राम ध्यान में ही चलते हुए गुफा के मुख तक आ गए। अब उनके लिए हरियाली से अटा सामने का पर्वत ही स्वयं माता शक्ति थी। ऊपर उड़ रहे काले घने बादल, उनके बाल और पैरों पर गरजता सागर, उनका वाहन शेर, दसों दिशाएं माता के हाथ थे, और ये प्रकृति उनके वस्त्र। फिर राम ने हनुमान से कहा था, कपिवर, इस पूजा के लिए हमें 108 कमल के फूल चाहिए। अगर इससे अधिक हो तो और भी अच्छा। अगली सुबह हुई तो आसमान के माथे पर लाल रंग की किरण बिंदी की तरह चमक रही थी। राम जब अपनी पूजा पर बैठे तो आज वो अपने युद्ध वाले आसन पर नहीं थे। न हाथों में धनुष, न कंधे पर तरकश। माथे के जटाजूट स्नान के बाद खुले ही थे और कंधों तक फैले थे। राम की भीगी जटाओं से पानी अब तक चू रहा था। राम जब साधना के लिए बैठे तो दिन कब गुजर गया पता भी नहीं चला। राम की साधना और गहरी होती चली गई। राम शक्ति की पूजा में डूब गए थे। लग रहा था कि राम न दैन्यम न पलायनम के जीते जागते रूप बन गए थे। एक एक करके 5 दिन गुजर गए। हर बार जब पूरा होते ही राम एक कमल का फूल देवी के चरणों में चढ़ा दिया करते थे। राम के मुख से निकला मंत्र चारों दिशाओं में गूंजने लगा था।

0: हर मंत्र जाप पूरा होते ही राम एक एक कर कुंडलिनी जगाते हुए उन पर विजय पाते हुए देवी के अखंड स्वरूप से एकाकार होते जा रहे थे। सातवें दिन तो ऐसा लग रहा था मानो राम खुद ही शक्ति के स्वरूप बन गए हों, उनके चेहरे से तेज टपक रहा था। लेकिन तभी एक घटना घट गई, लगा पूजा अधूरी रह जाएगी। पूजा में एक फूल शायद कम पड़ गया था। राम देवी की पूजा में ध्यान मग्न थे, उनकी सारी शक्ति उनकी सारी ऊर्जा देवी के ध्यान में थी। पद्मासन में बैठे थे राम, उनकी जटाएं खुलकर कंधों पर लहरा रही थीं, आंखें बंद थीं। राम के होठों से हल्की सी बुदबुदाहट होती, मंत्र जाप की बुदबुदाहट, लेकिन उस आवाज की गूंज इतनी तेज थी कि लग रहा था सारा आसमान उससे डोल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जिस मंत्र का जाप राम कर रहे थे उसे पूरी प्रकृति दोहरा रही हो।
1: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
0: आवाज ब्रह्मांड में गूंज गई। वहां मौजूद जामवंत को रोमांच हो आया। मैं भी चुपचाप इस पूजा का भागीदार बन रहा था। अद्भुत और दिव्य दृश्य था ये, राम का मंत्र जाप। राम ने कहा
1: नमस्तस्य,
0: सारी वानर सेना ने दोहराया
1: नमस्तस्य।
0: फिर राम ने उच्चारण किया
1: नमस्तस्य,
0: सारी प्रकृति से आवाज आई
1: नमस्तस्य।
0: राम ने मंत्र पूरा किया
1: नमस्तस्य नमो नमः।
0: मंत्र का उच्चारण और जाप चल रहा था, तभी राम की गुफा में एक महिला आ गई थी। कहां से आ गई, कैसे आ गई, हमें नहीं मालूम। लेकिन वो वानर सेना को नजर नहीं आई, न लक्ष्मण को, न हनुमान को और न राम को। राम जाप में मगन थे।
1: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी।
0: इधर वो महिला राम के बिल्कुल नजदीक आ गई थी। उस महिला के सर पर हीरे जवाहरात से जगमगाता मुकुट था, लहरदार बाल खुले थे और कमर तक आ रहे थे। कमर में करधनी, पांवों में महावर। वो चल के राम के पास आई तो पैरों के घुंघरू बजने से बहुत मीठी आवाज हुई, लेकिन वो आवाज किसी ने नहीं सुनी। राम के ठीक पीछे आकर वो महिला रुक गई। उस महिला ने राम के पास पड़ा आखिरी कमल का फूल उठाया और जैसे चुपके से आई थी ना, वैसे ही चुपके से चली भी गई। वो जा रही थी और मैं चिल्ला के सबको बताना चाह रहा था देखो 108वां कमल चोरी हो गया, लेकिन ना मेरी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था, कोई भी नहीं। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, भनक तक नहीं लगी। इधर राम ने जाप का आखिरी मंत्र पढ़ा
1: दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
0: पूरा होते ही राम ने 108वें कमल के लिए हाथ बढ़ाया, कमल का फूल नहीं मिला। राम ने आंखें बंद किए ही कमल को उठाने के लिए इधर उधर टटोला, लेकिन कमल का फूल तो अपनी जगह से नदारद था। तब क्या हो, आसन से उठना तो संभव नहीं है, 7 दिनों की साधना बेकार चली जाएगी। ये कैसे हुआ, हनुमान ने तो गिनकर 108 कमल के फूल रखे थे। राम के मन में एक बार फिर से निराशा के गहन बादल घुमड़ने लगे थे। राम दुविधा में पड़ गए, आसन छोड़ देंगे तो सिद्धि अधूरी रह जाएगी। उनकी आंखों के कोर भीग गए। धिक्कार है इस जीवन को जो शुरू से विरोध ही पाता आया है, बचपन से ही। मुझे तो लग रहा था कि वो कोई और राम थे जो कभी थकते नहीं थे, जो दीनता और कर्म से पलायन नहीं जानते थे, लेकिन मैं राम का ये तेजहीन चेहरा सहन नहीं कर सकता। मैं घटनाओं को अपनी पसंद के हिसाब से नियंत्रित भी नहीं कर सकता, लेकिन राम कर सकते हैं। राम घटनाओं को मोड़ सकते हैं, क्योंकि राम ने हार कर झुकना नहीं सीखा है। मैं देख रहा हूं राम का चेहरा पल भर में निराशा के बादलों से बाहर निकलकर सूरज की तरह खिल आया है। राम सोच रहे थे, माँ मुझे हमेशा राजीव लोचन कहती थी, यानी माँ के हिसाब से मेरी आंखें कमल के फूल की तरह हैं। इनमें से एक देवी को भेंट कर दूं तो 108वां कमल पूरा हो जाएगा। पल भर की भी देरी नहीं करते हुए राम ने तरकश से तीर निकाल लिया। बाएं हाथ में लेकर राम तीर की नोक को अपनी दाहिनी आंख तक ले आए थे। मेरा दिल हाय हाय पुकार उठा। तीर की नोक राम की आंखों के पास आगे बढ़ने को थरथरा रहा था। तभी लगा हवा रुक गई है। गुफा में सागर की लहरों की आवाजें बंद हो गईं। बाहर घना अंधकार छा गया और फिर पूरी धरती डोलने लगी। मुझे लग रहा था जैसे बहुत भारी भूकंप आया हो। राम के उस तीर वाले हाथ को लाल चूनिया पहने एक हाथ ने रोक लिया था। अरे अरे, ये तो वही महिला है जो कमल चुरा के ले गई थी, तो फिर राम को रोकने क्यों आई है? राम ने उन महिला को देखा तो आसन से उठ खड़े हुए थे और सीधे उन महिला के चरणों में जा गिरे। ओ, तो ये स्वयं देवी दुर्गा हैं। जैसे ही मैंने ये सोचा, अचानक वहां इतनी तेज रोशनी हुई कि मेरे लिए कुछ देखना असंभव हो गया। लेकिन उस चौंधियाती रोशनी में भी मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूं कि उस प्रकाश पुंज के 10 हाथ थे, खुले हुए केश थे, चेहरे पे मीठी मुस्कान थी, और उस वक्त उनके 10 हाथ राम को आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सिर्फ आवाज सुन पा रहा था, हे राघव, तुम्हारी ही जय होगी। और फिर धीरे धीरे रोशनी गायब होकर राम के ही शरीर में समा गई। उनकी शक्ति पूजा सफल हो गई थी। वो अगले दिन रावण से फिर लड़ने के लिए, रावण को हराने के लिए तैयार थे। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप जब भी चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं यहीं मिलूंगा, एक नई कहानी सुनाने को तैयार, एक और यात्रा पर चलने को तैयार, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
6: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
5: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
5: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
7: सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता,
10: रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

भैया।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस, और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
6: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
7: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
8: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
9: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोकसत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने NEET UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजीम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
7: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
6: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: जब कॉलेज में जाने की बारी आई थी, मुझे बात ये सबने समझाई थी, एक चक्कर है प्यार, उसमें घूमना नहीं, समंदर सा होगा, डूबना नहीं, जरा बच के रहना, संभल के चलना, हो जाएगा बेहाल तो फिर ना कहना, और कहते कहते, सुनते सुनते, टकरा जो गया उस पार में, डर जा बेटा, लग गई तेरी, फट गया साला तू प्यार में।

0: स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर, दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव कुमार रवि ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, सिविल सर्जन और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के निदेशकों को 15 दिनों के भीतर फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 प्रमुख बिंदुओं पर अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी। इधर अग्निशमन पुलिस के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार नट ने बताया कि अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर पटना के 5 अस्पतालों और 3 होटलों को सील करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा 52 अस्पतालों और होटलों से अग्नि सुरक्षा मानकों में लापरवाही के आरोप में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में भी अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराई गई है।
1: कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्युपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जो यदि वे उसका मिक्स कर देते हैं तो कोई बात नहीं है, यदि अनुपालन नहीं करते हैं तो वहाँ के जो संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो जिला अग्निशमन पदाधिकारी श्री रितेश पांडे जी हैं वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं।
0: गौरतलब है कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एनसीसी और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में सभी कुलपतियों को निर्देश जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत राज्य के 268 अंगीभूत और 479 संबद्ध कॉलेजों में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। लगभग 60,000 एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही एनएसएस से जुड़े युवाओं को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, अग्निकांड और अन्य प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं से निपटने की जानकारी दी जाएगी। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यकता होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना की जाएगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी कल तक का समय है, इसलिए इंतजार करना चाहिए।
2: अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: राज्य के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार इंटर्नशिप गाइडलाइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी की है। नई व्यवस्था के तहत 4 वर्षीय CBCS आधारित स्नातक पाठ्यक्रम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के बाद अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप कराई जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रों को 4 से 6 सप्ताह की अवधि में कुल 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट की होगी और इसका क्रेडिट 5वें सेमेस्टर में जोड़ा जाएगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी छात्र को समूह में इंटर्नशिप करने की अनुमति नहीं होगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार क्षमता को और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। राज्य में 27 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 40 ट्रैफिक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही इन स्थानों पर 500 से अधिक CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। परिवहन विभाग के अनुसार जनवरी 2022 से अब तक 50,663 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें सबसे अधिक पटना में हिट एंड रन के मामले दर्ज किए गए। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो 200 ग्राम सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1040 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। 5 किलोग्राम भार वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपए से बढ़ाकर 386 रुपए कर दिया गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के दक्षिणी भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही उमस भरी गर्मी भी बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने आज सीमांचल के कई जिलों समेत राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है।
1: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश हुई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में बक्सर, बांका, मुंगेर और जमुई जिले में एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली ताजा जानकारी के अनुसार मानसून सामान्य गति से बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के पूर्वोत्तर भागों में मानसून सक्रिय हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों के चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे अनजान स्रोत से प्राप्त किसी भी संदेश को ना माने और न ही भुगतान करें। एनटीए ने लोगों को सतर्क करते हुए कहा है कि ऐसे संदेश आगे ना भेजें और धोखाधड़ी के झांसे में ना आए। एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने और केवल सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है। पथ निर्माण विभाग ने बक्सर बरौनी रेलखंड स्थित LC70A पर निर्माणाधीन आरओबी के धंसने के मामले में 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने बताया कि आरओबी की मुख्य संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से रेलवे प्रशासन ने आरओबी पर यातायात बंद कर दिया है। राज्य के 180 परीक्षा केंद्रों पर आज बीएड की परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर कदाचार रोकने के लिए जैमर लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों की जांच के लिए बायोमेट्रिक मशीन भी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाने के लिए पूरी जाँच की जा रही है। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर आज से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बंगलापुर मोहल्ले के एक मकान में एलपीजी गैस सिलेंडर ब्लास्ट की घटना में राजस्व विभाग के विशेष सर्वेक्षण अमीन कंचन राम समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। अररिया जिला समाहरणालय के परमान सभागार में जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति 20 सूत्री की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सह जिले के प्रभारी मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की। सुपौल जिले के दत्ता टोला क्षेत्र में तैनात SSB टीम ने एक नेपाली वाहन से 1700 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर लिया है। भोजपुर की स्थानीय अदालत ने जून 2023 में दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति और सास ससुर को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी सुनाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने वैभव सूर्यवंशी के भारतीय क्रिकेट टीम में चयन को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, वैभव टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर शीर्षक दिया है, 15 साल के वैभव से चमकी भारतीय क्रिकेट टीम। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, जीएसटी छूट वाले सस्ते दिन गुजरे, 90 दिन में 80% चीजें पहले से ज्यादा महंगी। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप 2026 के अंडर 18 के विजेता मोहम्मद रियान को 22,50,000 रुपए का चेक सौंपा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खाद्य तेलों के मानक पैकिंग साइज लागू किए। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने का निर्णय लिया। राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में स्नातक छात्रों के लिए अब इंटर्नशिप अनिवार्य होगा। और प्रदेश में कल शाम आंधी बारिश की घटना में नुकसान की खबर, दक्षिण पश्चिम मानसून के 16 जून के बाद राज्य में प्रवेश करने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
2: मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
1: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है जुदा अपने दिल भर को होने लगी है मोहम्मद।
1: अच्छा, और ये गाना आपको किसको सुनाना है?
2: और रोबीना जी, दीप्ति जी, हिमा जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी और अरिसा, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हम तो एक गाना सुनना है।
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी हम लुधियाना से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताए क्या हो रहा है?
1: बस काम हो रहा है, सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे।
0: बढ़िया है।
1: आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं 5 बजे से।
0: जी जी
1: हाँ, 7 बजे तक।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरा एक फरमाइश है, कोई राजू प्यार न करियो दिल छूट जाता है।
0: अच्छा जी, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी एक मेरा मंजीत दोस्त है, उसको सुनाना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं। आप जो इतना रेडियो सुन रहा है सबको सुनाना चाहते
0: हैं। ओके ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया ही है, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
9: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
10: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
11: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
10: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
11: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
10: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
13: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
14: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
16: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
16: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
18: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
19: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
20: कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
21: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
22: हेलो,
23: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
22: नमस्ते मैडम।
23: नमस्ते,
22: और बताइए
23: कैसे हैं आप?
22: बहुत बढ़िया, आप ना सुनाइए।
23: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है अभी?
22: अभी तो कुछ नहीं, आपके पास फोन लगा रहा है।
23: अच्छा, फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
22: गाना सुनना है वो पवन सिंह का।
23: जी, सॉन्ग बता दें।
22: सॉन्ग का नाम है धनी हो सब धन सहारे नहीं बाते।
23: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
22: तो जितना रेडियो रिंगिंग सुनने वाले बंदे हैं सबको, और साथ में आप भी।
23: जी
22: जी,
23: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: जी बहुत आपको नमस्कार।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: अच्छा,
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपका प्रोग्राम सुने बहुत अच्छा लगा, जो आपकी आवाज बुलंद है।
0: जी धन्यवाद। और सब बताएं क्या हो रहा है?
1: अभी तो लेकर आ रहे थे, टाइम है थोड़ा, देखते हैं, लग रहा है कि
0: तबीयत ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, थोड़ा धूप।
0: अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी?
1: स्वास्थ्य अभियान का जाना, मुझे स्वास्थ्य अभियान का।
0: क्या?
1: स्वास्थ्य अभियान का, सफाई कर्मचारी का।
0: जी जी, किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: जितना भी लगे हैं, मुझे स्वास्थ्य अभियान से भारत वर्ष में इनको सारे को चार महीने के पश्चात
0: फिर जाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
11: Now pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: नमस्कार।
15: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना मेरे घर परिवार में। रेडियो रंजन पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
15: हम सब बढ़िया हैं। नाम बता दे अपना।
14: रामविलास प्रसाद कुशवाहा, कृष्णपुर बगहा, पूर्वी चंपारण से।
15: ओके,
14: तुम कैसा है उधर?
15: मौसम बढ़िया है अभी फिलहाल उधर।
14: जी जी जी, यहाँ पर भी सुबह में बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है इधर भी।
15: जी चलिए, तो

0: काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सुजमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी रेडियो रेंजिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
1: ओके फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद।

0: रेडियो रिमझिम
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
0: धन्यवाद बहन। और बहन जी आप कैसे हैं अभी?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी बहन जी हम भी बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है और व्यस्त है बहन जी।
1: ओके, क्या नाम है आपका?
0: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
1: ओके, और सब बढ़िया है ना?
0: और सब बढ़िया है बहन जी। इन दिनों क्या है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ बहन जी, किसान हूँ।
1: ओके,
0: और इन दिनों मक्का की कटाई चल रही है बहन जी, और धान की कटाई भी हो रही है, और गेहूं धान की कटाई, गेहूं और चने की कटाई पहले से हो गई है।
1: हाँ, फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
0: जी बहन जी गाना सुनने से पहले बहन जी आप कौन बोल रही है? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी, प्यारी और लाजवाब पेश कर सकती है बहन जी।
1: जी मेरा नाम भारती है और मैं रेडियो रिमझिम से बोल रही हूँ।
0: हाँ तो भारती जी आपके लिए दो पंक्ति है, दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलूं।
1: जी बोलिए।
0: जी जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा जो है नदियों की तरह कल कल कल कल छल छल छल छल करके बहती रहे। और रेडियो रिमझिम में आवाज की दुनिया के बुलंद सितारे, प्यारी बहना भारती जी की आवाज जो है स्वर लहरी में, स्वर धारा में हमेशा बहती रहे। और हेलो रिमझिम का यह कारवा का सफर हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे बहन जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहन जी, तो मैं कुछ बोल दिया बहन जी।
1: जी
0: और आपके कुछ प्रशंसक श्रोता भाई बहन हैं बहन जी, इजाजत हो तो दो चार लोगों का नाम ले लूं बहन
1: जी। जी बोलिए।
0: जी हमारे सागर मध्य प्रदेश से हमारे प्रोफेसर चंद्रेश गौहर जी साहब है, जालौन उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव जी है, हमारे विजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है दुल्हापुर यूपी से, मुकेश कुमार कश्यप जी है बहन जी, और हमारे भानवीरम वार से भारत राम पटौती जी है, साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी जी है बहन जी, कन्या दमोह बालाघाट से हमारे आदरणीय झुरुआ राम साहू गुरु जी है, और डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पाटले जी है बहन जी।
1: जी
0: और आर्यन रेडियो की बहुत ही प्यारी उद्घोषिका आरजे उद्घोषिका आप ही की तरह
1: जी,
0: हमारी बहना पूनम गौतम जी है। अगर आप भी सुनते होंगे बहन जी तो आप उसको जानते होंगे।
1: जी जी
0: है ना। तो बहन जी और इन दिनों गर्मी बहुत चरम पर है बहन जी।
1: जी गर्मी तो है,
0: और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए अपने घर के सामने
1: जी, जी
0: पानी पानी भर के रखना चाहिए, ताकि वो बेजान बेजुबान जानवर जो है बहन जी वो उस पानी को वो पी करके अपना शीतलता प्रदान कर सके।
1: जी बिल्कुल।
0: और अपना सेहत का ख्याल अवश्य रखे बहन जी, क्योंकि जान है तो जहान।
1: जी बिल्कुल। फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
0: अब गीत तो ऐसा है बहन जी, एक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना है बहन जी, अरे यार सुन यारी मेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी।
1: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
0: ये गाना तो सबसे पहले तो हमारी प्यारी बहना आरजे उद्घोषिका बहन भारती जी को हम डेडिकेट करना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी अभी लिसनर श्रोता मित्रों का नाम लिया हूँ उनको भी डेडिकेट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे एफएम रिमझिम के जितने भी सुनने वाले तमाम श्रोता मित्र हैं
1: जी,
0: भाई बहन है, उनको हम डेडिकेट करना चाहेंगे बहन जी, और साथ ही साथ हमारे रेडियो रिमझिम के जितने भी आर्य उद्घोषक भाई बहना है
1: ओके,
0: उनको भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे भारती बहन जी।
1: ओके तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद बहन जी।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: नमस्कार मैडम, मैं ललन पास में बोल रहा हूँ।
17: जी जी, बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
18: क्रांति फिल्म का सुनना गाना मुझे।
17: जी,
18: क्रांति फिल्म का सुनना मुझे गाना। अब के बरस से मुझे भर दे रानी।
17: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
18: जी, मैं सभी श्रोता सुनाना चाहता हूँ और आपको भी।
17: ओके तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैडम,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माइट वॉइस में।
1: हेलो मैडम,
0: क्या नाम है आपका?
1: प्रीति।
0: और आप कहाँ से हैं?
1: कोन्हा मोड़।
0: फिर बताएं कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
1: सोई हूँ। आपके पास कॉल लगने का इंतजार कर रही थी, सोमवार से, सोमवार को, फिर बुधवार को, एकदम दिन याद करके रखी हूँ कि हाँ आपसे बात करना है।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी, बता दें।
1: आहो राजा।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आपको, सिर्फ आपको।
0: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला, सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो मैडम, नमस्कार।
13: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: जी आपको भी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप गाना सुनवाने की। आज पहला दिन है कि आपका प्रोग्राम सुने हैं रेडियो पे।
13: जी
14: हाँ, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में आप जो है अदनान सामी का जो कव्वाली एक सुनवाई है, बर्दो झोली है ना, और जो आप टोन में जो आप टोन में बोलती हो ना,
13: हाँ हाँ,
14: बहुत हमको भाता है, इतना अच्छा भाता है कि अब समय हो चुका है, ब्रेक का टाइम खत्म हो चुका है, ये आप बोलती हो ना तो अच्छा लगता है। मैं अपने टाइम से हाजिर हूँ। ये हमको अच्छा लगा सुन के, है ना, हमको बहुत अच्छा लगा है आपको प्रोग्राम जो बना के आप डाली है रेडियो पे सुना रही है आप।
13: हाँ।
14: बहुत अच्छा लगा है,
13: बहुत बहुत धन्यवाद।
14: हम मन्नान बोल रहे हैं कपूरथला से
13: जी।
14: आज कौन सा गाना सुनाइएगा मैडम?
13: बता दें आप कौन सा गाना सुनेंगे?
14: वो गाना सुना दिए झूठ बोले कौवा का
13: जी, बिल्कुल सुना देंगे। बताएं ये गाना किसको सुनाना चाहते हैं?
14: पहले तो मैडम आपको है ना, और एक बाबू नाम का है उनको सुनाना है, और एक बेनजीर है उनको सुनाना है, बाबू को सुनाना है।
13: और सब बढ़िया है ना, आप ठीक है ना?
14: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया है, आपकी दुआ से बहुत कुछ अच्छा है। अपल का बारी है बकरीद का हम लोग का
13: जी,
14: और उसी का तैयारी चल रहा है।
13: फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रह सकते साथ रेडियो रंजन में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
14: ठीक है, थैंक यू।
15: झूठ

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: अच्छा है, बताएं कैसे हैं। कुछ
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है? खाना
1: नहीं, आपका इंतजार हो रहा है, कब रिकॉर्डिंग चालू होगी।
0: हो गया? ओके,
1: जी मैडम जी,
0: और बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: बंजारा फिल्म का कभी आएगा मेरे बंजारा।
0: ओके, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो आते हैं सब दोस्तों के साथ।
0: ओके ओके, ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करें 87894-18744।
12: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
13: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
12: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
13: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
14: Now pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
14: Pick it up,
15: hello.
14: Now pick your phone up,
15: hello.
16: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो,
19: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: जी नमस्कार।
19: नमस्कार
18: जी मैडम जी, क्या हाल चाल है?
19: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं।
18: हम लोग का तो ठीक ही है
19: जी। क्या फरमाइश है आपकी, बताएं।
18: दिल है बेटा मूवी का गाना है
19: जी।
18: क्या तुम्हें पता है ए गुलशन,

0: और सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ आपको, जितने रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे
1: जी जी,
0: और हम लोग धनाओं से एक साथ मास्टर भी सुनेंगे, और हम लोग जितने रेडियो रोशन तरह में काम करते हैं, तरह का काम हम लोग सभी लोग सुनते हैं। नौशाद भाई है, गिलानी भाई है, समीम हजाम है, शाहिद मुखिया है, ये लोग सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
1: थैंक यू कैसी हैं?
0: अच्छे हैं आप अपना बताएं।
1: हम भी अच्छा हम सीमान से बोल रहे हैं मेरी।
0: अच्छा जी तो बताएं फिर क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं हो रहा है बस ऐसे ही बैठे हुए हैं।
0: कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: हमको गाना सुनना है उन्हीं नए मेहमान जुड़े वाले का गाना। नहीं है करीना पांडे का नए मेहमान जुड़े वाले का
0: जी
1: जी वही वाला सुनना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आप सभी को जितने लोग सुन रहे हैं उन सब।
0: ओके
1: मैं हाथ उनको सुनाना चाहती हूँ।
0: जी फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
14: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
14: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो।
4: हेलो, नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
4: मैं मैडम हीरा सानी बोल रहा हूँ, संबलपुर ओडिशा से।
3: जी, कैसे हैं आप?
4: ठीक है मैडम, इधर अभी बहुत गर्मी चल रहा है।
3: अच्छा जी, गर्मी उधर है?
4: बहुत गर्मी है आपके तरफ गोपालगंज में, तो गर्मी नहीं होता होगा।
3: गर्मी होता है लेकिन अभी फिलहाल मौसम ठीक है।
4: अच्छा, इधर तो बहुत 45 डिग्री होता है गर्मी।
3: हाँ, इधर भी बढ़ता है लेकिन अभी ठीक है।
4: ठीक है मैडम, तो
3: बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
4: दो आंखें 12 हाथ फिल्म का।
3: जी
4: हाँ, लता मंगेशकर का गाना है, कहीं छोटे झूठों का बड़ा सरताज निकला।
3: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
4: अरे अपने दोस्तों लोगों को।
3: अच्छा, हाँ सुन रहे हैं।
4: मेरे दोस्त लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ। और ये मेरा दोस्त है आपका, गोपालगंज में ही है, अरविंद जायसवाल।
3: जी
4: हाँ, अरविंद जायसवाल। और यही सचिन तिवारी। ठीक है मैडम, और कहिए।
3: और सब बढ़िया, आप अपना बताएं।
4: बस यही चल रहा है, धंधा पानी मंदा है, अभी गर्मी का मौसम है मैडम।
3: जी
4: हाँ, मेरा इलेक्ट्रिक का दुकान है।
3: हाँ,
4: चल रहा है।
3: हाँ,
4: ऐसे गुजर बसर चल रहा है।
3: चलेगा, अच्छे से चलेगा।
4: हाँ, और मैडम, हाँ ये कब सुनवाएंगे ये गीत?
3: रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़े वक्त के बाद चला देंगे।
4: ठीक है मैडम, ठीक है,
3: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं रमाल गुप्ता बिरला खास से बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बड़ा धूप धूप लगल बा, बड़ा घाम भइल बा। अच्छा, फसल बनी जा?
0: अच्छा जी, धूप भइल बा बहुत ज्यादा।
1: बड़ा घाम भइल बा, हवा बहते नहीं है। अच्छा, बैठल बनी है। गीत सुने के बा?
0: जी बताएं, कौन सा गाना सुने?
1: दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
0: अच्छा, और ये गाना क्योंकि सुना एक बार?
1: गाना सुनवाएंगे प्रोपराइटर हाफिज अंसारी को
0: जी,
1: और साइकिल दुकान संदापुर सतीश जी को।
0: जी जी
1: जी, इन्हीं लोगों को।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही इसके साथ रेडियो में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: नमस्कार आरती जी, दिल से धन्यवाद,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
10: आपको दिल से धन्यवाद मैम।
9: जी शुक्रिया।
10: बहुत दिनों से इंतजार था, आप सब सोचला भी है
9: जी।
10: और सब सुनाइए।
9: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
10: बस हम भी काम पे हैं
9: जी।
10: टाइम हुआ तो रुक गए, रुक के कॉल लगाए तो दूसरा कॉल लगी है ना
9: जी।
10: परसों कैसा है मौसम?
9: मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
10: बारिश हो
9: गया? मौसम कैसा है?
10: इधर तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकल रही है। नाश्ता पानी हो गया?
9: जी मेरा हो गया। आपका?
10: हमारा तो 9 बजे ड्यूटी है ना, तो नाश्ता करके तो आते हैं।
9: अच्छा,
10: अब चाय के टाइम हुआ, चाय कल होगा।
9: ओके, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
10: आज सीमा सरगम के सीमा गुप्ता का है सॉन्ग
9: जी।
10: मारही के बातें तो मार देना जान से, नजरिया के बांध से
9: जी,
10: सीमा गुप्ता का है।
9: हाँ हाँ
10: हाँ, तो वही बजा दीजिए।
9: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
10: पूरे सारे लिसनर जितने सुनने वाले हैं सब सुन लेंगे, हम तो पुराना लिसनर है ना।
9: हाँ जी,
10: बहुत दिनों से इंतजार था कि कब भारती जी का थोड़ा शो सुने कैसा है। तो कल सुने हैं तो हाँ, मैं बोला कि हाँ ठीक है ठीक है, चलिए
9: ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
10: हाँ जी।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: करिश्मा कुमारी।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: तीर्थ नारायण से
0: जी। कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: कुछ भी नहीं, आपको फर्स्ट कॉल लगा रहे हैं।
0: खाना हो गया?
1: हाँ, आपका हो गया
0: जी। फिर बताएं आप, क्या फरमाइश है आपकी?
1: हमको नीलकमल सिंह के बाद में गीत सुनना है।
0: और कौन सा सॉन्ग?
1: कोई भी बजा दीजिए।
0: आप अपनी पसंद नहीं बताएंगी?
1: व्यवसाय बजा दीजिए।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहती हैं?
1: हाँ, सबसे पहले आपको, और जितना सुन रहे हैं लव रेडियो मुझको, आप मेरे गणेश जी सुनेंगे और हम सुनेंगे।
0: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू दीदी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: हमने एक ऐसे अनोखे ग्रह की खोज की है जहाँ तरह तरह के मौसम हैं, अनजाने नजारे हैं, और जहाँ हमेशा कुछ न कुछ अजीब घटता रहता है। ये ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत ग्रह है और ये ग्रह है हमारी धरती। हमने इसके रहस्यों को समझना बस शुरू ही किया है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे लिए तो साधारण सी बात है, लेकिन न सिर्फ वो ब्रह्मांड की सबसे अजीब प्रक्रियाओं में से एक है, बल्कि उसके बिना इंसान का अस्तित्व ही नहीं होता।
7: हमारे शरीर में पानी की हर एक बूंद इस धरती पर अरबों सालों से मौजूद है। हमारे शरीर में वही पानी है जो शायद पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन या जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में था।
6: ये प्रक्रिया है बारिश। कुदरत की अनजान लेकिन ताकतवर शक्तियां इसे बनाती हैं। इसमें छिपे हैं कई रहस्य और साथ ही जीवन भी। बरसात के नहीं, रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: आसमान से हमारी धरती बहुत ही खास नजर आती है। सौर मंडल में हमारी धरती सबसे अद्भुत है, क्योंकि इस पर विशाल समंदर हैं और यहाँ के आसमान से पानी बरसता है।
9: जब आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर देखते हैं तो दो चीजें तुरंत नजर आती हैं, सफेद बादल और नीला समंदर।
6: कनाडा का वैंकूवर आइलैंड उत्तरी अमरीकी महाद्वीप की सबसे गीली जगह है। यहाँ हर साल औसतन 650 सेंटीमीटर बारिश होती है।
9: समंदर, बादल और साथ ही मेरे आसपास मौजूद काई पर लगा पानी, ये सब वाटर साइकिल का हिस्सा है। वही साइकिल जिसकी वजह से इस धरती पर जीवन है। इस साइकिल में सब कुछ शामिल है, मेरे सांस लेने से हवा में आने वाली नमी से लेकर इस काई पर लगा पानी और ऐसी नदियों तक जो फिर बहकर समंदर से जुड़ती हैं।
6: दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान जिसे डेथ वैली को भी बरसात के पानी ने आकार दिया है।
7: डेथ वैली हालांकि बहुत सूखी जगह है, लेकिन हर जगह आपको पानी से बने आकार नजर आएंगे। पानी की वजह से ही पहाड़ों के ये खूबसूरत आकार बने हैं। मेरे पीछे यहाँ पहले तेज बारिश के चलते एक छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसने इन पहाड़ों पर ये आकार बनाए, जिसने अपनी राह में आने वाली चीजों को हटा दिया और तलछट को नीचे ले आई।
6: बारिश दिखने में आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बारिश होती कैसे है, कैसे किसी अंतरिक्ष से आई चीजें या धरती के सूक्ष्म जीव आसमान से पानी बरसाने में मदद करते हैं। बारिश के रहस्य की शुरुआत होती है एक बेसिक फैक्ट से कि धरती पर हर जगह बारिश की शुरुआत तरल नहीं बल्कि ठोस रूप से होती है।
10: यहाँ इस वैंकूवर द्वीप पर इस समय मुझ पर बारिश गिर रही है, लेकिन ये बारिश की बूंदें आसमान में पानी के रूप में नहीं थी। बादलों में इनकी शुरुआत स्नो के रूप में हुई, जो बर्फ, हवा और पानी की छोटी बूंदों का मिश्रण होता है। धरती पर ज्यादातर बारिश की शुरुआत स्नो से ही होती है।
6: धरती के वातावरण के ऊपरी हिस्सों में तापमान शून्य से भी काफी कम होता है, और जैसे कि हर बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है, पानी शून्य के तापमान पर बर्फ बनता है। हालांकि आसमान में ऐसा नहीं होता,
11: पानी बर्फ में बदलना चाहता है क्योंकि तापमान शून्य से कम है, लेकिन बदल नहीं सकता। उसे एक इम्प्योरिटी यानी मिट्टी के कण की जरूरत होती है, जिसके आसपास वे बर्फ के क्रिस्टल्स बना सके, और तभी ही पानी ठोस आकार ले पाता है।
6: और धरती के वातावरण में ऐसे कई छोटे कण हैं जो ये काम करते हैं।
7: हमारे वातावरण में जो कण पाए जाते हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, जैसे कि समंदर से, जंगल में लगी आग और उससे निकलने वाले धुएं से। यहाँ डेथ वैली में भी रेत का तूफान जमीन से रेत को उठाकर आसमान में बादलों के बीच ले जाता है,
6: और कुछ बारिश बनाने वाले कण बाहर अंतरिक्ष से भी आते हैं। हर रोज 2721 किलो छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स धरती के वातावरण से टकराते हैं।
11: यकीन मानना मुश्किल है, मगर अनुमान है कि हमारी धरती हर साल लगभग 10,000 टन से भारी होती है, क्योंकि हमारी धरती छोटे माइक्रोमीटियोराइट्स के बादलों से गुजरती है।
10: वो बहुत छोटे होते हैं। माइक्रोमीटियोराइट इंसान के बाल की चौड़ाई से भी कम होते हैं, इसलिए जब वो धरती पर गिरते हैं तो उन्हें बहुत कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, और वातावरण में आने पर वो जलते नहीं हैं, जैसा कि बड़े मीटियोराइट के साथ होता है।
6: ये माइक्रोमीटियोराइट जो एक समय किसी बड़े कॉमेट का हिस्सा था, वातावरण से टकराता है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और आखिरकार छोटी छोटी बूंदों के बादलों में चला जाता है। बादलों में पानी की बूंदें क्रिस्टलाइज होना चाहती हैं, लेकिन हो नहीं सकती क्योंकि उन्हें किसी कण की जरूरत है, जैसे कि अंतरिक्ष से आया ये कण।
7: अंतरिक्ष से आए इस कण के बादलों में जाते ही पानी की बूंदें इस कण के आसपास क्रिस्टलाइज हो जाती हैं।
6: ऐसा दिन में अरबों बार होता है, और इसका प्रमाण धरती पर हर जगह है।
10: बारिश के पानी में आप खुद माइक्रोमीटियोराइट्स देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले बारिश के पानी को इकट्ठा कर लें और फिर एक चुंबक ले लें। उसके बाद इस चुंबक को पानी में 2 मिनट के लिए घुमाएं ताकि सभी कण इससे चिपक जाएं। अब अगर आप इस चुंबक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कुछ गोल कण नजर आएंगे, और बहुत मुमकिन है कि ये गोल कण माइक्रोमीटियोराइट्स हों।
6: जब पानी की बूंद माइक्रोमीटियोराइट के ऊपर क्रिस्टल बनाती है, तो ये क्रिस्टल अब खुद एक कण की तरह दूसरे बूंदों का आधार बन जाता है, और बूंदें इससे जुड़कर जमने लगती हैं।
10: एक बर्फ का क्रिस्टल दूसरी बूंदों के लिए अच्छा आधार होता है, तो मतलब जैसे ही बर्फ बनना शुरू होती है, वैसे ही एक के ऊपर एक क्रिस्टल्स बनते जाते हैं।
6: छोटे छोटे क्रिस्टल्स के जुड़ने से स्नोफ्लेक बनता है, और जब वजन बढ़ जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तब भी उसकी यात्रा पूरी नहीं होती।
7: वो वो धरती के जितना करीब आते हैं उतना तापमान बढ़ता जाता है, और जब वो गर्म हवा से गुजरते हैं तो गर्म हवा बर्फ के क्रिस्टल्स को ऊर्जा देती है।
10: ऊर्जा मिलने पर बर्फ पिघलने लगती है और बारिश का रूप लेती है,
6: और आखिरकार पानी की बूंदें जमीन पर गिरती हैं।
10: यानी बरसात के दौरान अगर आप किसी बारिश की बूंद को पकड़ते हो तो संभावना है कि आपने एक छोटे माइक्रोमीटियोराइट को पकड़ा होगा।
6: लेकिन इन बूंदों को थोड़ा और करीब से देखिए, हो सकता है इसमें कुछ और हो। धूल के कण या माइक्रोमीटियोराइट की बजाय बारिश की ये बूंदें किसी जिंदा सूक्ष्म जीव के आधार पर भी बन सकती है। लेकिन सूक्ष्म जीवों के आधार पर बारिश के गिरने से कई और अनोखी घटनाएं धरती पर होती हैं।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
14: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
15: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
16: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
15: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
17: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
15: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
17: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
15: और 90-97-61-60-02।
18: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
19: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
20: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
21: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
20: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
22: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
23: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
22: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
23: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
22: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
6: सालों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि धरती पर सभी बारिश पानी के किसी ठोस कण पर सॉलिडिफाई होने से बनती थी, लेकिन अब ये पता चला है कि कुछ बारिश आसमान में फंसे जिंदा सूक्ष्म जीव की वजह से बनती है, जो फिर से जमीन पर लौटने के इंतजार में होते हैं।
10: हम ये लंबे समय से जानते हैं कि सूक्ष्म जीव अपनी जगह बदलने के लिए वातावरण का इस्तेमाल करते हैं। बादलों के 1 क्यूबिक मीटर में 1,00,000 तक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं।
6: धरती पर हर रोज गर्म हवा वातावरण में उठती है और अपने साथ 20,00,000 टन बैक्टीरिया को ले जाती है। उन्हीं बैक्टीरिया में से एक प्रजाति है Pseudomonas syringae, जो पेड़ों और फसलों पर पलते हैं।
0: जिनमें वो फसलें भी शामिल हैं जिन्हें हम इंसान उगाते हैं। पेड़ की एक पत्ती के एक क्यूबिक सेंटीमीटर पर अलग अलग प्रकार के 1,00,000 से भी ज्यादा सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। किसान स्यूडोमोनास सिरिंगे से नफरत करते हैं क्योंकि उनमें एक अद्भुत क्षमता होती है, वो फसलों पर मौजूद पानी को बर्फ बना देते हैं, वो भी उस तापमान पर जिस तापमान पर पानी आमतौर पर बर्फ में नहीं बदलता। लेकिन स्यूडोमोनास सिरिंगे ये करता कैसे है? वक्त के साथ स्यूडोमोनास सिरिंगे ने ऐसे प्रोटीन को विकसित किया है जो पानी को बर्फ के क्रिस्टल का रूप लेने में मजबूर करता है। उसके बाद जब ठंडा पानी इन क्रिस्टल पर गिरता है तो आसानी से बर्फ बन जाता है। यहाँ दक्षिणी लुइजियाना में आमतौर पर बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन जब होती है तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब जैसे कि ये गन्ने का खेत 1 घंटे के अंदर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। स्यूडोमोनास सिरिंगे और बाकी बर्फ बनाने की क्षमता रखने वाले बैक्टीरिया जो फसलों के ऊपर उगते हैं, बर्फबारी के दौरान इन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम यहाँ प्रयोगशाला में किस तरह स्यूडोमोनास सिरिंगे काम करता है। यहाँ तरल पानी है जिसे हमने -6 डिग्री तक ठंडा किया है। गौर करिए, पानी अभी तक बर्फ नहीं बना है। अब मैं इसमें स्यूडोमोनास सिरिंगे के कल्चर को डाल रहा हूँ। और ये तुरंत जम जाता है। पानी को बर्फ में बदलने की रहस्यमय क्षमता सिर्फ पेड़ों पर बर्फ बनाने के काम नहीं आती। जब सिरिंगे बादलों में जाते हैं तो ठंडे पानी की बूंदों के संपर्क में आने पर वो पानी को बर्फ में बदलने पर मजबूर करते हैं। ये पानी की बूंदें तुरंत स्नोफ्लेक का आकार ले लेती है और पिघल कर जमीन पर गिरती है। इस तरह ये सूक्ष्म जीव दोबारा धरती पर लौट आते हैं। वो बादलों को बरसने पर मजबूर करते हैं और पानी की बूंदों के साथ धरती पर दोबारा लौट आते हैं। लेकिन शायद सिरिंगे का ये रहस्य इतना अजीब नहीं है जितना कि धरती पर गिरने वाले और हमारे शरीर में मौजूद पानी का रहस्य है। हर इंसान के शरीर में, जैसे कि आपके, वही पानी के तत्व हैं जो एक समय हर डायनासोर और धरती पर चलने वाले हर जीव में था। क्योंकि इंसान के शरीर में ज्यादातर पानी होता है, इसीलिए इंसान भी इस वर्षा चक्र का अहम हिस्सा है। इंसानों का शरीर 60% पानी का बना है, इंसानों का दिमाग 70% पानी का बना है और फेफड़ों में 90% पानी होता है और यही पानी लगातार रिसाइकल हो रहा है तब से जब से पहली बार धरती पर बरसात हुई, जिसके बाद डायनासोर का दौर आया और फिर मानव जाति का निर्माण हुआ। इस पूरे इतिहास के दौरान पानी वही था जो आज है।
1: जो भी पानी समय हमारे शरीर में है वो इस धरती पर अरबों सालों से है और शायद किसी के शरीर में वही पानी है जो पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन के शरीर में था।
0: धरती पर बारिश के तौर पर गिरने के लिए सबसे पहले पानी की बूंदों को आसमान में किसी ठोस कण पर जमना होता है, जैसे कि माइक्रोमीटियोराइट या सूक्ष्म जीव। लेकिन ये पानी आसमान में पहुंचता कैसे है? सूरज की किरणें हमारी धरती को गर्म करती है। घर, लॉन, रास्ते और बिल्डिंग की सतह से पानी धीरे धीरे गर्म होता है और भाप बनकर आसमान में ऊपर उठता है। धरती पर पानी के कण सूरज की गर्मी को सोखते हैं। इस ऊर्जा के मिलने से पानी के कण एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और लिक्विड पानी भाप में बदलता है। कुछ ही सेकंड में पानी के कण धरती से उठकर आसमान की ओर बढ़ने लगते हैं।
1: जब पानी के कण गर्म होते हैं तो वो अस्थिर होकर हल्के हो जाते हैं, तब वो गैस वाले गुब्बारे की तरह वातावरण में ऊपर उठते हैं और अपने साथ नमी ले जाते हैं।
0: पूरी धरती से 726 क्वाड्रिलियन लीटर पानी हर साल समंदर और धरती से भाप बनकर ऊपर उठता है।
1: भाप के ये कण औसतन 10 दिनों तक वातावरण में रहते हैं। इन 10 दिनों में पानी के कण हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं।
0: हर समय आसमान में लाखों करोड़ लीटर पानी होता है। अगर ये पानी एक साथ हमारी धरती पर गिरे तो समंदर और जमीन को एक इंच पानी से ढक सकता है।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
13: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
24: ठक ठक।
25: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
26: अच्छा मिला ही नहीं।
25: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
26: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
25: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
26: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
27: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
26: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
27: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
26: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
25: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
26: क्यों, क्या हुआ है?
25: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
26: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
25: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
26: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
0: जब पानी भाप के रूप में ऊपर उठता है तो ठंडा भी होता है और हर 1000 फीट पर तापमान 5.5 डिग्री से कम होता है। ठंडा होने के साथ साथ भाप घनी होती है, पानी के कण धीमे हो जाते हैं और फिर एक पल आता है जब पानी के कण एक दूसरे से टकराकर फिर जुड़ने लगते हैं और दोबारा तरल आकार ले लेते हैं। अगर पर्याप्त कण जुड़ जाए तो फिर वो बड़े होकर नजर आने लगते हैं, जिन्हें हम फिर जमीन से देख पाते हैं। इसे बादल का बनना कहते हैं।
1: हम पानी की बूंदों को जुड़ते देख सकते हैं। ये बूंदें जुड़कर सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती हैं और हमें वो बादल के रूप में नजर आती हैं।
0: सौर मंडल में बादल का बनना कोई विशेष घटना नहीं है। वेनस पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बनते हैं जो सूर्य के किरणों को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करते हैं,
11: इसीलिए वो ग्रह हमें चमकता नजर आता है और शायद इसीलिए वीनस का नाम खूबसूरती और प्यार की देवी पर रखा गया है, क्योंकि वो इतनी तेज चमकती है। लेकिन ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होता है।
0: मंगल ग्रह पर हल्के कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बनते हैं तो वहीं जुपिटर पर अमोनिया के घने बादल बनते हैं। हमारी धरती के बादलों में पानी की बूंदें बहुत छोटी और हल्की होती हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पर नहीं गिर पाती। उन्हें गिरने के लिए लाखों बूंदों को मिलकर बर्फ का क्रिस्टल बनाना होता है। और बर्फ का क्रिस्टल बनाने के लिए उन्हें किसी ठोस चीज की जरूरत होती है, और इस क्रिस्टल के लिए आधार बनने का काम धरती पर रेत के तूफान, जंगल की आग और ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाले कण, साथ ही अंतरिक्ष के माइक्रोमीटियोराइट्स और सूक्ष्म जीव करते हैं। लेकिन कभी कभी धरती पर आसमान से कुछ अनोखी चीजें भी गिरती हैं। धरती पर पानी की बारिश इस सौर मंडल की सबसे अनूठी घटना है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में कई अजीब और गरीब बरसातें होती हैं।
11: वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बरसात होती है। हमारे मुताबिक टाइटन यानी सैटर्न के चंद्र पर एक तरह की इथेन, जो कुछ हद तक मेथेन जैसी है, उसकी बारिश होती है।
0: हमारी धरती पर भी कुछ अजीब और गरीब किस्म की बरसात होती है। इतिहास में कई बार लोगों ने आसमान से मेंढक, छिपकली या मछली के गिरने की बात कही है।
11: आप माने या ना माने, पर ये मेंढक और मछलियों के गिरने की कहानियां सच हैं।
0: 20वीं सदी में इन कहानियों पर 600 खबरें लिखी गईं, जिसमें शामिल है 1906 की ऑस्ट्रेलिया की घटना और 1952 की फ्लोरिडा की घटना, जहां आसमान से मछलियां बरसी थी। 1969 में इंग्लैंड के बकिंगहैमशायर में आसमान से मेंढक गिरे थे, और 2003 में कनेक्टिकट में छोटे मेंढक के अंडों की बर्लिन शहर पर बरसने की रिपोर्ट आई थी। इस रहस्यमय बरसात के पीछे कुदरत की एक साधारण प्रक्रिया है, जिसे वाटर स्पाउट कहते हैं। पानी के ऊपर टॉर्नेडो, जिसे वाटर स्पाउट कहते हैं, 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हैं। इस रफ्तार पर सतह के करीब मौजूद सभी चीजें इस बवंडर में चली जाती हैं।
11: इस बवंडर में कई समुद्री जीव खींच लिए जाते हैं, जो फिर बरसात के साथ इंसानों पर गिरते हैं।
0: बवंडर के बंद होने के बावजूद भी हवाएं इतनी तेज होती हैं कि समुद्र के जीव 160 किलोमीटर तक आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार हवाएं शांत होती हैं और धरती की सबसे अनूठी बारिश जमीन पर गिरती है। लेकिन पानी की इस बारिश ने सदियों तक अपने रहस्य को छिपाए रखा। अब जाकर हम इंसान समझ पाए कि आसमान से बरसने वाला पानी किस तरह ठोस, तरल और भाप बनता है। ये एक ऐसी घटना है जो शायद सौर मंडल में सिर्फ धरती पर होती है। हमने ये भी जाना कि किस तरह बरसात सिर्फ तापमान या दबाव से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी, जंगल की आग, रेतीले तूफान, अंतरिक्ष के कण और कुछ अदृश्य सूक्ष्म जीवियों पर भी आधारित है। और सबसे जरूरी, किस तरह पानी की बरसात ने इस धरती को सौर मंडल के एक आम ग्रह से खास ग्रह बना दिया।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
22: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
23: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
22: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
23: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
22: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
23: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
22: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
23: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
23: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
7: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
23: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
7: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
23: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
12: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
14: समंदर में उठी एक लहर लगभग नजर ही नहीं आती, लेकिन इसकी गोद में एक राज है।
15: ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती हुई
14: सीधे किनारे की ओर जा रही है। अगर ये लहर अमेरिका के एक सबसे जाने माने शहर से टकराए तो क्या होगा? कुदरत का ये कहर लाखों करोड़ों को मौत के घाट उतार सकता है। सुनामी के रहस्यों पर से पर्दा उठेगा आज। इंसानों के लिए समंदर हमेशा से बेशकीमती चीजों का खजाना रहा है, लेकिन इसका एक और भयानक रूप भी है। कभी कभी इसकी लहरें खतरनाक सुनामी का रूप ले लेती हैं। 90% सुनामियां पानी के नीचे जबरदस्त भूकंप की वजह से बनती है।
15: सुनामी असल में क्या है? सुनामी पानी की एक दीवार है जिसमें ईंट की दीवार की ताकत होती है।
14: सुनामी समंदर की बाकी लहरों से पूरी तरह अलग है। 11 मार्च 2011 9.0 की तीव्रता से एक भूकंप ने जापान को हिला दिया और उससे उठने वाली सुनामी तोहोकू के प्रांत की ओर बढ़ी। कुछ जगहों पर इसकी लहरें 120 फुट तक ऊंची थीं। 18,000 लोग लापता हुए या मारे गए और 6,000 घायल। $235 अरब के नुकसान के साथ यह धरती की सबसे महंगी कुदरती तबाही साबित हुई। टोक्यो से करीब 480 किलोमीटर की उत्तर की ओर एक छोटा सा शहर है किसनुमा। यहाँ पर टूना पकड़ने वाले मछुआरों पर सुनामी ने अपना कहर बरसाया।
15: ये किनारे से कुछ 1.5 किलोमीटर अंदर है। ये टूना मछली पकड़ने वाला जहाज है जो कैसनुमा के बंदरगाह पर खड़ा रहता था, लेकिन सुनामी की लहरें इसे उठाकर यहाँ ले आई।
14: जापान धरती के रिंग ऑफ फायर पर बसा है, यानी पैसिफिक महासागर को घेरता हुआ वो दायरा जहां भूकंप और ज्वालामुखी आम बात है। पिछली शताब्दी में 14 बेहद खतरनाक सुनामियों के साथ जापान दुनिया का सबसे सुनामी ग्रस्त देश बना।
0: लेकिन जापान अकेला नहीं है। समंदर में भूकंप आने से अमेरिका के उत्तर पश्चिमी राज्यों में भी सुनामी आ सकती है।
6: कैसकेडिया फॉल्ट को ही ले लीजिए, जो रेखा कनाडा से वॉशिंगटन और वॉशिंगटन से ओरेगॉन तक फैली है। हम जानते हैं कि अतीत में ये तबाही मचा चुकी है। समंदर

0: जो उस सुनामी से पहले उन पेड़ों का आखिरी साल था। लेकिन सटीक तारीख एक रहस्यमय सूत्र से पता चली है।
1: जब वैज्ञानिक जापान गए तब उन्हें सन 1700 में आई सुनामी के रिकॉर्ड्स मिले। इससे ये पता चला कि अमेरिका से टकराने वाली सुनामी वही है जो जापान से भी टकराई थी। अब हम ये जान चुके थे कि सुनामी ठीक किस दिन और कितने बजे टकराई।
0: जापान में मिली जानकारी से पता चला है कि ये सुनामी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी हिस्से से 26 जनवरी सन 1700 को रात 9 बजे टकराई। आज वैज्ञानिक कोस्टस सिनोलाकस जापान आए हैं टोहोकू में आई एक सुनामी का मंजर देखने। ये उन 300 वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने शुरुआती नुकसान की जांच की थी। टूना जहाज आज भी वही है और उतना ही हैरत अंगेज है।
2: ओ, वो क्या है? ओ माय गॉड, आपने देखा? कुछ नजर आ रहा है? वो एक कार है। ये जहाज एक कार पर बैठा है। पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मलबा मेरी हाइट से ऊपर तक था, इसलिए नजर नहीं आई थी।
0: 330 टन का कहूल टकुमरून नंबर 18 आज राल्ट 210 पर खड़ा है। इसके आसपास उन इमारतों के नींव हैं जिन्हें सुनामी बहा ले गई थी। ज्यादातर सुनामियों की तरह इस सुनामी का जन्म भी समुद्र तल के सरकने से हुआ।
1: भूकंप के समय फॉल्ट की एक तरफ की जमीन अचानक नीचे धंस जाती है। समुद्र तल में अचानक आए इस बदलाव से पानी ऊपर की तरफ उछलता है और सुनामी का जन्म होता है।
0: जब समुद्र के नीचे एक जबरदस्त भूकंप आता है तो उसमें 16,000 करोड़ लीटर पानी उछालने की ताकत होती है। इसके बावजूद बीच समंदर में सुनामी के नीचे इतना पानी होता है कि उसकी लहरें शायद कुछ ही फुट ऊंची होती हैं।
1: अगर आप एक जहाज में बैठे हों और आपके नीचे से सुनामी निकल जाए तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब ये लहरें किनारे के करीब आती हैं तो समंदर की गहराई कम होती जाती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है और किनारे तक पहुँचते पहुँचते ये इतनी बड़ी हो जाती है कि सब कुछ तहस नहस कर देती है।
0: समुद्र के किनारे से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर टोहोकू में आए भूकंप से जापान का तट 60 मीटर पूर्व की ओर खिसक गया। धरती के क्रस्ट में आए इस बदलाव से पूरी धरती का वजन पुनर्वितरण हुआ। इससे धरती की एक्सिस 4 इंच से शिफ्ट हो गई और एक दिन सेकंड के लाखवें हिस्से से कम हो गया। छब्बीस दिसंबर 2004, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के करीब समंदर में भूकंप आया, जिससे हिंद महासागर में सुनामी की लहर उठी। इस जानलेवा लहरों ने किससे कहानियों को जन्म दिया है। कईयों का मानना है कि जानवर किसी भी विपदा के आने का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इस विपदा से पहले हाथी तट छोड़कर भाग गए, तो वहीं फ्लेमिंगो पक्षी भी अपने प्रजनन स्थान को छोड़ गए। स्कूबा डाइवर इस तबाही से अनजान रहे। जब तक वो ऊपर आए तो उन्हें मलबे नजर आए, लेकिन इस दहशत का एहसास तब हुआ जब पानी पर लाशें तैरने लगी। अनुमान है कि इंडोनेशिया में आए भूकंप में हिरोशिमा पर फटे परमाणु बम जैसे 23,000 बमों की शक्ति थी। इस जल प्रलय में 2,30,000 लोगों की जानें गईं और 11 देशों में लाखों लोग बेघर हो गए। यह धरती के इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी थी। सुनामी के विनाशकारी रहस्यों को समझना आसान नहीं है और हम अब जाकर इन लहरों को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं। ये वो लहरें हैं जो शहर के शहर तबाह कर सकती हैं। ये वो लहर है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC।

0: जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क 99-393-65-930।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-567 या 97-714-86-164।
9: सुनामी हमारी धरती के हर महासागर में उठी है, लेकिन 80% सुनामियों की जिम्मेदार है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। 1 अप्रैल 1946 अलास्का के लूशियन द्वीपों पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे सुनामी 2200 मील दूर हवाई के हीलो इलाके की ओर बढ़ी। इस सुनामी की 50 फुट ऊंची लहरों ने 159 लोगों की जानें ली। इसके बावजूद ये लहरें बीच समंदर में जैसे अदृश्य थी। बीच समंदर में सुनामी की लहरें बस कुछ ही फुट ऊंची होती हैं और दूर से तो वो नजर भी नहीं आती।
10: अब जाकर हमें एहसास हुआ है कि सुनामी की लहरें बाकी लहरों के मुकाबले अलग होती हैं। ये लहरें 150 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो सकती हैं।
9: लहरों की लंबाई उसके अगले और पिछले भाग से मापी जाती है, न कि साइड से। एक लंबी सुनामी की लहर अपने साथ ढेर सारी ताकत लेकर आती है, इतनी कि लहर बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है।
10: इनकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, एक जेट एयरप्लेन जितनी तेज।
9: इसकी रफ्तार को समझना आसान है, क्योंकि बीच समंदर से उठी लहरों के रास्ते में कुछ नहीं आता।
11: लहरों के ऊपर हवा है जो बाधक होती है, लेकिन बहुत कम। लहरों के नीचे समुद्र की सतह है, वो भी रोधक होती है, लेकिन बहुत कम। यानी इन लहरों को रोकने वाला कोई नहीं।
9: इतनी ऊर्जा के साथ सियाटल शहर एलियट बे से अंदर आती सुनामी का सामना कैसे करेगा? समंदर में आए भूकंप के बाद लहरें एमरल्ड सिटी के तट पर पहुंचेंगी। तट के नजदीक आने पर समुद्र ज्यादा गहरा नहीं है और लहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगती है। तेजी से आगे बढ़ रही लहर की रफ्तार अचानक कम हो जाती है और लहरें 16 फीट तक उछलकर शहर की सड़कों पर कब्जा कर लेती है। अब चूंकि हमारा अनुभव हमेशा साधारण लहरों के साथ रहा है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते कि आखिर सुनामी की लहरें इतनी अलग कैसे हैं।
4: हमें अब एहसास हुआ है कि एक साधारण लहर और सुनामी की लहर में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है।
9: आमतौर पर लहरें हवा से बनती हैं। हवा से बनने वाली ये लहरें कुछ 100 मीटर लंबी होती हैं और यही अंतर है साधारण और भूकंप से बनने वाली सुनामी की लहरों में। सुनामी अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में आए 9.2 तीव्रता के भूकंप से इस सुनामी का जन्म हुआ था। ये उत्तरी अमेरिका का अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था। अलास्का में 119 लोग गुमशुदा हो गए और समुद्र तट पर मौजूद पूरी की पूरी बिरादरी तबाह हो गई। इस तबाही के बाद इमरजेंसी क्रू और फिर इंजीनियर्स घटना स्थल पर आए इस उम्मीद से कि यहां से मिलने वाले सुराखों पर वो भविष्य में सुनामी का सामना कर पाएंगे। जापान के उनागावा में 2011 में आई सुनामी ने इमारतों की फाउंडेशंस पर हमला किया और पूरी की पूरी इमारतें ढह गईं।
12: यहां जो नजर आ रहा है वो एक उदाहरण है कि हम किस तरह अपनी इमारतें बनाते थे। जैसे ही पानी नीचे जाता है तो वो इमारत को उठा लेता है और इमारत तैरने लगती है। अब जैसे ही एक बड़ी लहर आती है शुक, तो पूरी इमारत गिर जाती है। मेरे मुताबिक ये उदाहरण इंजीनियरिंग की हर किताब में आने वाले अगले 10 सालों तक रहेगा।
9: दूसरी लहर जिसने इस इमारत को पलट दिया सुनामी के एक और रहस्य को खोलती है। सुनामी की लहरें एक के पीछे एक आती हैं, जिन्हें वेव ट्रेन्स कहते हैं, और हो सकता है सबसे बड़ी लहर पहली लहर के एक घंटे बाद आए। इतना ही नहीं, सुनामी की रफ्तार तबाही में मुख्य भूमिका निभाती है। इस रफ्तार के चलते सुनामी हजारों मील की यात्रा तय करके तट तक पहुंचती है।
4: सुनामी सिर्फ एक दिन में पूरे पैसिफिक महासागर में प्रलय ला सकती है। सच तो यह है कि सुनामी के लिए पैसिफिक महासागर किसी तालाब की तरह है।
9: टोहोकू सुनामी 5000 मील दूर कैलिफोर्निया के सांता क्रूज शहर में 9 घंटों बाद पहुंची। हालांकि समंदर का स्तर सिर्फ कुछ फीट बढ़ा, लेकिन पानी बंदरगाह में फनल की तरह बहने लगा और आश्रय ले रही सभी नाव बर्बाद हो गई। पानी के बहाव ने डॉक को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और हजारों नाव नष्ट हो गई। कुल मिलाकर कैलिफोर्निया के तट को 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। हालांकि ज्यादातर सुनामियों का जन्म समंदर में आए भूकंप से होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सुनामी ला सकती हैं, कुछ जो धरती पर होती है और कुछ जो अंतरिक्ष से आती है।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
16: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
17: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
16: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
16: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
18: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
19: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
18: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
20: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
21: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
22: इक्कीसवीं सदी के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर ऐसे उपकरण लगाए हैं जो उन्हें सैटेलाइट द्वारा सुनामी के आने से घंटों पहले ही चेतावनी दे सकते हैं। लेकिन जब तट के करीब भूकंप से सुनामी बनती है तो इस चेतावनी से भागने का समय ही नहीं रहता। अगली सुनामी हमारी धरती के तट से कब टकराएगी और इसका हमारे जान माल पर क्या नुकसान होगा, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि अगले सैकड़ों या शायद हजारों सालों में इंसान कुदरत के इस प्रकोप को रोकने का तरीका जरूर ढूंढ लेगा, लेकिन तब तक सुनामी हमारी धरती के सबसे खतरनाक और भयानक रहस्य के रूप में आतंक फैलाती रहेगी।
23: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
24: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
23: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
25: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
23: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
25: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
23: और 90-97-61-60-02।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM-Z पर।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी, जी।
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
4: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
7: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
10: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
11: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
12: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
10: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
4: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: मैं भी बनूंगा।

0: आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर।
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमज जेड पर।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ऑनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमज।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमज।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा,
12: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
14: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
14: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
8: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद के ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आंख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसी डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून कैसन बानी रुआ सबे उम्मीद करत बानी रुआ सबे ठीक होके मौर रहा सुन रहल बानी रेडियो रिमझिम 90.4 भोजपुरी एक्सप्रेस के और हम बानी रुआ सबे के रेडियो दोस्त आरजे सोनी रुआ सबे के बीच हाजिर हो चुकल बानी आपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस के साथे। तो अगर रुआ भी जुड़े के चाहते नहीं सो में जुड़े खातिर माध्यम बाटे व्हाट्सएप कॉल रुआ जौन माध्यम से चाहे सो में सफर कर सकता नहीं। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े खातिर नंबर बाटे 98-527-88-291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर व्हाट्सएप ना यूज करें नहीं तो कॉल के माध्यम बाटे नंबर बाटे 72-77-16-65-96। जी हाँ 72-77-16-65-96 पे कॉल करी और जुड़ जाइए अपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस से। तो चलिए जब तक रुआ सबे के मैसेज पहुँचा था तब तक एंजॉय कर जाओ नीलकमल के आवाज़ में एक बढ़िया सा गाना रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: जाओ कन्या।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रेडियो रंजिम 90.4 FM पे रहुआ सबे क्या पंसो भोजप्रिया एक्सप्रेस में 2:06 हो चुकल बे स्टूडेंट घड़ी में और अभी से लेके शाम के 5 बजे तक हम रुआ सबे के साथ बानी रुआ सबे के फरमाइश के साथ बानी। तो अगर रुआ भी जुड़े के चाहते नहीं शो में जुड़े खातिर माध्यम बा व्हाट्सएप कॉल रुआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकत नहीं व्हाट्सएप से जुड़े खाते नंबर बा 98 527 88 291 पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर कॉल करी 72 77 16 65 96 पे और जुड़ जाइए अपन सो भोजप्रिय एक्सप्रेस से। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के तरफ बढ़े तो काफ़ी सारा मैसेज बा और कॉल भी आवल शुरू हो चुकल बा। तो चलिए पहला मैसेज बा लिखा था नहीं हेलो मैम सरफरोज अली गोपालगंज से और गाना सुने के बाद दिल की गलती बा खेसारी लाल के। तो बिल्कुल गाने का फरमाइश बा प्ले करे के पूरा कोशिश बा बहुत बहुत स्वागत बा। यहाँ लिखा था नहीं कि हम राकेश शर्मा अहमदनगर महाराष्ट्र से और गाना सुने के चाहते हैं। तो बिल्कुल गाना के फरमाइश बा प्ले करें और चला था चक्कर स्लीपिया से गाने के फरमाइश के साथ बानी। तो बिल्कुल और टिकट कन्फर्म हुई बहुत बहुत स्वागत बटे। यहाँ दिनेश मिश्रा जुड़ चुकल बानी दिल्ली से लिखा था नहीं कि हम ठीक बानी रहुआ कैसन बानी हम भी बिल्कुल मस्त बिंदास जकास बानी रहुआ सबे के बीच हाजिर बानी बहुत बहुत स्वागत बटे शो में आगे बढ़े में को। और यहाँ मैसेज बाटे और लिखा था नहीं कि हम भी जुड़ गए बानी और निशुकांत राय जुड़ल बानी पचफेरा से और गाना सुनने के चाहते हैं। तो बिल्कुल और गाने के फरमाइश बा प्ले करें बहुत बहुत स्वागत बटे बनरी साथ में सुनत रही रेडियो रिमसिम के। और यहाँ मरून कलर सड़िया के फरमाइश बटे सद्दाम मुंबई से जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे। अहमद अली बानी सारा वार्ड नंबर 1 से लिखा था नहीं गुड आफ्टरनून सोनी जी का हाल बार आउर और खाना खा ले बानी की ना तबीयत ठीक बानो बिल्कुल तबीयत भी ठीक बा खाना भी खा ले बानी और बिल्कुल बढ़िया बानी रुआ सभी के बीच बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी। और आगे बढ़े मियाँ उमा शंकर मिश्रा जुड़ चुकल बानी दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत बटे। और आगे लिखा था नहीं कि रुआ कहाँ चल जात बानी नहीं किया होता रेडियो सुने में मज़ा नहीं किया पूरा बेकार हो जाता तो कुछ काम रहा था चौना की वजह से ना आवे पावता नहीं। फिलहाल बढ़े में आगे आज के अगला टिकट और पहला टिकट कंफर्म करें सरफरोज अली बानी अकिल टोला गोपालगंज से और यहाँ के सुनने के बाद गाना दिल की गलती बा खेसारी लाल की आवाज़ में। तो चली रहा टिकट कंफर्म हो गल बा इंजॉय करी अपन गाना के और सरुआ सभी भी इंजॉय करी सरफरोज अली जी की फरमाइश पे दिल की गलती बा सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमसिम पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बने रुवा सबे के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM में रुवा सबे के अपन शो भोजपुरी एक्सप्रेस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के तरफ बढ़े तक काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा। दीपक जी जुड़ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और यहाँ वारिस खान आ चुकल बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुवा के भी। बड़े मागे यहाँ एक और मैसेज वाली का तनिक नमस्ते नमस्कार। और प्रकाश माई जुड़ चुकी माझी जुड़ चुकल बानी मानिकपुर गोपालगंज से, और गाने के फरमाइश के साथ है बानी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर से सुन रहा बानी। बहुत बहुत स्वागत बटे रोगा के भी शो में बन रही साथ में सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के। और धनेश मिश्रा बानी यहाँ की तरफ से भी गाने के फरमाइश बानी। यहाँ एक और मैसेज बा उस्मान अंसारी कलीम अंसारी शमसुल जी जुड़ल बानी और लिखा तनी कि गाना सुने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ में तो आवाज़ पहुँचा था हमारे रोगा पास। तो हम रोगा के बता दी कि भोजपुरी एक्सप्रेस के कार्यक्रम में इनमें भोजपुरी गाना के ही फरमाइश करी, लेकिन गाना अच्छा हो गया कि चाहिए अश्लील गाना के बिल्कुल फरमाइश ना करी। और आप सभी से हमारा अनुरोध बाटे कि रुआ लोग भी अगर गाने के फरमाइश के लिए बनी तो बढ़िया गाना के फरमाइश करी, कोई भी आपत्ति जाना गाना के फरमाइश ना करी। और यहाँ उमा शंकर मिश्रा बानी दिल्ली से लिखा था नहीं कि हमके भी एक गाना सुने के बाद तो सुना दी, बिल्कुल गाने के फरमाइश पर प्ले करें बढ़े आप आगे। यहाँ संजय शर्मा जुड़ल बानी लिखा था नहीं नमस्ते, हम भी जुड़ चुकल बानी हरिहरपुर से, और गाना सुने के बाद तो बिल्कुल गाने के फरमाइश पर प्ले करें आगे। यहाँ मैसेज वाले कहते हैं नमस्ते नमस्कार प्रणाम गुड आफ्टरनून से माता जी शिव सागर दीवाना जीवानी जम्मू एंड कश्मीर से, और गाने के फरमाइश के साथ बनी तो बिल्कुल प्ले करें बहुत बहुत स्वागत आगे। यहाँ दिलीप कुमार ठाकुर जुड़ चुकल बानी मिर्जापुर मोहाली पंजाब से लिखा था नहीं कि हमरो फरमाइश बा तो बिल्कुल फरमाइश बा प्ले करें बहुत बहुत स्वागत बटे। सत्यम कुमार बानी लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत बटे, गाने के फरमाइश बा बिल्कुल प्ले करें बने रही साथ में। और अगला टिकट कन्फर्म करें हमारे पास गाने के फरमाइश पहुँचल बा कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात कर जाओ की बानी कहाँ से और गाने के फरमाइश का बा। हेलो
1: जी, हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत रेडियो रूम जिम में
1: जी। हम दरगाह से बोल रहे
0: जी, का हाल चाल बानी सर जी?
1: ठीक बा, ठीक बानी
0: जी, बिल्कुल बढ़िया बानी।
1: दिन तो बड़ा खराब होता,
0: अब ना दिन खराब हुई तक कब हुई
1: जून चला था करी। हम भोजपुरी गाना तो सुने नहीं ना, मगर वो गाना सुना दी रुआ तो लीची वाला लीची के सीजन खेसारी लाल के में नहीं की आवाज लीची वाला
0: खेसारी लाल के आवाज में लीची के गाना बा
1: खेसारी लाल के बागे कोई लेडीज के आवाज में बा
0: मुजफ्फरपुर के लीची है वो गाना बा
1: ना वो तो बहुत पुराना गाना
0: है। नया गाना?
1: नया गाना बा लीची वाला
0: तो हम तो ना सुन ले बानी जी।
1: हम सुन ले बानी खैर उम्मीद जाता।
0: अच्छा रुकिए देखा था नहीं शायद हो के
1: हो जाता बाजी
0: प्रमोद प्रेमी की आवाज में बका।
1: अब हमरा माने एगो लेडीज की आवाज में हां ऐसा ही कोई कोई की आवाज में बा, मगर देर दिन हो गए वो सुन ले रहनी रेडियो रिमझिम पर। आई वो हमर पति जी भी वो बहुत ही रुनिकिया लगानवा बजवा था
0: आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल के लिए।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी निशा रमा जी के फरमाइश रहे और बढ़े में आगे आज की अगला फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज बाटे और बजाजी रोड लालगंज से एमडी नौसाद जीवानी एमडी सदाब जीवानी बहुत बहुत स्वागत बटे फरमाइश बात है बिल्कुल प्ले करें में आगे यहाँ एक और मैसेज बा लिखा था नहीं कि लीची वाला गाना था खोज लेनी एक एक एक करके और मैसेज करे वाला बानी धनेश मिश्रा जी लिखा था नहीं कि सोनी जी तो टैलेंटेड वर्ल्ड बानी और आगे बढ़े सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे अली अख्तर बानी कश्मीर से बहुत बहुत स्वागत बटे गाने के फरमाइश बात है बिल्कुल प्ले करें। प्रीति रविदास जी बानी बिलेगढ़ की दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से और गाना सुने के बाद पटना से पाकिस्तान के तो बिल्कुल गाने के फरमाइश बार प्ले करें। फिलहाल अगला टिकट कंफर्म करें हम यहाँ हमारा पास फरमाइश पहुँचल बाटे अहमदनगर महाराष्ट्र से राकेश शर्मा जी बानी और यहाँ के सुने के बाद गाना चलता चक्कर सिलिपिया से तो चलिए प्ले कर दिले बानी गाना राउर इन्जॉय करिए अपन गाना के रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानू नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
6: क्यों, क्या हुआ है?
5: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
6: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
5: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
6: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा वानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और बढ़े मागे आज के अगला फरमाइश के तरफ। उससे पहले यहाँ बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेज बाटे और मैसेज बाटे लिखा था नहीं, हेलो सोनी जी नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, और हमके भी गाना सुने के बाटे तो बिल्कुल गाने की फरमाइश बा प्ले करें। और गाने की फरमाइश बा बजरिया में राजा पिटा जी हैं और सुजीत कुमार जी वानी लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत बाटे। बड़े मागे यहाँ मैसेज बाटे और लिखा था नहीं, हेलो हाय नमस्ते सोनी जी, कैसन बानी भोजपुरी एक्सप्रेस से हम भी जुड़ गए बानी, गाना सुनवा दी और गाना सुनवा दे। मैसेज करे वाला बानी रोहित जी देहरादून से बहुत बहुत स्वागत बाटे। यहाँ एक और मैसेज बाटे और मैसेज करके डिलीट कर दिले बानी तो ऐसा मत करी। और फरमाइश बाटे पर नाम मेंशन नहीं के नाम जरूर बताएं कि वानी कहाँ से। और सोनू प्रजापति वानी नासिक से बहुत बहुत स्वागत बाटे और फरमाइश बात प्ले करे की कोशिश रही। और जब भी आप लोग मैसेज करता नहीं तो साथ में अपना नाम पता जरूर मेंशन करी कि वानी कहाँ से। और बड़े मागे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें दनेश मिश्रा जी वानी दिल्ली से और यहाँ का सुने के बाद गाना तो चली रहा और टिकट कन्फर्म होता आवाज़ पहुँचा था। अपन गाने की इंजॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।
1: जवाब हमारा चाहिए का कहत।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सरलवानी और कार्यक्रम बटे भोजपुरी एक्सप्रेस का। और अभी गाना सुनत रहे सर धनेश मिश्रा जी के फरमाइश रहे दिल्ली से, और कहा तनिक की पूरा सुनाए। हम 10 मिनट के गाना बा पूरा तनिक ही सुना सकत, लेकिन कोशिश करनी है कि सुना दी। और लिखा तनिक दिल खुश कर देनी मैम। और बड़े में आगे यहाँ मैसेज बटे लिखा तनिक कॉल नहीं की उठावत, तो कॉल तो बिल्कुल उठाओ तनी और मैसेज करे वाला बानी। अहमद अली जी सारे अवार्ड नंबर 1 से, और जब कॉल के बारी आओता तब कॉल रिसीव करते नहीं। बड़े मागे यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोषक महोदय जी कैसन बानी जी, बिल्कुल बढ़िया। और आगे लिखा था नहीं कि प्यार नहीं हरे तक रही कि ससुरारी तक, गजब के गाना बटे। और मैसेज करे वाला बानी लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी, बहुत बहुत स्वागत बटे। एक और यहाँ मैसेज बटे लिखा था नहीं कि हमरो गाना सुना दी, बिल्कुल राहुल भी गाना के फरमाइश पर प्ले करें बना रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के। दुर्गा प्रसाद जुड़ चुकल बनी सिवान से, बहुत बहुत स्वागत बटे शो में। और आज के अगला फरमाइश की तरफ बढ़े हैं, और अगला फरमाइश बटे कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाना किस कौन बा। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम में। वालेकुम सलाम, बिल्कुल बढ़िया रहो, बताए कैसे
1: कैसन बानी।
0: बिल्कुल बढ़िया बानी जी, अपने के बताए कैसन बानी।
1: हम तो ठीक है बानी, परेशान कर बानी बहुत हम
0: के। अब बताए जब गाना चला था तो हम कैसे कॉल रिसीव करी।
1: एकरा पहले आ जैसे हमारे कोई महिला दोस्त के के लाग गया।
0: हां तब एमे तो हमार गलती नहीं कि हम कॉल रिसीव करे गई नहीं। अब जेकर लग साथ दे राहुल बारी आये तो रिसीव हो गए कॉल।
1: चल खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो गाना कौन सुना दी बता दी।
1: गाना खाना वाना खाई है कि ना।
0: हाँ जी खाना पीना हो गए बाबी ले, बाकी थोड़े रही।
1: गाना हमका सुना दी बहुत ध्यान लगता।
0: अच्छा
1: चलिए
0: ठीक बात, प्ले कर दिले बानी गाना।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
6: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
5: तो देर मत कीजिए,
6: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बानी रुवा सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे रुवा सभी का 500 भोजपुरी एक्सप्रेस में। अगर रुवा भी जुड़े के चाहता नहीं शो में जुड़े खातिर माध्यम बटे व्हाट्सएप और कॉल। व्हाट्सएप से जुड़े के चाहता नहीं नंबर 98 527 88 291।

पे व्हाट्सएप मैसेज करी या फिर कॉल करी 72776665 पे। और यहाँ बढ़े मागे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज बैठे लिखा था कि सोनी जी गलत बात वा अभी तक बताई ना कि दोपहर समाचार कब चली। और मैसेज करे वाला बानी सरफरोज अली गोपालगंज से और दोपहर समाचार के बाद बात तो चल भी गई और बंद भी हो चुकल। और बढ़े मागे एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था कि बहुत बहुत शुक्रिया गाना बजाए खातिर धन्यवाद। और अहमद अली बानी सारे वार्ड नंबर एक से और बढ़े मागे आज के अगला फरमाइश की तरफ। और अगला फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज बा लिखा था कि हमरो टिकट कन्फर्म कर दी। बिल्कुल राउ टिकट भी कन्फर्म हुई। और गाना कौन सुने के बाद जरूर बताई बिना बतैले कौन सा गाना के फरमाइश बा जौन पूरा कर दी। और अनुरोध हर लेला बानी बहुत बहुत स्वागत पटे शो में बने रही साथ में सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के। और आगे बढ़े मियाँ एक और मैसेज पहुँचल वाली खतनी कि हेलो जी। और मैसेज करे वाला बानी दीपक जी मुंबई से बहुत बहुत स्वागत बने रही साथ में सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के। अनुराधा जी जुड़ चुकल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे। बढ़े मागे यहाँ विमल कुमारी बानी बहुत बहुत स्वागत वाली खतनी कि हेलो हाय नमस्ते मैम। और आगे बढ़े आज के अगला टिकट कन्फर्म करें। और अगला टिकट कन्फर्म करें मरून कलर सड़िया गाने के फरमाइश पहुँचल बा सदाम जी वानी मुंबई से। तो चली रहा टिकट कन्फर्म मुगल बा एंजॉय करिए अपन गाना के और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनतने से सदाम जी के फरमाइश रहला मुंबई से और लिखा तनी कि बहुत बहुत धन्यवाद सनी जी थैंक यू गाना बजावे खातिर बढ़े मागे यहाँ मैसेज बाटे लिखा तनी कि नमस्ते जी मुकेश शर्मा जुड़ चुकल बानी बिहार से बहुत बहुत स्वागत बाटे आरा बिहार से बानी और गाने के फरमाइश के साथ बानी तो बिल्कुल और टिकट कन्फर्म हुई बन रही साथ में सुनत नहीं रेडियो रिमझिम के और यहाँ बढ़े मागे अगला टिकट कन्फर्म करें मैम प्रीति रैदास जी बानी और यहाँ के भी सुनने के बाद गाना पटना से पाकिस्तान मूवी के तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म हो गल बा आवाज़ पहुँचाता तो अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आप

0: चाहिए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक हो गया खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बनी रुवा सब एक के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस में। और 3:01 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में। अगर रुआ भी जुड़े के चाहत नहीं शो से, शो में जुड़े के माध्यम बाटे व्हाट्सएप कॉल रुआ जौन माध्यम से चाहे जुड़ सकत नहीं। और यहाँ बढ़े में आगे व्हाट्सएप मैसेज के तरफ। और MD महमूद जी जुड़े गल बानी केरला से गाने के फरमाइश के साथ है। और लिखा था निकी सुनी मैम का हाल बा, सब ठीक बानो? बिल्कुल सब ठीक बाटे। और गाने के फरमाइश बा तो प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और बढ़े में आगे यहाँ मैसेज बाटे विमल जी बानी कहते निकी गाने के फरमाइश हम कैले बानी अपना नाना जी के सुनवाए के चाहते हैं। तो बिल्कुल सुनवाए के चाहते नहीं तो राउल टिकट कन्फर्म हुई, थोड़ा इंतजार करी राउल बारी आती है हम राउल टिकट कन्फर्म करें। फिलहाल बढ़े में आगे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें। हमारा पास फरमाइश पहुँचल बा बजाजी रोड लालगंज से MD रिजवान जी बानी। और अभिनंदन टेलर के सभी कोई बाटे MD इंशार जी। और लिखा था निकी आज सोनी में मदाब और गाने के फरमाइश बा कोको कोला। तो चलिए रहा टिकट कंफर्म हो चुकल बा। अपन गाने के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा वानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत रही सन गाने का फरमाइश करे वाला रनिया एम डी निशा जी रिजवान जी और अभिनंदन टेलर के सभी लोग और लिखा तनी कि थैंक यू मैम गाना सुनावे खातिर और साथ में एंडू महमूद जी भी वानी केला से और निशार जी रिजवान जी अभिनंदन टेलर के सबको ही गाना सुन रहा बात चलिए बहुत ही बढ़िया और बढ़े मागे यहाँ लिखा तनी कि आज भोजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़े में थोड़ा सा लेट हो गए और मैसेज करे वाला बानी मनीष रजाक जी फाजिल नगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से बहुत बहुत स्वागत बा फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करेगा पूरा कोशिश बा फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश पहुँचल बा कॉल के माध्यम से तो चली बात कर जाओ के बानी कहाँ से और गाने का फरमाइश का बा हेलो बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम में
1: जी हम पचकरा से भोला जी बोलते
0: हैं जी का हाल चाल बा भोला जी
1: बहुत बढ़िया बा आप बताएंगे
0: हमरो बढ़िया बा
1: घाम
0: लागत अटे हमरा फिलहाल नहीं के लागत
1: हमें तो बड़ी घाम लागत
0: तो घामा में करत का बानी बताई
1: गाय खियाओ तनी द्वार पर से गाय भी तो खियाओ पड़ी नु
0: हां ओकरा के तो खियाए के पड़ी तो ओकरो के छाया में बांध के रखी
1: छाया में बोलने बानी छाया में ना दबा लेकिन फिर भी तो जावे जाए में तो उतन घाम लागत
0: उतना ना लगी का गाना कौन सुना दी बता दी
1: गाना फरवा जो पत्नी के जे ऐसे नाना दिया जा रही जाए सैया काला साड़ी ले आई
0: अच्छा
1: ये गाना फरवा जो बा प्रीति लाल के
0: और सुनाई के भी बा
1: और बात सुना बा सुनाई बेटा बहुत लोग जुड़ल बा सब कोई सुनी आगो भगना हमारे बारे अंकित वो बहुत खुश बा एकदम कुदा तेरा जी भाई हम सुनने
0: चले ठीक बात प्ले कर दे बानी गाना
1: जी जी जी नमस्ते
0: नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल के लिए
2: कहो ना
3: हमार जिंदगी तो जंजाल हो गई बा हो
2: काहे हो
3: नैहरो में दिक्कत होता ससुरो

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायकोट,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बानी रोवा सवे के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आप हंसो भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और बढ़े मागे आज के अगला फरमाइश की तरफ। और बटे वीरेंद्र यादव जुड़ चुके बने सीतामढ़ी जिला से, बहुत बहुत स्वागत बटे। और गाने के फरमाइश बटे तो वॉइस सेंड कर ले बनी, तब वॉइस ना भेजी जो भी गाना सुने के पर वह गाने के नाम लिख के भेज दी, हम राव टिकट जरूर कंफर्म करें। बढ़े हम आगे यहाँ मैसेज बांटे। और रंजन कुमार जुट चुकर बनी थावे से गाने के फरमाइश के साथ है, बहुत बहुत स्वागत पा फरमाइश बात बिल्कुल प्ले करके पूरा कोशिश पा। फिलहाल बढ़े हम आगे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें। और मैसेज बांटे सोनू प्रजापति बानी नासिक से, और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली रहा और गाना जो बाप प्ले कर दे बानी जान से प्यारा गाने के फरमाइश के साथ जुड़ल बनी तरह। और टिकट कन्फर्म बा, इंजॉय करिए अपन गाने का और सुनत रही रेडियो रिमझिम के।

0: 94.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नेसन सोनू प्रजापति के फरमाइश रहला नासिक से और यहाँ की तरफ से मैसेज पहुँच गया वाले कहते हैं कि सोनी जी गाना चलावे खातिर दिल से शुक्रिया और बढ़े मागे अगला मैसेज और अगला फरमाइश के तरफ और मैसेज बाटे यहाँ लिखा था नहीं कि नमस्ते नमस्कार भोजपुरी अपन नाम बाटे हम भी जुड़गल बनी धर्मेंद्र शाहानी बानी समस्तीपुर से बहुत बहुत स्वागत बाटिए। एक और यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं कि भोजपुरी अपन नाम बा गोड़ चुके गोड़ लगा था नहीं सोना मैडम जी हमू आगल बनी हाजिर लगा दी बिल्कुल हाजिरी लाग चुकल बा गाना सुने के बाद कहा था नहीं कि हमारा नंबर कब आई तो रौरव नंबर बिल्कुल आई बना रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के सन्यासी रंजन बाबा बानी और बड़े मागे यहाँ दिलीप कुमार ठाकुर बानी मिर्जापुर मोहाली पंजाब से लिखा था नहीं कि हमरो गाना बा बिल्कुल बात है और टिकट भी कंफर्म करें यहाँ कॉल पहुँचल बात है पहले अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से लिया जाओ के बानी कहाँ से। हेलो
1: नमस्कार सोनी जी।
0: नमस्कार बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम में जी क्या हाल चल बा जी जी
1: और सब कैसे मान
0: सब बढ़िया बा
1: तो बढ़िया चल रहा खाना लाओ बा
0: जी जी बिल्कुल हो गल बा
1: घर परिवार सब बढ़िया बा।
0: हाँ जी सब कोई बढ़िया बा घर परिवार रेडियो रिमझिम के परिवार
1: सब बढ़िया रहे के चाहिए गर्मी तो बहुत गिरता दम
0: जी जी
1: तो जब बारिश होने से कौन थे नहीं
0: अब जून में गर्मी ना पड़ी तो कौन महीना में
1: पड़े जून में पड़े करी जून दिखाई रही तो तुम्हें समझ आ गया अक्टूबर तक चलेगा
0: चलिए बढ़िया बात ज्यादा परेशान ना बहनी कॉल रिसीव हो जाए तो परेशानी खत्म हो जाला सब
1: कोनो काम करो मतलब हो जाए छे मतलब लेट हो कुछ हो
0: बाकी हो जाए
1: अच्छा रहा था ना होला तो एकदम बेकार लग रहा है सब मेहनत तो कोई नहीं है भाई बता पड़ी
0: जी जी तो बताई गाना कौन सुना दी रहो के आज
1: शिल्पी रचे गम के शायरी लिखा था नहीं
0: गम के शायरी लिखा था नहीं
1: हां शिल्पी रचे ये सॉन्ग सुना दी
0: पर सुनवाई की बा
1: सबसे पहले तारा के आरजे सोनू भाई और समझो कि आयशा अमलम सिद्दीकी सबीना इरफान भाई दिलीप राम शाहजहां समीर आलम गुलाम हुसैन मोहम्मद अली अफ्तारी और जितना लोग सुना था सब क्योंकि
0: जी
1: बोले हाँ नमस्कार
0: नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल करने वेलकम

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर है आप सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा जी सऊदी से। बहुत बहुत स्वागत आपका बहुत प्रिय एक्सप्रेस में। बट हम आगे आ गए हैं, एक और मैसेज बैठे लिखा था नहीं, गुड आफ्टरनून मैम। और विजेंदर शर्मा बानी मोहम्मदपुर नीलामी से बहुत बहुत स्वागत बटे। और हम आगे आज के अगला टिकट कंफर्म करें, मनीष रजाकवानी फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, और सुनने के बाद गाना ही है के तो चली रहा, और टिकट भी कंफर्म कर दे बानी। तो एंजॉय कर जाओ मनीष जी के फरमाइश पे छागल सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4।

94.4 रेडियो रिमझिम सुरालवानी और कार्यक्रम भोजप्रिया एक्सप्रेस का और अभी गाना सुनत नेशन मनीष सजाग जी के फरमाइश रहा फाजिलनगर खुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और बढ़े आगे अगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश बस सन्यासी रंजन बाबा जी के, तो चलिए सुनल जाओ यहाँ के फरमाइश पे यहाँ के पसंद के गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे। शाम दूसरा के दीवान सनम दूसरा के दीवाना भैल बगाना के फरमाइश बात एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नहीं है सन सन्यासी रंजन बाबा जी के फरमाइश रहला और यहाँ मुस्तफा जी के भी गाने के फरमाइश पहुँच चुकल बा। बड़े मागे यहाँ एक और मैसेज बा लिखा था, नमस्कार जी प्रोग्राम से हम भी जुड़ गल बानी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा बाटे, सुन के निमन लागल तो मैसेज कर देनी है। और मैसेज करे वाला बानी गुरु नानक पूरा बठीरा पंजाब से किशोर साबलनिया जी, बहुत बहुत स्वागत शो में। और साथ में यहाँ के बानी सावित्री सबलनिया, सुमन सबलनिया, बेटी अंशु के साथ जुड़ल बनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के। और बढ़े में आगे आज के अगला फरमाइश के तरफ और अगला फरमाइश पहुँचल बा कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात कर जाओ के बानी और कहाँ से। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम में।
1: हम रामाज प्रसाद थारे से
0: जी, का हाल चल बा?
1: हाल चल ठीक बा, तो हवा बहुत बा, खूब मौसम दिन भर बा,
0: चली बढ़िया बा, हवा बहुत तो गर्मी से कुछ राहत मिली।
1: आज तो हमरा केहू याद ना कर ली,
0: शायद भुला गेल बलो राउ नाम के आज।
1: हां बुझा तो सुन कर आओ कहत रहन के जम्मू कश्मीर जाए बाद टिकट होके करे कर ली। तो हम तो टिकट आसानी से ना मिली, लकी ड्रॉ होला।
0: अच्छा
1: हां,
0: मतलब लॉटरी से लेके पड़ी।
1: हाँ अपन नाम गाम लिख के पता लिख के रेडियो रिंग के बॉक्स में डाली और लकी ड्रॉ हुई, हमको नंबर आ जाए तो जहाँ कहे तहाँ पहुँचा दी।
0: अच्छा ना आई तो फिर खत्म।
1: हाँ ना तो फिर अगला महीना करी, हम दूसरा महीना में जब आ जाए। हाँ तो गाना सुनवा दी
0: जी, बिल्कुल बता दी।
1: उठाओ रे डोली चलो कहाँ, पिया मिलन के ऋतु आई,
0: ये तो हिंदी गाना बस है।
1: हिंदी गाना हो, उठाओ रे डोली चलो,
0: शायद ऐसे ही बा।
1: ना ना हिंदी गाना भोजपुरी फिल्म का, चलो रे डोली उठाओ कहाँ, बलम पर विषय का कारण है।
0: ना बलम पर देसिया का तो नहीं खेला,
1: लेकिन ये भोजपुरी है। चलो रे डोली उठाओ कहार, डॉक्टर साहब कह देने की भोजपुरी हो।
0: चलिए देखा तनी और सारा गाना आयल बा।
1: हाँ देखी, अरे हमने वो फिल्म देखने ढेर दिन भइले से भुला भुला गए।
0: चलिए गाना मिल गए।
1: हाँ चलिए बजाइए। नमस्ते,
0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बानू गाना
1: जी? शायद
0: जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सो में कॉल करनी।

0: अक्षरा सिंह अपनी
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते

0: मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स BIS अप्रूव्ड शानदार डिजाइन और असली जुलने की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: रामाजी प्रसाद आवाज पहुंचाता रहुआ तक तरुआ जोन गाना के फरमाइश के लिए हिंदी गाना रहला और रूल तरूल होला और भोजपुरी गाने के फरमाइश रही तो प्ले कर देती फिलहाल। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा मुस्तफा वानी सऊदी से लिखा तनी कि रो सही बोल ले रहनी, हिंदी फिल्म के ही गाना रहे। जी हाँ, और बढ़े मागे आज के अगला टिकट कंफर्म करें। दिलीप कुमार ठाकुर वानी मिर्जापुर मोहाली पंजाब से और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली रहा। और टिकट कंफर्म अगर बा पूर्वी गाना सुने के चाहते नहीं, माटी में मिल जाला, तो चलिए इंजॉय करिए अपन गाना के, सुनते रहें।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनतने संदीप जी के फरमाइश रहला दिल और मुझे पटुमाली पंजाब से और मैसेज आगल बा लिखा तनी कि थैंक यू सो मच गाना बजाए खातिर बड़े मागे अगला फरमाइश के तरफ हो से पहले यहाँ मैसेज बा और लिख ले बनी कि जे भी पूर्वी वाला गाना बजेले बने वहाँ के दिल से धन्यवाद बटे दनेश विशा बानी दिल्ली से और यहाँ एक और मैसेज वाली का तनी हमरो गाना बजा दे बिल्कुल बजाएं और बढ़े मागे आज के अगला टिकट कंफर्म करें और यहाँ अगला टिकट कंफर्म करें मैसेज के लिए बानी प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से और यहाँ के सुनने के बाद गाना तू कहबू तजिया वेरानी तू कहबू तो हम मर जाए तो चलिए प्रमुख जी के फरमाइश पर इंजॉय कर जाओ प्रमुख जी के फरमाइश पर काफ़ी खूबसूरत गाना रेडियो रिमझिम के

और यहाँ प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से बानी लिखा था कि रामा जी भैया चीटिंग कर रहा बानी, रउआ भोजपुरी प्रोग्राम में हिंदी गाना के फरमाइश भेज देता नहीं। और आगे लिखा था कि थैंक्स का

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
8: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बानी रुवा सभी के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे, रुवा सभी के आपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस में। 4:01 हो चुकल बा स्टूडियो घड़ी में, अगर रुवा भी जुड़े के चाहते नहीं सो में जुड़े खातिर बहुत सारा माध्यम बाटे, व्हाट्सएप बा, कॉल बाटे, और बढ़े मागे अगला फरमाइश के तरफ और व्हाट्सएप मैसेज के तरफ। और यहाँ मैसेज बाटे और मैसेज करे वाला बानी कैफ मोबाइल कोंडा से, बहुत बहुत स्वागत बाटे। सो मैं अपने रही साथ में सुनत रही रेडियो रिमझिम के। एक और यहाँ मैसेज वाली लिखा नहीं कि ऐसे ही जा, अच्छा गावत रहे, लिखे के चाहता नहीं है दिनेश मिश्रा बानी दिल्ली से, और बड़े में आज की अगला फरमाइश के तरफ। और अगला फरमाइश बाटे शिव सागर दीवाना जी के जम्मू एंड कश्मीर से, तो चली राव टिकट भी कंफर्म कर दे ले बानी। इंजॉय करिए अपन गाना के, और गाना बाटे काहे हती हती बात पे रूसे लो। इंजॉय करिए अपन गाना के सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नेशन शिवसागर दीवाना जी के फरमाइश रहा जम्मू एंड कश्मीर से और यहाँ के गाना सुन ले बानी और यहाँ मैसेज वाला लिखा था नहीं कि हती हती बात पे बात का होखेला और लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी बानी तो ये मैसेज के रिप्लाई करम शिवसागर दीवाना जी तो जरूर बताएं कि हती हती बात का होला और शिवसागर दीवाना जी के तरफ से मैसेज पहुंच गए वाली कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद बटे मैडम जी गाना बजाए खातिर और यहाँ हाँ लिखा था नहीं कि ये भी सुनी हो और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि हमारा टिकटवा कन्फर्म ना हो का बिल्कुल हो और विजेंद्र जी वानी मोहम्मदपुर नीलामी से बिल्कुल हो थोड़ा इंतजार करी और बड़े मागे यहाँ अगला मैसेज के तरफ और अगला मैसेज बाटे मानिकपुर गोपालगंज से जुड़ल बनी प्रकाश माझी जी और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म हो गल बात गाने के फरमाइश बात तोहरा लग केहू जियेला तो इन्जॉय करी अपन फरमाइश पे तोहरा लग केहू जियेला गाना के सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे करीना पांडे की आवाज़ में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहा अल्बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के बाद बढ़े मांगे आज की अगला टिकट कंफर्म करें और मैसेज और फरमाइश काफ़ी सारा बा सबके कहना बाकी हमार फरमाइश ना बाजी का सबके बाजी और यहाँ आगे मैसेज वाला लिखा था नहीं करीना पांडे के गाना था हमारा फेवरेट सॉन्ग हटे और बजवाए वाला भाई के दिल से धन्यवाद बाटे धनेश उषा वानी दिल्ली से और यहाँ एक और मैसेज वाला लिखा था नहीं कि हती हती बात तो से तहसे बेहतर के जानत हुई प्रमुख भाई और मैसेज करे वाला वानी शिवसागर दीवाना जी जम्मू एंड कश्मीर से तो हमके भी बताओ लोग कि का बात बाटे हती हती और एक दूसरा के बुझल बुझाओ तनी लो तो हमके भी पता चले के चाहिए कि कौन बात पे बात चला तटे और अगला फरमाइश प्ले करें मुस्तफ़ा वानी सऊदी से और यहाँ के सुने के बाद गाना तो चली रहा टिकट भी कन्फर्म हो गल बा इंजॉय करी अपन गाना के हमरा के रहे था तू गुड़िया अपन नयनवा में तो चलिए इंजॉय करी मुस्तफ़ा जी के फरमाइश पे यहाँ के पसंद के गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के बा और बढ़े में आगे आज के अगला टिकट कन्फर्म करें और अभी गाना सुनत ने सन मुस्तफा जी के फरमाइश रहला सऊदी से और बढ़े में आगे यहाँ मैसेज बटे लिखा था कि प्लीज हमरो गाना सुनवा दी पूरा कोशिश बा और अभी भी जुड़ चुकल बानी डॉक्टर अमोद कुशवाहा जी छपरा कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और गाना सुनने के बाद तो पूरा कोशिश रही रहा और टिकट कंफर्म करें कि बढ़े मांगी हैं एक और मैसेज वाली कतनी अस्सलाम वालेकुम मैम शाजिदा जुड़ चुकल बनी नवादा से बहुत बहुत स्वागत बटे शो में बना रही हमने के साथ में सुनत रही रेडियो रंजिम के और बढ़े मांगे आगे यहाँ एक और मैसेज वाली कतनी कि दिल खुश हो गई गाना सुन के गाना सुनाए वाला भाई के धन्यवाद देतनी और मैसेज करे वाला बनी धर्मेंद्र शाहनी जी समस्तीपुर से बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से और बढ़े मांगे हैं एक और मैसेज बा और आगे यहाँ मैसेज बा लिखा था नहीं गाना तो बहुत ही जबरदस्त बा और मैसेज करे वाला बानी कैफ मोबाइल गोंडा से फिलहाल बड़े में आगे अगला टिकट रही कॉल के माध्यम से तब बात कर जाओ की बानी और कहाँ से हेलो
1: हेलो मैडम जी प्रणाम
0: जी प्रणाम बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम में
1: हम नगेंद्र माझी प्रूफ दैवान जी या घर पकौली बोदो आ ब्लॉक फुलवरिया से बोलते नहीं
0: जी कैसन बानी
1: ठीक बानी मैडम जी आपन समाचार बताई
0: हमरो समाचार बढ़िया बा तभी तो गर्मी के छुट्टी चला था
1: हाँ मैडम जी छुट्टी चला था टाइम ना कटेला उतना का कहल जावा अपन बात रहुआ से अच्छा ये सुना था सब लोग से
0: जे कामकाजी आदमी होला वो घरे जब छुट्टी में रहला तक टाइम ना बीतेला समझाता नहीं
1: हम ना कहे कि सब लोग सुन जन यदि गोरी आई केसन बाकी अगर छुट्टी नहीं खनी मन लागत
0: ना ना ये बात सही बाटे जे भी डेली काम करे वाला आदमी बाटे जेके रोज के ड्यूटी बाटे वो लोग एक दिन घरे रहला तो ओकर मन ना लागेला ई हम भी जानत नहीं
1: माने मनोकामना हमारी रहला कि बाबू लोग के आ बौली लोग के माने सेवा करी जब ने अपन एथी खाना बनाई अपन खियाई जानली
0: बिल्कुल घर द्वारे अपन रहे इतना धूप में
1: अब झूठ का बोले के बा माहौल नहीं लेकिन अस्थिर बा
0: चली घर बानो जी कैसन भी बा आज नहीं के
1: और वो आशीर्वाद से मुड़ी पर छत बाएगो
0: बिल्कुल
1: परिवार रहता
0: तो गाना कौन सुना दी
1: हां गाना गावत नितन किया सा हम
0: जी बिल्कुल गाई
1: चलल कर ए बबनी ओढ़नी समार के चलल कर ए बबुनी ओढ़नी समार के सभे नई के तहरा ऐसान देखी विचार के चलल कर ए बबुनी ओढ़नी समार के कर मोर कबू के कर मोर कबू सेंदिल उतार के चलल कर ए बबुनी ओढ़नी समार के चलल कर ए बबुनी ओढ़नी समार के मैडम जी अथी मनोज तिवारी जी के हाला गाना ही पुरान गाना हा सुनी ना सबसे पहले रहुआ के सुनवाओ के चाहता नहीं
0: जी जी बिल्कुल
1: जितना लोग सुनता रेडियो रिंजिम सब लोग है जान नहीं
0: जी
1: पूरा हम जब पानी सुनता इंसान हम नहीं हो क्या हनु
0: जी बिल्कुल सब कोई मिलके एंजॉय करें
1: अच्छी बात बजाई अब बजाओ खाली थैंक यू बाद में हमने कुछ अथी कर बानो
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल के नहीं
1: अच्छी बात प्रणाम
0: प्रणाम

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
2: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
4: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
3: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एस पी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एस पी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एस पी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
5: और 9097-6160-02।
8: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर बानी रोवा सभे के बीच रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपन सो भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज के तरफ बढ़न तो लिखा था नहीं कि बाबूजी का गाना सिलेक्ट के लिए वानी और मैसेज करे वाला वानी। मुस्तफा जी सऊदी से और बढ़े मागे यहाँ एक और मैसेज में लिखा था नहीं कि हमरा भैया के टिकट कंफर्म कर दी मैम, और मैसेज करे वाला वानी दनेश मिश्रा जी दिल्ली से। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ बढ़े मागे एक और मैसेज बा और गाने के फरमाइश बा ओढ़नी के रंग पियर और गाने के फरमाइश करे वाला वानी। और आगे लिखा था नहीं कि चाचा तो कमाल कर दिले वानी, वाह का गाना बाटे और नाम बटे यहाँ के दीपक जी जुड़ल बनी मुंबई से। तो चलिए राव, टिकट भी कंफर्म हो गल बा, अपन गाने के एंजॉय करी ओढ़नी के रंग पियर सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे।

90.4 रेडियो रंजन सुन रहा बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के द्वारा भी दीपक जी के फरमाइश सनत ने सिंह जी की फरमाइश पहुंचा रहा मुंबई से और बढ़े आगे आज के अगला टिकट कंफर्म करें और अगला गाना के फरमाइश बा खेसारी लाल की आवाज में और गाने का फरमाइश करे वाला बानी उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से तो चली रहा और टिकट भी कंफर्म हो गल बा आवाज पहुंचाता था अपन गाने के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रंजन 90.4 FM के

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम भोजपुरी एक्सप्रेस के और अभी गाना सुनत नियसन गाने के फरमाइश रहला उमर शंकर मिश्रा जी के दिल्ली से और यहाँ मैसेज बाटे लिखा था निकाल से भोजपुरी एक्सप्रेस में गर्दा उड़ गेल बाटे और गाना के फरमाइश ऐसे ही रही था आगे गर्दा के संगे और भी बहुत कुछ उड़ी और मैसेज करे वाला बानी दनीश मिश्रा जी दिल्ली से और बड़े में आ गया आज के गुलाब फरमाइश की तरफ और उससे पहले हम मैसेज वाली अख्तर जी जो बानी कश्मीर से लिखा तनी हमके भी गाना सुने के बाद बिल्कुल फरमाइश बा प्ले करे के कोशिश बा फिलहाल यहाँ कॉल पहुँचल बा तो चली बात कर जाओ के बानी कहाँ से और सुन जाओ गाने के फरमाइश का बा। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार सोनी जी।
0: नमस्कार बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम में। रहुआ का लागत रहला कि हम फोन काटत रहनी है कि का कटत रहे
1: ना ना मजाक करत हम
0: बेटा लाल बहादुर बात करत नी नो
1: जी
0: जी का हाल चाल बा
1: जी कोने के संडे हम आज एसी करे
0: जी जी
1: चली रोज
0: मेहनत कहनी त सफल भइनी नो जी जी तो बताई कौन गाना सुना दी रोगा के आज
1: नील कमल के आवाज में कौन खाई गाना बढ़िया।
0: अच्छा नील कमल के आवाज में
1: जी।
0: और सुनवाए की बा
1: जितना भी पंचायती राज लगल वाले सस्ता परवेशक सस्ता परमिशन हमारे इनके पास है सचिन बाबू और इनके पास है।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे बानी ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद समय कॉल करने।

90.4 रेडियो रिमझिम सरल बानी और कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के और अभी हमने के गाना सुना था ईसन गाने के फरमाइश करे वाला रनिया लाल बहादुर जी और बड़े मागे यहाँ मैसेज बाटे और सबके कहना बाटे कि हमार गाना बजा दी तो पूरा कोशिश बा सबके गाना प्ले करे के और यहाँ मैसेज वाले लिखा था नहीं भैया के टिकट कंफर्म कर देनी दिल से धन्यवाद बाटे दनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से और बड़े मागे आज के अगला टिकट कंफर्म करें और गाने के फरमाइश बाटे पायल आवाज़ करता विजेंद्र शर्मा जी बानी मोहम्मदपुर नीलामी से तो चली रहा और टिकट भी कन्फर्म हो गल बा अपन गाना के एंजॉय करी और सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894 70 या 9198888 6973।

बहुत बहुत स्वागत करते रुवा सभी के रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में रुवा सभी के अपन सो भोजपुरी एक्सप्रेस में और 10 मिनट हम रुवा सभी के बीच बानी रुवा सभी के फरमाइश के साथ है। और यहाँ फरमाइश के बात करी तक काफ़ी सारा फरमाइश जन बाकी बच गए बा और काफ़ी लोग नाराज़ भी बानी कि हमार गाना और

समय बस 10 मिनट बाद, तो चलिए बढ़े हम आज के अगला टिकट कंफर्म करें। और हमने महमूद जी बानी केरला से, और यहाँ के सुनने के बाद गाना गाना के बोल बटे ये बलमा परदेसी। तो चलिए और टिकट भी कंफर्म हो गल बा, अपन गाना के एंजॉय करिए और सुनत रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे MD महमूद जी बानी केरला से।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहल बानी और कार्यक्रम बाटे भोजपुरी एक्सप्रेस के। और अभी हमनी के गाना सुनत ने सुन एमडी महमूद जी के फरमाइश वाला केला से, और यहाँ के गाना सुन ले बानी बड़े मागे। और आज के अगला फरमाइश के तरफ उससे पहले यहाँ मैसेज बा लिखा था कि सोनी मैम आपसे निवेदन बाकी भोजपुरी एक्सप्रेस में प्रेम रोग के भी दवाई के छिड़काव करी। और आज भोजपुरी एक्सप्रेस में दिल्ली पहुँचे वाली प्रिया और 5 बज गए जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़नी और धनेश मिश्रा जी बानी दिल्ली से। और अगला फरमाइश के तरफ बढ़े, मगर अगला फरमाइश जो हमारा पास बा लालगंज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गाने का फरमाइश बा। और फरमाइश करे वाला बानी सुजीत कुमार जी, और यहाँ के गाना सुने के बा बजरिया में राजा पिटा जी बा। तो चली राहुल गाने के फरमाइश जोन बा प्ले कर दिल बानी, इंजॉय करी अंकिता अग्रवाल के आवाज़ में ये गाना रेडियो रंजन।

0: और इसी गाने के साथ आप सभी दीजिए जाने की इजाजत। और यहाँ सुजीत कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है कि गाना बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन समय इशारा कर रहा है सो से विदा लेने का। तो आप सब कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिम को। और जिनकी भी फरमाइश छूट गई है कल जुड़िएगा आप सभी योर वॉइस योर चॉइस के कार्यक्रम में। कल पूरी कोशिश रहेगी हम आपके गाने की फरमाइश जो है पूरा करें। और फिलहाल आज दीजिए आज की शो से मुझे जाने की इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपने सेहत का ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4। फिर मिलते हैं आप सभी से, नमस्कार।
1: से मिली मत तू हमारा भाई के मार दे लो, दूर हटा हमारा नजरी के सामने से, आज के बाद से लौकी मत हटा।
2: अले भाई जा भौदी तौर के।

0: गई।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क 99-393-65-930।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-21 8029-94-21 पर। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो, साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो।
11: हेलो।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कंचन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी मैडम।
0: जी नाम बताइए अपना और कहाँ से?
1: रंजीत कुमार बोल रहे हैं।
0: जी कैसे हैं रंजीत जी?
1: मैं ठीक है, आपने बताइए।
0: हम भी बढ़िया है। पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
1: अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुकी है।
0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: मेरे पिताजी का नाम श्री जग महतो और मेरी माता जी का नाम श्रीमती इंदु देवी।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
1: जी मैडम।
0: जी तो रंजीत जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या
0: क्वेश्चन या ऑप्शन?
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है?
1: जी
0: जी ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति।
1: ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक कर दें?
1: जी
0: जी। तो चलिए रंजीत जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली।
1: कौन ज्वालामुखी?
0: एल मिस्टी।
1: एल मिस्टी
0: हाँ
1: बोलिए।
0: ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पेरू की फीस के लिए।
0: प्योर है?
1: हाँ प्योर है।
0: तो चलिए रंजीत जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 14, बी 7 से कम और सी 7 से अधिक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी 7 से कम।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके तो चलिए आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 7 से कम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: जी आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, किस वर्ष में विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी? किस वर्ष में विवेकानंद की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए 1885, बी 1904 और सी 1902। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके तो चलिए रंजीत जी आपके चौथे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1902 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार है आप पांचवें प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: जी आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैं ऑप्शन नंबर बी कीजिए।
0: ब्राजीलिया।
1: हेलो
0: जी ब्राजीलिया को।
1: 2025 में पूछ रहे हैं
0: जी, 2025 का पूछ रहे हैं।
1: नई दिल्ली फिक्स है?
0: हाँ,
1: नई दिल्ली
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: चलिए तो रंजीत जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्राजीलिया। हेलो, कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी
0: जी, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: मैं मुकेश कुमार।
0: मुकेश कुमार
2: जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मुकेश?
2: लछवार।
0: लछवार, क्या करते हैं आप?
2: करते तो कंपटीशन नहीं है।
0: अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
2: ग्रेजुएट।
0: ग्रेजुएशन फाइनल है?
2: यस।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि बंद है?
2: आगे तैयारी पीजी में एडमिशन है।
0: अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम जानकी देवी, पापा का नाम राम प्रकाश मंदिर।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस।
0: और इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: मैं पहली बार कॉल किए, सोच रहे थे कई दिनों से सुनते ही आज कॉल कर।
0: अच्छा, तो इसका मतलब आप सुनते हैं?
2: हाँ सुनते तो हाँ, इसका जो है प्रसारण लाइव होता है उसका।
0: जी जी, तो इसका प्रसारण लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डिंग कार्यक्रम चलता है।
2: रिकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है ना, प्रसारित किया जाता है।
0: तो पहला प्रश्न लिए।
2: यस
0: जी,

0: तो मुकेश जी आपसे पहला प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी।
0: ऑप्शन
1: बी
0: इंद्रधनुष क्रांति। श्योर है? तो लॉक करूं? ओके। तो चलिए मुकेश जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, एल मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली, बी पेरू और सी कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम।
0: एल मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है?
1: एल मिष्टी
0: जी।
1: ऑप्शन बोलिए।
0: ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया।
1: कोलंबिया को लॉक किया जाए।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं।
0: तो लॉक कर दो?
1: यस।
0: ओके। तो चलिए मुकेश जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी कोलंबिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा पेरू, ना कि कोलंबिया। ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अरे

0: स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921, 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो।
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
11: थैंक यू मैम।
10: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
11: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी गोपालगंज।
10: जी कैसी हैं सलोनी जी?
11: ठीक हूँ मैम।
10: जी तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है बता दीजिए।
11: बीए।
10: बीए।
11: हाँ।
10: ओके, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
11: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल का।
10: जी तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
11: आ लीजिए।
10: जी तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, बी इंद्रधनुष क्रांति और सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब। बी इंद्रधनुष क्रांति।
1: हाँ
0: श्योर है?
1: और तो नहीं है पर लग रहा यही होगा।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है।

0: मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: हाँ
1: क्वेश्चन फिर से बोलिएगा।
0: एल मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में है?
1: ऑप्शन
0: ऑप्शन ए इटली, बी पेरू, सी कोलंबिया।
1: पेरू।
0: श्योर है?
1: मैं श्योर तो नहीं हूँ।
0: तो लॉक करूँ?
1: हाँ लॉक करिए।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पेरू को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, बी 1971 और सी 1972। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम क्वेश्चन फिर से बोलिए ना।
0: मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, बी 1971 और सी 1972।
1: सी लगाइए।
0: 1972।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, सब लग रहा है।
0: ओके तो चलिए सलोनी जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1972 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1971। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो।
2: नमस्ते मैम।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में नमस्ते।
2: रंजन बोल रहे हैं आजमापुर से।
0: जी कैसे हैं रंजन जी?
2: ठीक है आप?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या करते हैं रंजन जी आप?
2: बस पढ़ाई करते हैं। बीएड कंप्लीट है।
0: जी बीएड कंप्लीट है तो आगे टीचर की तैयारी है?
2: टीचर के साथ कोई गवर्नमेंट जॉब पर।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया है। तो तैयारी कैसे चल रही है आपकी?
2: फिलहाल तो सही चल रहा है।
0: जी तो मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपने।
2: पिताजी का नाम इंदल यादव और मम्मी का नाम है लाल।
0: जी तो लिया जाए पहला प्रश्न आपका।
2: जी

0: तो चलिए रंजन जी, आपका आज का पहला प्रश्न ये है, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय चलता है अब।
1: ये 8 को फिक्स कीजिए।
0: प्योर है? लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 8 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक नाशेर, बी लेक करीबा और सी लेक वोल्टा। आपका समय शुरू होता है अब। आवाज कट रही है आपकी? बी लेक करीबा। आप थोड़े नेटवर्क वाले एरिया में जाइए। ए लेक
1: नाशेर।
0: श्योर हैं आप?
1: नहीं श्योर तो नहीं।
0: तो लॉक कर दें?
1: हाँ कर दीजिए।
0: चलिए तो रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए लेक नाशेर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा लेक वोल्टा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
8: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
9: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
8: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायकोट,
9: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
8: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
9: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
8: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
9: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
8: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
9: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
11: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
12: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
12: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
10: और 9097160602।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं

0: और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
1: जी, मैं कमरान नसीब पकड़ी सुल्तान से।
2: जी, कैसे हैं कमरान जी?
1: बहुत कम आ रहे हैं आजकल,
2: कुछ प्रॉब्लम था जिस वजह से नहीं आ रहे थे।
1: तो मैं आज सोचा कि देखूं आज आ रही है कि नहीं, और बस चॉइस तो एक बहुत दिन से बंद है, तो मैं सोचा कि देखो टेप करूँ आई है कि नहीं आई है।
2: तो बढ़िया किया, कॉल लग भी गया और मैं आई भी हूँ, बात भी हो रही है।
1: जी जी, नहीं अब मैं बहुत इंतजार कर रहा था, कहाँ चले गई भाई, नहीं आ रही है, क्या बात हो गया?
2: जी कुछ फिलहाल आपसे भी के बीच फिर से हाजिर हो चुकी हूँ।
1: राम राम भाई, हाजिर का जरूरत है।
2: जी जी, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी?
1: मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
2: ग्रेजुएशन के बाद कुछ पढ़ रहे हैं या फिर ठप है?
1: नहीं ठप नहीं है, चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है।
2: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो अम्मी अबू का नाम बता दीजिए अपने।
1: मोहम्मद रशीद एंड रबिया खातून।
2: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
2: जी,

0: कमदान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950 और सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छब्बीस जनवरी 1950।
0: क्यों है?
1: संविधान का लागू ना
0: जी,
1: संविधान का लागू शायद नवंबर में हुआ था, 26 नवंबर 1949
0: जी।
1: ओके,
0: तो चलिए कंदान जी, आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो गलत है। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
1: मैं सही पढ़कर गलत कर दिया।
0: नहीं है। हेलो, फिर कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
2: हाँ जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी, आपको भी सुने जी, नमस्कार
0: जी। लाल बहादुर बात कर रहे हैं
2: जी। जी मैम
0: जी, कैसे हैं लाल बहादुर जी?
2: ठीक है मैम
0: जी।
2: और सब सुनाइए।
0: सब बढ़िया है।
2: आप तो समुद्र की तरफ पता ना कहाँ गुम हो गए थे, पानी देख सूख जाता है।
0: यहाँ कुछ काम जिसके वजह से गायब हो गए थे। अभी जो समस्या था वो खत्म हो गया है काफी हद तक, तो फिर आ गए आप सभी के बीच।
2: चलिए अच्छी बात है, घरेलू काम जो है अपना तो करना ही पड़ता है
0: जी। अब ये दुनिया है और समय है, कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता।
2: जब पता ही हो जाता तो गॉड भगवान नहीं हो जाता इसमें।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया तो तैयार हैं आप?
2: हाँ मैम
0: जी। तो उससे पहले आप ये बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
2: +1 इंटर।
0: +1, उसके अलावा आप क्या करते हैं?
2: खेती बाड़ी करते हैं, जुड़े हुए हैं।
0: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: पिताजी का नाम रतन प्रसाद और माता का नाम शिवरात्रि देवी
0: जी। तो तैयार है, लिया जाए प्रश्न पहला आपसे?
2: हाँ जी, लिया जाए
0: जी। चलिए,

0: तो लाल बहादुर जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ज्ञानी।
0: विद्वान का सही शब्द होगा ज्ञानी। चोर हैं आप?
1: जी।
0: बोल रहे हैं कि आप चोर हैं?
1: हाँ।
0: तो लॉक कर दूं?
1: जी।
0: तो चलिए लाल बहादुर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर विद्वान का विलोम शब्द जो कि आपने बताया है ज्ञानी को, लॉक करते हैं?
1: जी।
0: और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख, ना कि ज्ञानी।
1: मूर्ख
0: जी। हेलो प्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
9: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
9: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 029 94 21 80 029 94 21 पर। आइए लेते हैं।

0: अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: मेरा नाम मोहम्मद कानवान है, मेरा गांव पड़ता है आसम के पास जलवा मठिया।
2: जी नाम एक बार फिर से बताइए।
1: मेरा नाम है मोहम्मद शहनवाज।
2: मोहम्मद शहनवाज
1: जी।
2: जी क्या करते हैं शहनवाज जी।
1: हम पढ़ाई करते हैं।
2: किस क्लास में पढ़ते हैं।
1: हम अभी 7 में पढ़ते हैं।
2: किसमें।
1: 7 में।
2: 7 में पढ़ाई कैसी चल रही है।
1: अच्छी चल रही है।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं।
1: जी
2: जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का प्रसारण सुनते हैं आप।
1: जी सुनते हैं।
2: बढ़िया है। फिर अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
1: मेरे अम्मी का नाम है रुखसार बेगम, मेरे अबू का नाम है मोहम्मद कमाल।
2: जी तो शहनवाज जी आगे क्या करना है कुछ सोचा आपने पढ़ाई करके।
1: जी अभी नहीं सोचा है, पढ़ाई कर रहे हैं।
2: ओके तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
1: जी
2: जी

0: तो शहनवाज जी, आपका पहला प्रश्न ये है आपसे कि विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख और सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए।
0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन बी।
1: जी ऑप्शन दे दीजिए।
0: ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय समाप्त हो रहा है।
1: ऑप्शन ए। ऑप्शन ए
0: ज्ञानी।
1: जी
0: चोर है।
1: जी
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: चलिए, तो चलिए शहनवाज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख, ना कि ज्ञानी। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। जी नाम बताइए अपना।
2: मैं सिमरन कुमारी।
0: नाम क्या बताया आपने, एक बार फिर बताइए।
2: सिमरन कुमारी।
0: सिमरन कुमारी,
2: हाँ।
0: कहाँ से बात कर रही हैं सिमरन जी?
2: भाई सही क्या?
0: भाई सही जी। क्या करती हैं सिमरन जी आप?
2: बी ए सेकंड ईयर में पढ़ती
0: हूँ। अच्छा, और पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अच्छी चल रही है।
0: तो आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
2: हाँ, पुलिस की तैयारी करती हूँ।
0: तो तैयारी शुरू है कि अभी करना है?
2: शुरू है।
0: अच्छा, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल कर रही हैं?
2: हाँ पहली बार कॉल कर रही
0: हूँ जी। इसका कार्यक्रम सुनती हैं आप?
2: हाँ
0: बढ़िया। तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सिमरन जी।
2: पापा का नाम है दीना शर्मा, मम्मी का नाम है निर्मला देवी।
0: ओके, तो शुरू किया जाए आज का खेल आपके साथ हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का।
2: यस
0: जी।

0: तो सिमरन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री।
0: श्योर हैं आप?
1: हाँ।
0: लॉक करो?
1: ओके।
0: तो चलिए सुंदर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे

0: कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का बड़ा है, भारत में, और विश्व का मरुस्थल जो है वो सहारा है। हेलो पीयूष कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिए।
1: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
1: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94921 80029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो जी, नाम बता दीजिए अपना।
9: जी नमस्ते, मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है।
0: जी नमस्ते, कैसी हैं अनुराधा जी?
9: ठीक है, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
9: हम थाने से बोल रहे हैं।
0: जी जी, तो क्या करती हैं अनुराधा जी?
9: जी पढ़ते थे, अभी कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे हैं।
0: जी, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
9: जी अभी ग्रेजुएशन अब कर रहे हैं, मतलब

0: करते ही
1: अच्छा घर से ही करती है ग्रेजुएशन। तो अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है या फिर उससे आगे? फर्स्ट ईयर है। पढ़ाई कैसे चल रही है?
0: बढ़िया चल रही है।
1: या उसके अलावा और कुछ तैयारी कर रही है? बस पढ़ाई चल रही है।
0: जी
1: किस चीज का तैयारी कर रही है?
0: अभी तैयारी नहीं, अभी ग्रेजुएशन फाइनल हो जाए देखा जाएगा।
1: अच्छा अच्छा चलिए बढ़िया है। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं आप?
0: जी एक बार किए हैं।
1: अच्छा अच्छा अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
0: जी मम्मी का नाम है धर्मशीला देवी और पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता।
1: जी तो लिया जाए आपका पहला प्रश्न आपसे।
0: हेलो
1: जी पहला प्रश्न लिया जाए आपका।
0: जी जी जी
1: जी

0: दादा जी आपका पहला प्रश्न ये है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए घायल होना, बी अपमानित होना और सी बीमार होना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा।
0: नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा?
1: जी
0: ऑप्शन ए घायल होना, बी अपमानित होना और सी बीमार होना।
1: अपमानित होना, बी ऑप्शन।
0: श्योर है आप?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए राजा जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अपमानित होना को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, बी प्लाज्मा और सी प्लेटलेट्स। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है।
0: लॉक करूं?
1: जी लॉक कीजिए।
0: चलिए तो चलिए दादा जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन और सी कछुआ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: गंगा डॉल्फिन।
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है, लगाई थी।
0: चलिए तो चलिए दादा जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी लॉक करते हैं, गंगा डॉल्फिन को ऑप्शन बी। और आपको बताएं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो चौथा प्रश्न लिया जाए आपसे?
1: जी
0: जी। आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8 और सी 9। आपका समय शुरू होता है अब।
1: नौ।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो अनुराधा जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 9 को लॉक करते हैं। और आपको बताएं कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 8। लोक क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 029 94 21 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिंजुम 90.4 FM। नमस्कार।
3: क्या हुआ? रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
12: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
13: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
14: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
15: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
16: रेडियो रिमझिम,
15: सुनो दिल से।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
4: और 90-97-61-60-02।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87-894-18744।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोप्राइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
14: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
3: अरे ए बबुओ परेशान।

0: तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
1: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कोई ले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतानी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाई।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99 393 65 930।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। आज 11 जुलाई हम मना रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस। एक दिन जो हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य, अपने परिवार और अपने शरीर के बारे में सूचित और सम्मान अधिकारों के साथ निर्णय लेने का हक है। इस वर्ष की थीम है युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वो एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सके। इस थीम के माध्यम से हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज के युवा जो हमारे देश के भविष्य हैं, अभी भी कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक असुरक्षा, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य समस्याएं, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक संघर्षों की स्थितियां। ऐसे समय में जरूरी है कि हम युवाओं को सही जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं और समान अवसर दें, ताकि वो अपने परिवार को समझदारी से एक दिशा दे सके। तो आइए आज के इस विशेष दिन पर हम मिलकर ये संकल्प लें कि हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपने समुदाय की भलाई के लिए भी सोचेंगे। अब प्रस्तुत है परिवार नियोजन पर आधारित आज का विशेष एपिसोड, एक और कदम समझदारी की ओर।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त RJ। जब घर में नन्ना मेहमान आता है तो खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। बच्चे की सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। आजकल विज्ञापन बहुत आगे बढ़ गया है। अब नवजात शिशु की जांच यानी नवजात स्क्रीनिंग के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। ये टेस्ट बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर किया जाता है। अगर कोई बीमारी समय रहते पकड़ ली जाए तो उसका इलाज शुरू हो सकता है और बच्चे को आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर शुरुआत सही हो तो आगे जिंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए आज इसी जरूरी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
8: देखो भाई, जब बीज अच्छा बोओगे तभी तो पेड़ मजबूत निकलेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बीमारियां छुपी हो सकती हैं। अगर बीमारियों को उसी वक्त पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है।
9: और नवजात स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत छोटा होता है, आसानी से हो जाता है, मगर इसके फायदे जीवन भर मिलते हैं।
8: हाँ, लेकिन कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसका असर बाद में दिखता है।
9: बिल्कुल, देखिए पड़ोस के गांव की बात है। फूलमती की बहू को बेटा हुआ, सब खुश थे, पर बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पा रहा था, बार बार कपकपी हो रही थी। लोग बोले कि ठंड लग गई है, नजर लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे को जन्म से ही थायराइड की बीमारी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शिशु की जन्म के समय जांच करवाई होती तो बीमारी का पता चल जाता और इलाज समय पर शुरू हो जाता। अब बच्चा ठीक तो है लेकिन दवाइयों पर चल रहा है। सोचिए अगर पहले ही नवजात स्क्रीनिंग हो जाती तो जिंदगी आसान हो जाती।
10: सेहतिया भैया, आखिरकार बच्चे को पैदा होते ही नवजात स्क्रीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है?
8: जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में कई बीमारियां पता नहीं चलती। स्क्रीनिंग में डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं, कानों की सुनने की क्षमता देखते हैं और दिल की धड़कन जांचते हैं। अगर कोई समस्या जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। इस टेस्ट से बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
10: टिकन भाभी, नवजात शिशु की जांच कब करवानी चाहिए?
9: बच्चे के जन्म के बाद जब वो एक दो दिन का होता है तब नवजात स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है या नहीं।
10: अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा ना हुआ हो तो भी ये जांच करवानी चाहिए?
9: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर से बात करके जांच करवानी चाहिए। इससे परेशानी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सही इलाज हो सकता है। पर सही प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जन्म देकर बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
10: सेहतिया भैया, नवजात शिशु की जांच कैसे होती है?
8: आरजी, नवजात स्क्रीनिंग तीन तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चे की एड़ी से कुछ बूंद खून लेकर लैब में भेजा जाता है ताकि किसी गंभीर बीमारी का जल्दी पता चल सके। फिर सुनने की जांच होती है। इसके लिए कानों में छोटे ईयरफोन लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। और एक तीसरा तरीका है दिल की जांच, जिसमें एक खास मशीन से बच्चे के खून में ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है। इससे दिल की कोई समस्या हो तो जल्दी पकड़ में आ जाती है।
10: टिकन भाभी, अगर किसी नवजात शिशु की जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो क्या किया जाता है?
9: यदि किसी नवजात शिशु के जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बच्चे की और जांच करनी होगी ताकि डॉक्टर को पूरी जानकारी मिल सके। पहला टेस्ट सिर्फ शुरुआती जांच होती है जिससे डॉक्टर को संकेत मिलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
10: तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है?
9: बिल्कुल सही, कई बार शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई बीमारी है। इसीलिए डॉक्टर आगे एक और टेस्ट करने की सलाह देते हैं जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। यह ज्यादा सटीक होता है और इसमें पता चलता है कि वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के नतीजे सामान्य आते हैं तो आगे किसी और जांच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो डॉक्टर अगला कदम बताते हैं। वो आपको सही इलाज और बच्चे की सेहत को बेहतर रखने के लिए जरूरी सलाह देते हैं।
10: सेहतिया भैया, अगर परिवार में एक बच्चे को कोई बीमारी हो तो क्या दूसरे बच्चे को ये बीमारी हो सकती है?
8: देखिए, कई बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए आती हैं। अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई वंशानुगत बीमारी है तो उसके भाई बहन को भी वही समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं होती, कुछ बीमारियां सिर्फ उसी बच्चे में हो सकती है जबकि उसके भाई बहन बिल्कुल ठीक रह सकते हैं।
10: अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो और माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए?
8: अगर ऐसा हो तो माता पिता को किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर समझाते हैं कि बीमारी परिवार में कैसे आती है और अगला बच्चा इससे प्रभावित होगा या नहीं। डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका होता है ताकि परिवार सही फैसला ले सके।
10: तो क्या हर स्वास्थ्य समस्या वंशानुगत होती है?
8: नहीं आरजी, कुछ बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, जैसे सुनने की समस्या जो कभी कभी गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रमण से हो सकती है। ऐसे स्थिति में दूसरी गर्भावस्था में यह समस्या होने की संभावना कम होती है। इसलिए हर बीमारी को समझना जरूरी होता है ताकि सही इलाज और सावधानी बरती जा सके।
10: तो मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
8: डॉक्टर सही जानकारी और सुझाव देते हैं, इससे माता पिता को बच्चे की सेहत को लेकर बेहतर फैसला लेने में मदद मिलता है।
10: टिकन भाभी, आपने बताया था कि नवजात स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे की स्क्रीनिंग से कोई बीमारी पकड़ी गई हो और फिर वो ठीक हो गया?
9: हाँ, मेरे पड़ोस की सुनीता के बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो अस्पताल में उसकी स्क्रीनिंग हुई। जांच से पता चला कि बच्चे के शरीर में कार्बनिक अल्म ज्यादा जमा हो रहा है। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो बच्चे की सेहत बिगड़ सकती थी।
10: फिर क्या किया गया?
9: जैसे ही ये बीमारी पता चली, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्होंने सुनीता को बताया कि बच्चे की डाइट में खास ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी दी। धीरे धीरे सही इलाज और देखभाल से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
10: तो मतलब अगर स्क्रीनिंग ना हुई होती तो बीमारी पकड़ में ही नहीं आती?
9: बिल्कुल सही कहा, अगर ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो बीमारी का पता ही नहीं चलता और बच्चा बहुत परेशानी में आ सकता था, इसीलिए स्क्रीनिंग हर नवजात के लिए बहुत जरूरी होती है।
10: सेहतिया भैया, आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे की बीमारी स्क्रीनिंग से पता चली हो और फिर वो ठीक हो गया हो?
8: हाँ अजय, मेरे दोस्त विजय की बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब वो पैदा हुई तो अस्पताल में उसकी नवजात स्क्रीनिंग हुई। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जांच के नतीजे आए तो डॉक्टरों ने बताया उसे फैटी एसिड की बीमारी है।
10: ये कौन सी बीमारी होती है?
8: देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसे हम खाने पीने की चीजों से लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उनका शरीर वसा को ठीक से पचा नहीं पाता, इससे बच्चों को जरूरी ऊर्जा नहीं मिलती और उन्हें कमजोरी महसूस होती है।
10: तो फिर विजय ने क्या किया?
8: रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने विजय को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सही इलाज से बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। उन्होंने कुछ दवाएं और खास डाइट सुझाई। विजय ने पूरी सावधानी बरती और धीरे धीरे बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
10: टिकन भाभी, मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को अमीनो एसिड से जुड़ी कोई समस्या होती है, ये क्या है?
9: अरे, ये एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चे का शरीर अमीनो एसिड को ठीक से नहीं पचा पाता। ये एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जब शरीर इसे सही तरीके से नहीं प्रोसेस कर पाता तो इससे कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं।
10: तो ये बीमारी कैसे पता चलती है?
9: जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नवजात स्क्रीनिंग की जाती है। इस टेस्ट से अगर कोई दिक्कत हो तो पता चल जाता है, फिर डॉक्टर सही इलाज शुरू कर सकते हैं जिससे बच्चा स्वस्थ रह सके।
10: सेहतिया भैया, ये हार्मोन संबंधी परेशानी क्या होता है? क्या इससे छोटे बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं?
8: देखिए, ये समस्या शरीर में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को प्रभावित करती है। हार्मोन वो रसायन होते हैं जो शरीर में कई जरूरी काम करते हैं, जैसे वजन बढ़ाना, शरीर का विकास होना, अलग अलग अंगों का ठीक से काम करना। अगर किसी बच्चे में हार्मोन सही तरीके से ना बने तो उसे कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं।
10: ये बीमारी कैसे पता चलता है? अगर बच्चे को ये समस्या हो तो इलाज कैसे होता है?
8: जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात स्क्रीनिंग से इस बीमारी का पता चल जाता है। डॉक्टर खास तरह की दवाएं और देखभाल बताते हैं। कभी कभी हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बच्चा सामान्य तरीके से बढ़ सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है।
10: भाभी, मेरे दोस्त के बच्चे में एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हीमोग्लोबिन की समस्या है। ये क्या होता है और क्या इसे पहले से पहचाना जा सकता है?
9: हीमोग्लोबिन की समस्या खून से जुड़ी बीमारी है, मतलब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन नवजात स्क्रीनिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस बीमारी से प्रभावित है या नहीं। अंश का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने डॉक्टर की सलाह पर नवजात स्क्रीनिंग कराई। टेस्ट में पता चला कि उसे हीमोग्लोबिन की बीमारी है। बीमारी पकड़ में आते ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। अगर ये बीमारी समय रहते पकड़ में ना आती तो बाद में अंश को गंभीर परेशानी हो सकती थी।
10: भैया, जरा एक बात बताइए, मेरे पड़ोसी के नवजात बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले कि उसे गंभीर जन्मजात हृदय रोग है, ये क्या होता है?
8: कुछ बच्चों में हृदय रोग जन्म से ही होता है। इसमें दिल की बनावट में गड़बड़ी होती है जिससे खून शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है।
10: मतलब बच्चा दिखने में ठीक होता है पर अंदर से बीमार होता है।
8: बिल्कुल, शुरू शुरू में बच्चा एकदम ठीक लग सकता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सांस लेने में दिक्कत, दूध पीने में परेशानी जैसी चीजें दिखने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर नवजात स्क्रीनिंग समय पर हो जाए तो इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है।
10: और क्या इसका इलाज है?
8: हाँ है, लेकिन जल्दी पकड़ में आना जरूरी है। चलो तुम्हें छोटे फैजान की आप बीती सुनाता हूँ। शहर के अस्पताल में फैजान पैदा हुआ था। नवजात स्क्रीनिंग के तहत उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पता चला फैजान के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम है। तुरंत और टेस्ट किए गए और पता चला कि उसे हृदय रोग है। फिर सर्जरी की गई और फैजान एकदम ठीक है, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह।
10: मेरे मौसी का पोता अभी कुछ महीने का है पर आवाज़ पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। माँ कुछ भी बोले बच्चा पलटकर नहीं देखता। डॉक्टर बोले कि सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। ये नवजात बच्चों में भी होता है क्या?
9: हाँ भैया, होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही ठीक से सुन नहीं पाते, लेकिन बाहर से देखने पर वो तो बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही लगते हैं।
10: पर भाभी, अगर बच्चा कुछ बोले ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि उसे सुनाई देता है या नहीं?
9: बस यही गलती होती है। अगर हम बच्चे के बोलने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवजात स्क्रीनिंग में अब सुनने की जांच भी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब अस्पताल में एक छोटा सा मशीन कान में लगाते हैं। मशीन खुद पता लगा लेती है कि बच्चे के कान ठीक से आवाज पकड़ रहे हैं या नहीं। न बच्चा रोता है न कोई तकलीफ होती है। हर नवजात बच्चे का हियरिंग टेस्ट जरूरी है। इससे बच्चे को समय पर इलाज मिल सकता है और वो बाकी बच्चों की तरह बोल सुन सकते हैं।
10: भैया भाभी, आज तो आप दोनों से बड़े काम की बात जानने को मिली। सच में नवजात स्क्रीनिंग हर बच्चे के लिए जरूरी होता है।
9: बच्चा जब दुनिया में आता है तब उसकी कुछ जरूरी जांच करवा लेने से आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
11: बिल्कुल, जैसे कि दिल का रोग, थायराइड की गड़बड़ी, सुनाई न देना और अन्य कई छिपी बीमारियां नवजात स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ में आ जाती है। इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है।
10: मतलब ये हुआ कि बच्चा चाहे बिल्कुल ठीक दिखे फिर भी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए।
9: हाँ भैया, बीमारी बाहर से थोड़ी ही दिखती है, अंदर ही अंदर नुकसान कर जाती है, यही तो हम सबको समझना है।
11: और ये जांच ज्यादा महंगी भी नहीं होती, सरकार कई अस्पतालों में ये सुविधा फ्री में दे रही है, बस जागरूक रहना जरूरी है।
10: तो दोस्तों, आज से ही तय कीजिए कि अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नवजात स्क्रीनिंग जरूर करवाए, ताकि वो बच्चा आगे चलकर हंसता खेलता सेहतमंद जीवन को जी सके। तो दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
12: प्रसाद क्लिनिक।
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
17: के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और

0: कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
1: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: उत्तर बिहार का गौरव,
7: सारण प्रमंडल की शान,
6: गोपालगंज की धड़कन
7: और अपने भाषा की पहचान,
6: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
5: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दिल से।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम,
11: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: ठक ठक
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमलश्री कमलश्री कमलश्री बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। अब समाचार विस्तार से। तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। 14 किलो वाले सिलेंडर के मूल्य में 29 रुपए की वृद्धि की गई है। अब पटना में इसकी कीमत 1011 रुपए से बढ़कर 1040 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। वहीं 5 किलोग्राम वाले सिलेंडर का मूल्य 375 रुपए से बढ़कर 386 रुपए हो गया है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। श्री सरावगी ने पटना में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों और देश की मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण अन्य देशों की तुलना में भारत में गैस के दाम अनियंत्रित नहीं हुए हैं।
1: ऐसा नहीं है कि केवल जो है हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, ये वैश्विक स्थिति परिस्थिति है पूरे, लेकिन अन्य देशों के अनुपात में भारत में बहुत कम बढ़ रहा है। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संपर्क है अन्य देशों से, ये हमारी वैश्विक नीति है, जिसके कारण अन्य देशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ रहा है। क्योंकि यह वैश्विक स्थिति है, ऐसा नहीं है कि केवल देश में बढ़ रहा है, भारत में बढ़ रहा है, अन्य देशों में नहीं बढ़ रहा है।
0: इधर सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कल नामांकन की अंतिम तारीख है। प्रत्याशी 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। आवश्यक होने पर इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतगणना होगी। इधर एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार घोषित किया है। भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी घोषणा की है। वहीं प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आलोक सिंह ने कहा कि वे संगठन को पूरी मजबूती से चलाएंगे।
3: देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को, जो उन्होंने निर्वहन दिया है उसको निष्ठापूर्वक हम लोग निर्वहन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और पार्टी का भी संगठन का चुनाव हुआ, 22 लाख से ऊपर हम लोग के सक्रिय सदस्य बने, इसको और आगे लेके जाएंगे हम लोग।
0: इधर पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन 13 जून को नई दिल्ली में होगा। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस महाधिवेशन के दौरान पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होगा।
3: हाँ, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी 13 जून को। उस दिन भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बिहार से भी और दूसरी जगह से लोग आएंगे, वहाँ भी कार्यक्रम होगा।
0: अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में विभाग की टीम ने आज पटना के एक चर्चित निजी कोचिंग संस्थान की जांच की। जांच के दौरान संस्थान में आग से बचाव के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं पाई गई। अग्निशमन विभाग के सहायक जिला फायर ऑफिसर अजय कुमार शर्मा ने कहा कि संस्थान को कमियों को ठीक करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।
4: जो भी कमियां पाई गई है उनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और उनको टाइम दिया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर, जो 1 सप्ताह का सारा जो फायर सिस्टम सेफ्टी सिस्टम कमियां पाई गई है जो उनको लगाना है, और उनके बाद यदि सारा सिस्टम लगा दे फिर उनको फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट उनको इशू किया जाएगा। फुलफिल यदि जो टाइम बॉन्ड उनको दिया जाएगा, टाइम बॉन्ड के अंदर यदि फुलफिल कर लेते हैं तो फिर कार्रवाई कोई सवाल ही नहीं होता है। सभी कोचिंग का जाँच किया जा रहा है, सभी कोचिंग को ऑडिट किया जाएगा।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेडिकल प्रवेश पुनर्परीक्षा नीट 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप को लाइव कर दिया है। उम्मीदवार अब इस परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी एनटीए की वेबसाइट पर अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड डालकर देख सकते हैं। एनटीए ने कहा कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा को पेपर लीक की पुष्टि के बाद रद्द कर दिया गया था। अब नीट पुनर्परीक्षा का आयोजन 21 जून को देश भर में किया जाएगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR न्यूज _ पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। श्री मोदी लंबे समय तक लगातार PM पद पर बने रहने वाले नेता बन जाएंगे। इस उपलब्धि के साथ नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ देंगे। 10 जून को PM मोदी का कुल कार्यकाल 4,399 दिनों का हो जाएगा, जबकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दायित्व को लगातार 4,398 दिनों तक संभाला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि PM मोदी का कार्यकाल विकास को समर्पित रहा है।
1: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा नेहरू जी से भी आगे रहा, लेकिन अंतर रहा। नेहरू जी के कार्यकाल में घोटालों का आरोप शुरू हो गया था। मोदी जी के 25 साल चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहते हुए कोई कह नहीं सकता कहीं एक दाग लगा हो। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि पारदर्शी तरीके से देश को आज यहाँ तक ले जाने का काम किया।
0: विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक कल नई दिल्ली में बुलाई गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि इस बैठक में 23 राजनीतिक दल शामिल होंगे। इधर NDA के घटक दलों ने इंडी गठबंधन की बैठक की आलोचना की है। जदयू के वरिष्ठ नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन में कोई एकता नहीं है।
2: इल्लों का गठबंधन जो है स्वार्थ का है और स्वार्थ के अलावे उसमें कुछ नहीं दिखता है। जिनका जिनका स्वार्थ सधेगा वो बैठक में शरीक होंगे, बैठक को अच्छा कहेंगे, और जिनका जिनका स्वार्थ नहीं सधेगा उस बैठक को कहेंगे कि अच्छा नहीं है। तो इस तरह के जो उन लोगों में आपस में गठबंधन है वो बिल्कुल स्वार्थ का गठबंधन है।
0: वही भाग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए बना है। इस गठबंधन को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है।
3: आपस में भगदड़ है उन लोगों में, सिर्फ उठावल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है। और NDA तो एकजुट है, उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उठावल है, वही जाने।
0: RSS प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय मुंगेर दौरे के क्रम में आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संघ के पदाधिकारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। श्री भागवत मुंगेर के सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर पूर्व क्षेत्र की ओर से आयोजित शिक्षा वर्ग में शामिल होंगे। विक्रमशिला सेतु पर निर्मित बेली ब्रिज से परिचालन आज से शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी सहित अनेक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 3 मई की रात पुल का एक स्लैब टूटकर गिर जाने से इस पुल से आवागमन ठप हो गया था। पंकज कुमार गुप्ता ने NTPC कांटी के परियोजना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गुप्ता ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि परिचालन उत्कृष्टता और सुरक्षा के उत्तम मानकों को बनाए रखते हुए परियोजना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। NTPC कांटी परिवार ने श्री गुप्ता के सफल और प्रेरणादायी कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
4: दिनांक 8 जून राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग ने बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, सहरसा और समस्तीपुर जिले के कुछ भागों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के दधपी गांव के समीप NH 120 पर आज 2 वाहनों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतास जिले के संझौली थाना क्षेत्र के तिलई गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब कारोबारी ने हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पुलिस ने हमले के आरोप में दो लोग गिरफ्तार किया है। साइकिल ऑन संडे अभियान के तहत आज पटना के इनकम टैक्स चौराहा से पटना जू तक साइकिल रैली निकाली गई। रैली को पटना साहिब के विधायक रत्नेश कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों के मुकाबले भारतीय घरों में एलपीजी सस्ती मिल रही है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख कल। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 13 जून को नई दिल्ली में होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बांका, कटिहार और भागलपुर जिले में तेज हवा के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है रेडियो रिमझिम।

का अभिनंदन करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में दो तरफा संवाद होता है, किसी न किसी माध्यम से आप अपनी बातों को रेडियो रिमझिम तक पहुंचाते हैं और हम प्रसारण के माध्यम से अपने बातों को आपको सुपुर्द करता हूं। कहा जाता है कि बातचीत करने से, एक दूसरे के बीच संवाद होने से प्रेम और रिश्ता मजबूत होता है। रेडियो रिमझिम 5 जनवरी 2009 को स्थापित हुआ और उस समय से आपका संदेश मिला लगभग नियमित चल रहा है। जब भी मैं सरकारी या गैर सरकारी कार्यों से गोपालगंज से बाहर रहता हूं, तभी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाता हूं। वैसे हमें लगातार गोपालगंज जिला मुख्यालय में रहने का अवसर मिलता है, रेडियो का प्रसारण की निगरानी भी करनी पड़ती है और बेहतर से बेहतर सूचना आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। रेडियो रिमझिम की एक छोटी सी टीम है जिसके माध्यम से हम आपको अपनी सेवाएं देते हैं। सुबह 5 बजे हम अपना प्रसारण रेडियो पर शुरू करते हैं और रात को 11:10 पर रेडियो पर प्रसारण बंद करते हैं, लेकिन जो गूगल के प्ले स्टोर में हमारा ऐप है उसके माध्यम से 24 घंटे हम अपने प्रसारण को जारी रखते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, समाज में सभी तरह के लोग हैं और सभी लोग जो है मिलजुल कर अपने कामों को करते हैं, अपने परिवार के लिए बेहतरी करने के लिए प्रयास करते हैं। कुछ लोग बहुत जल्द सफल हो जाते हैं और कुछ लोग लंबे समय के बाद सफलता पाते हैं, लेकिन जो प्रयास करते हैं वही सफल या असफल होते हैं। असफलता हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं किए, और सफलता यह संदेश देता है कि हम अपने कामों को जी जान से किए हैं। इसमें सूता भर का अंतर होता है जीत और हार में, लेकिन जो लगातार चलता है वही मंजिल पर पहुंचता है, और जो आराम कर के चलता है उसके सफलता में संदेह रहता है। आदरणीय श्रोता बंधु, जब हम एक किसान को, चाहे वह सब्जी की खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अपने कामों को यदि बेहतर ढंग से करते हैं तो उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि अभिभावक मेहनत करते हैं और उनके बच्चे उस फसल को काटते हैं, तो परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। चाहे उसका दिशा थोड़े देर के लिए गड़बड़ हो, लेकिन यदि वह सही मंजिल के तरफ परिश्रम बढ़ रहा है तो सफलता अवश्य मिलेगी। आदरणीय श्रोता बंधु, सेहत सही लाभ कई एक कार्यक्रम रेडियो रिमझिम पर लगातार 2 वर्षों से चल रहा है, जिसमें टीबी के बारे में, डायरिया, फाइलेरिया, एड्स, जो भी बीमारियां हैं उसके विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, उनका भेंट वार्ता और इंटरव्यू हम प्रसारित करते हैं और उनका फोटो सहित फेसबुक पर अपलोड भी करते हैं, ताकि जो युवा साथी हैं वह रेडियो रिमझिम के गतिविधियों पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी नजर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हम तक अपने बातों को मोबाइल के माध्यम से बताते हैं कि इस दिशा में यदि काम किया जाए तो और भी बेहतर होगा। अभी कुछ समय पहले नवीन कुमार जी जो पटना में पढ़ते हैं, उन्होंने बताया कि ज्ञान विज्ञान के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम चलाया जाए, तो हमने ब्रह्मांड की कहानियां का प्रसारण शुरू किया। एक श्रोता ने बताया कि हम लोग जवानी में हवा महल एक कार्यक्रम सुनते थे जो बाद में कहीं दिखाई नहीं दिया, यदि आप उसका प्रसारण करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो प्रत्येक शनिवार को शाम को 7:30 बजे से हवा महल का हम प्रसारण शुरू

0: कर दिए। सोठी बिरजाभार की कहानियां कई बार चली है, फिर भी कुछ श्रोताओं ने कहा कि एक बार इसे चलाया जाए। और बिरहा तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे से प्रसारित होता ही है, और निर्गुण सुनने वाले हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो निवेदन किए जिसका प्रसारण हम शाम को 4 बजे के बाद करते हैं। तो हम भी अपने कामों को श्रोताओं के मन पसंद के अनुसार बनाने का निरंतर प्रयास करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमें रेडियो से, ऐप से या किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, वह जो है सुने और अपनी प्रतिक्रिया दें। अभी हाल में ही शुक्रवार के दिन हम एक गांव में गए थे मीरगंज के तरफ, और बैठे हुए थे तभी एक युवा लड़का आया मेरे पास और कहा कि रिमझिम को तो हम इंटरनेट से सुनते हैं और तुरंत अपने मोबाइल पर ऐप के बदले इंटरनेट से हमें सुनाने लगा। तो हमें पता है कि जो विद्यार्थी हैं, युवा हैं, वह आजकल सोशल मीडिया अकाउंट पर ज्यादा समय देते हैं और उन्हें पता है कि कहां और कब हमें सुनना चाहिए। आप सबको पता ही है कि प्रादेशिक समाचार सुबह में और शाम में दोनों समय प्रसारित हो रहा है, और राष्ट्रीय समाचार सुबह से रात तक कई बार हम प्रसारित करते हैं। तो मिला जुला कर आप लोगों के आदेश का अनुपालन भी होता है, और जब क्षेत्र भ्रमण हम लोग करते हैं तो कई नई नई बातें जो है हमारे सामने आती है, जो हमें भी इस उम्र में सीखने का अवसर मिलता है। व्यक्ति सीखना, चलना, बोलना यदि छोड़ दे तो उसकी गति जो है स्थिर हो जाती है। उम्र चाहे कोई भी हो, व्यक्ति को यह 3 काम हमेशा करते रहना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। और व्यक्ति जब काम करना छोड़ देता है तो उसकी गति जो है धीमी पड़ जाती है। कई लोग ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं से रिटायर हुए हैं, तो वह कहते हैं कि अब तो सरकार हमको रिटायर कर दिया है, खाना है और सोना है। ऐसी बात हम उन साथियों से कहेंगे कि न सोचे, असली जिंदगी तो रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है। जवानी में बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में अपना समय आप बिता दिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने लिए घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। तो असली जीवन का आनंद 60 वर्ष के बाद है। आप इस उम्र में हैं तो जीवन का भरपूर आनंद लीजिए, टहलिए, घूमिए, अपने हम उम्र के साथ समय दीजिए। कहा जाता है कि व्यक्ति कितना हो परेशान हो, लेकिन हम उम्र के साथ जब घूमता है, बातें करता है, टहलता है, तो जीवन का एक घड़ी जो है मूल्यवान हो जाता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम यह चाहता है कि उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर उत्साह, उमंग और उत्साह बना होना चाहिए। प्रत्येक घंटा हम जो है नए नए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। सुबह में रेडियो चालू कीजिएगा तो भगवान के भजन से शुरू होगा, श्री प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन होगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो हाल चाल पूरे जिले का आप सुनिएगा, उससे आगे बढ़िएगा तो राष्ट्रीय समाचार आ जाएगा, उससे आगे बढ़िएगा तो प्रादेशिक समाचार आ जाएगा, और सरकार की योजनाओं के बारे में भी समय समय पर जो उसके विशेषज्ञ हैं उनका भेंट वार्ता भी हम प्रसारित करते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है। जीवन जो है हमें उत्साह से भरने का काम है। यदि आप निराशा के तरफ बढ़ रहे हैं तो जवानी में ही बुढ़ापा आ जाएगा। व्यक्ति के ऊपर कितना हो बोझ हो, लेकिन हंसते मुस्कुराते अपने कदम को आगे बढ़ाते रहिएगा। और जो व्यक्ति किसी चीज के लिए पागल होता है, मेरा जो अनुभव रहा है उसे कभी नहीं मिलता है। जैसे मजनू जो है लैला के लिए सारा जीवन पागल रहा, लेकिन अंत में उसे लैला नहीं मिली। उसी तरह जो व्यक्ति धन के लिए बेतावला हो गया है, घाम धूप बारिश कुछ नहीं देख रहा है, तो यह नहीं है कि उसे मिल ही जाएगा। कहा जाता है समय के साथ हर चीज मिलता है, लेकिन समय से पहले आप प्रयास कीजिएगा तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। 12 महीना पढ़ने के बाद ही वार्षिक परीक्षा आता है। इसी तरह यह जीवन का फॉर्मूला है कि जीवन में जो चीज मिलना है वह मिलेगा, लेकिन आप अपना प्रयास जारी रखिए, मेहनत से कभी मत चूकिए, और मेहनत जो है सही दिशा में होना चाहिए। आदरणीय श्रोता बंधु, हम बता रहे थे कि सेहत सही लाभ कई जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम में आजकल जो है एक सर्वे हो रहा है। भारत सरकार या कोई गैर सरकारी संस्था जो है सर्वे कर रही है कि रेडियो रिमझिम से यह कार्यक्रम चला तो किस गांव में कितने लोग कैसे सुनते हैं। पहला कि रेडियो से सुनते हैं, कि ऐप से सुनते हैं, कि इंटरनेट से सुनते हैं, उनके बारे में वह जानकारी ले रहे हैं। तो मेरा यह आग्रह होगा, निवेदन होगा कि आप लोग सर्वेकर्ता का साथ दीजिए, थोड़ा सा उनका सहयोग कीजिए, और वह जो जानना चाहते हैं रेडियो रिमझिम के बारे में आप बताइए। आपका थोड़ा सा सहयोग जो है रेडियो रिमझिम को बुलंदियों के तरफ ले जाएगा, आपका सकारात्मक सोच ही इसे बेहतर बनाएगा। तो इसमें आप लोग सहयोग करें, और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, बहुत सारे संदेश भी आए हैं तो उसका उत्तर भी देना है। तो मेरे साथ सोनू जी बैठे हैं जो प्रश्नों को पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुंचा हुआ है नारद सिंह जी का लछवार से। रेडियो रिमझिम को इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं, कार्यक्रम बेहतर है, रिकॉर्डेड कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम में बहुत आनंद आता है, हालचाल समय से चलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्री नारद जी, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगता है किसी न किसी माध्यम से प्रत्येक सप्ताह जिले के अंदर से, जिले के बाहर से, विदेशों से बहुत सारे संदेश आते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है कि सप्ताह भर रेडियो रिमझिम 90.4 ने जो प्रसारण किया उसका फीडबैक क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। हम अपने यंत्र के माध्यम से बेहतर प्रसारण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं यदि कोई चूक होती है तो आप लोग बताते हैं तो उसे और बेहतर हम करने का कोशिश करते हैं। आदरणीय नारद जी, जो हमारे यहाँ का ऑनलाइन कार्यक्रम है जो बंद था, वह लगातार चल रहा है। हमारी बहन, बेटियाँ, माताएं फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ती हैं, और रिकॉर्डेड कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उसे स्थिर मन से, शांति दिमाग से उस कार्यक्रम को बनाया जाता है। बहुत सारे रिसर्च और शोध के आधार पर यह बनता है। तो कार्यक्रम बेहतर हो यदि आप लोग उसे पसंद करते हैं तो उस कार्यक्रम का हम एपिसोड बढ़ाते हैं, उस कार्यक्रम में और परिश्रम करते हैं। आपने आनंद से भर दिया कि आपको रेडियो रिमझिम का प्रसारण अच्छा लगता है, और दोनों कार्यक्रम अच्छा लगता है, रिकॉर्डेड और ऑनलाइन। तो हम इसके लिए अपने पूरी टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, और आग्रह करेंगे कि जो लोग रेडियो नहीं रखे हैं वह ऐप के माध्यम से सुने, इंटरनेट से सुने, और जो रेडियो रखे हैं वह रेडियो पर जरूर सुने। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मात्र मोबाइल से रेडियो रिमझिम के नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बातों को जरूर रखें। हर व्यक्ति परेशान है, समस्याग्रस्त है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी है। दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका रास्ता न निकले, बशर्ते हम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से प्रयास करें तो हर समस्या का समाधान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है मकसूदपुर से रामलाल शाह जी का। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों को सुनने के बाद राष्ट्रीय समाचार को अवश्य सुनता हूं। सरकारी सेवा से मैं रिटायर व्यक्ति हूं। रेडियो हमारा साथी है। आपका संदेश मिला, मैं काफी गहरी बात समाज के लिए आप कहते हैं, हमें काफी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं। आपने बताया कि आप रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो मेरे समझ से उम्र जो है एक संख्या है, और वह संख्या आपने पार किया। अब जीवन का असली आनंद लीजिए। सुख सुविधा रहे या न रहे, लेकिन व्यक्ति के अंदर उत्साह जरूर होना चाहिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कई बार बोले हैं कि व्यक्ति को धन से यदि सुख मिलता तो बहुत सारे लोग जो धनिक है वह जीवन में कभी मरते नहीं, और बहुत सारा धन देने से यदि बेटी को सुख मिलता तो कई माँ बाप ऐसे हैं कि अपना सारा धन संपत्ति बेचकर भी बेटी को दे देते। यह सब नसीब का खेल है, भाग्य का खेल है, लेकिन ईश्वर ने हमें जिस उम्र में लाया है उस उम्र का हमें आनंद और उत्साह लेना चाहिए। मेरे समझ से आप जब 60 से ऊपर हो गए तो जीवन का बहुत सारा अनुभव जो है अपने आप में रखे हुए हैं। आप अपने अनुभव को परिवार में, समाज में वितरण कीजिए। आज यदि 20 साल के बच्चे के साथ आप अपना अनुभव शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो 20 साल के उम्र में वह लड़का जो है 80 बरस का अनुभव ले लेगा, क्योंकि अनुभव के आधार पर ही यह दुनिया चलती है। जिंदगी में हमने देखा है कि जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो सास जो है उसे कई तरह की प्रशिक्षण देती है, बातें बताती है उस खानदान के बारे में, उसके पूर्वजों के बारे में, घर के अगल बगल जो लोग रहते हैं उनके बारे में। वह बहू जो है धीरे धीरे सक्रिय हो जाती है, और आज के जमाने में शादी विवाह हुआ, बच्चे जो है बहू को लेकर चल दिए, सास के नजदीक रहने का अवसर नहीं मिला, जीवन का, परिवार का अनुभव से वह बहू वंचित रह गई। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वह काफी अनुभवी लोग थे, उनके पास अक्षर ज्ञान भले ही कम हो लेकिन जीवन के मूल्य को वह समझते थे, जीवन के गहराई को समझते थे, अपने जड़ों को, परिवार को, समाज को कैसे बेहतर किया जाए। हमें आज भी याद है कि हम जिस गांव में निवास करते थे 2015-17 के पहले पुलिस और थाना जो है कभी उस गांव में नहीं गया था। कोई भी मामला बनता था तो गांव के लोग बरगद या पीपल के नीचे बैठ जाते थे, सभी जाति धर्म के लोग, और आपस में परामर्श करके समस्या का समाधान कराते थे। यदि गांव के पूरब से पानी आ रहा है तो पश्चिम कैसे नदी में जाएगा या उसके लिए कौन सा रास्ता बनाया जाएगा। बरसात के दिनों में भी लोग बैठते थे, तो जो भाईचारा था, आपसी संदेह था, वह जो है मोबाइल जो है खा गया। बाद जब गांव में हम जाते हैं तो केवल बच्चे, बूढ़े और महिलाएं दिखाई देती है, और पता चलता है कि युवा वर्ग जो है कोई सऊदीया गया, कोई कतर गया, कोई कश्मीर गया, कोई पंजाब गया, और सब लोग जो है रोजी रोजगार के तलाश में निकल गए हैं। तो जीवन का जो मूल्य है, यदि बुजुर्ग अपने यहाँ के युवाओं को देते हैं तो वह माहौल आज भी हो जाएगा। हमें भाईचारा और आपसी संबंध को बेहतर और मजबूती से बनाए रखना है, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं उसे लोग सोने की चिड़िया कहते हैं। हमारे जो पूर्वज थे वह जो है जात पात और धर्म से बहुत ऊपर उठकर काम करते थे, गांव में सार्वजनिक कुआं खुदवाते थे, सड़क बनवाते थे, हर गांव में एक छोटा सा जंगल होता था जिसमें लकड़ी जलावन लोग लाते थे। यह कल्चर जो है धीरे धीरे बदल गया है और लोग जो है अपने आप में समाहित होने लगे हैं। यह अच्छी बात नहीं है मेरे समझ से। समाज में सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह बेहतर होता है। ये भी याद है कि गांव का कोई व्यक्ति कमजोर है, उसकी बेटी का शादी है, तो गांव के जो पूंजीपति लोग रहते थे वह सहयोग कर देते थे कि यह अनाज से, यह कपड़ा से हमारे गांव का बेटी का शादी होगा। यह सब कल्चर जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और हम लोग एकांकी हो रहे हैं। इस पर सभी लोगों को पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग कहां से कहां तक जा रहे हैं, इस विकास की आधी दौड़ में हम कहां से कहां बिखर रहे हैं। समाज जो है हर लोगों को एक दूसरे से बांधता है, रिश्ता बनाता है, और यह रिश्ता जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग भी अमेरिका और इंग्लैंड जैसा हो जाएंगे। तो हम लोगों की सभ्यता संस्कृति की जड़ें जो है बहुत ही गहरी है, और जो आज के युवा साथी हैं उन्हें उन जड़ों को मजबूत बनाना है और बेहतर देश बनाना है। आप जो है रिटायर्ड व्यक्ति हैं, सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं, और रेडियो जो है एक साथी होता है, एक दूसरे का सहयोग करता है। आप जो भी सुनना चाहते हैं रेडियो रिमझिम आपको उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय समाचार, प्रादेशिक समाचार, पूरे गोपालगंज का हालचाल, यह सब सूचना हम देते रहते हैं। साथ में यदि आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल है, तो उसके यूट्यूब पर रेडियो रिमझिम लिखिएगा तो हम लोग कैसे हैं, स्टूडियो में कैसे काम करते हैं, क्षेत्र भ्रमण में क्या क्या करते हैं, वह सब चीज जो है हम फेसबुक और रेडियो रिमझिम के नाम से जो यूट्यूब है उस पर डालते हैं, और उसमें भी हमारे कई साथी हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। काफी अच्छा लगता है। रेडियो रिमझिम समाज को जोड़ने का काम, सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने का काम, और अपने जिले में खेती का और उन्नति हो, खेती में और विकास हो, उससे संबंधित सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और अकेला आगे बढ़ना कोई बेहतर नहीं है, जब पूरा गांव, पूरा समाज आगे बढ़ेगा तभी जो है हमारा देश उन्नति करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है महेचा से शिव शरण प्रसाद जी का। लिखा गया है, नमस्कार, आज भी मैं गांव में रेडियो रखा हूं और रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों को सुनता हूं। आपका संदेश मिला बहुत ही अच्छा और यूनिक कार्यक्रम है जो आम आदमी को जोड़ता है, युवाओं को कर्तव्य का बोध कराता है। रेडियो रिमझिम के सभी कार्यक्रम बहुत ही बेहतर हैं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके महेचा ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम का प्रत्येक कार्यक्रम यूनिक है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो प्रत्येक कार्यक्रम बेहतर लगेगा। आपके पास जितना समय है उसे आप सुने। आपने आपका संदेश मिला कार्यक्रम की काफी प्रशंसा की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपको बताते चलें कि जीवन का जो खट्टा मीठा अनुभव है वह समाज के हर व्यक्ति के पास होता है और हम उसे संग्रहित करते हैं। कभी हम ई रिक्शा वाले भाई के पास बैठते हैं तो समाज के बुद्धिजीवी समाज के पास बैठते हैं, तो कभी कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो उसके पास समय देते हैं। और उन तमाम अनुभवों को आपका संदेश मिला कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रसारित करते हैं। यदि कोई सरकारी सेवा में है तो अपने पदाधिकारी के दबाव से या काम से परेशान है। यदि कोई बेटी का बाप है तो वह शादी के लिए भी परेशान है। कोई खेतीहर है तो समय से बारिश नहीं हुआ उसके लिए परेशान है। कोई गाड़ी घोड़ा वाला है तो उसे सवारी नहीं मिला वो परेशान है। तो जीवन में हर व्यक्ति परेशान है, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी यदि कोई खुश रहता है तो वही जो है सच्चा जीवन का आनंद लेता है। जीवन में हर व्यक्ति जो है परेशानी में है, दबाव में है, लेकिन उन दबावों के बीच भी यदि आप अपने जीने का जज्बा और अपने कामों को प्राथमिकता देते हैं तो मेरे समझ से सही इंसान वही है। और कोई दहिने बाएं करके रुपया कमा रहा है तो उसकी तुलना कभी भी किसी से न करे, न अपने परिवार में चर्चा करे। मेरे समझ से हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे गुण दिए हैं। कोई व्यक्ति भले मजदूरी करता है या चाहे कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है, सबके लिए ऊपर वाला हर चीज उपलब्ध कराता है। रेडियो रिमझिम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह भरने का काम करता है और वैसे वैसे कार्यक्रम का हम प्रसारण करते हैं जो दूसरे रेडियो स्टेशन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसान परिवार से आते हैं। और हम लोग का जन्म उस जमाने में हुआ था जब हल बैल से खेती हुआ करती थी। ढेला जो है हम लोग लबदा से पीटा करते थे ताकि खेत जो है ठीक रहे। उस समय लोहिया भी नहीं होता था, ट्रैक्टर कभी कभार दिखाई देता था। 50 साल पहले की कहानियां अपनी जुबानी आपको बता रहे हैं। खेती में बड़ा मेहनत होता था, एक बीघा में 10 बोझा 12 बोझा गेहूं हो जाए काफी समझा जाता था और बैलों के माध्यम से उसका दौरी होता था। इस जेठ के दोपहरी में और बैलों के साथ जो है दौरी करना, उसे ओसाना और फिर गेहूं को घर में लाना अपने आप में कठिन काम था। आज का दौर जो है मशीन और यंत्र का हो गया है, खेती भी बड़ी आसान हो गया है। पानी के लिए ढेकुल चलाना पड़ता था और कुआं से तब जाकर खेतों का प्यास बुझता था, पानी पहुंचता था। और आज तो खेती भी बहुत आसान हो गया है और हमें लगता है कि हम लोग दबाव में हैं। तो हर जमाने में हर चीज उपलब्ध रहता है, बस अपने अंदर जो है उत्साह होना चाहिए कि हम इस काम को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें सुनने से और दीवार पर लिखे हुए अच्छी बातें पढ़ने से व्यक्ति अच्छा नहीं बनता है, उसके अंदर स्वयं परिवर्तन की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। बहुत बड़े व्यक्ति अमेरिकन एक दार्शनिक हैं, उन्होंने लिखा है कि यदि आपका बचपन गरीबी में बीता तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका बुढ़ापा जो है गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। आप अपने पूरी जवानी में इतना परिश्रम करें कि बुढ़ापा जो है आनंद और सुख से बीते। यह बात छोटी है लेकिन हमें इस पर मनन करनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर द्वारा दिया गया ऊर्जा और उत्साह है, बस वह सही काम करे। हमें लगता है कि कभी कभी हम लोग दहिने बाएं करते हैं और बड़े होशियार हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर भी एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमारे हर कर्तव्य का हिसाब लेखा जोखा रखता है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपका संदेश मिला, यह कोई यूनिक कार्यक्रम नहीं है। आम लोगों के भावना को हम जो है व्यक्त करते हैं और जीवन में बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। हम जो है आप लोगों से कुछ सीखते हैं, समझते हैं और उसी बातों को हम व्यक्त करते हैं। तो जीवन में बेहतर बनने के लिए परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और जो दहिने बाएं करते हैं उनका परिणाम जो है आप देखिएगा। हम अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जिनका तिरंगा जो है, जिनका बातें जो है, जिनका सौ वैभव जो है आकाश में खिलता था, और 50 सालों में हमने देखा कि आज उनके बेटा बेटी का हाल, पोता पोती का हाल बड़ा ही दुर्दशा में बीतता है। तो जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार यह जरूर सोचना चाहिए कि आज जो हम कर रहे हैं इसका प्रभाव जो है हमारे आने वाले नस्ल पर कैसा पड़ेगा। यदि इस पर आप विचार कर लिए तो जीवन को जीत गए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अरशद मियां सासा मूसा पुरानी बाजार से। रेडियो रिमझिम से प्रसारित नए और पुराने गीत बहुत ही अच्छे होते हैं। मौसम इतना बदल गया, सभी जीव जंतु पशु पंछी सभी बेहाल हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय अरशद जी, आपके पूरे परिवार को, सांसा मूसा बाजार वासियों को, ग्राम वासियों को, पुरानी बाजार के लोगों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आपने जो संदेश दिया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के युवा साथी जो है रिमेक्स गाना सुनना चाहते हैं, और जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वह जो है बहुत पुराने और मधुर गीत सुनना चाहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पुराने गीतों का एक बहुत सुंदर अर्थ होता था, और आज के रिमेक्स गाना में म्यूजिक इतना है कि कान जो है बहरा हो जाएगा, और वह क्या गाया जाता है खुद समझ में नहीं आता है। तो चूंकि हमें युवाओं को और सभी उम्र वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलना है, तो हमारी भी यह परेशानी है कि नए पुराने गीतों का हम प्रसारण करते हैं। चूंकि हम प्रसारण करता है और सभी लोगों को साथ लेकर चलना है। आपने अंतिम में यह प्रश्न रखा कि गर्मी इतना ज्यादा है क्या किया जाए, तो यह बात जो है एकदम 100% सही है। और अपने बिहार में तो कई जिले में 42 डिग्री से ज्यादा तापमान हो गया है, और वहाँ के लोग जो है बेहाल हैं। मेरे समझ से वन की संख्या, 5 जून को हम लोग जो पर्यावरण दिवस मनाएं, हर व्यक्ति एक वृक्ष माँ के नाम पर लगाया, उसके अलावा भी जितना जनसंख्या है उसका 30% कम से कम जंगल होना चाहिए पूरे जमीन का, और उसमें हम लोग काफी फिसंडी हैं। आज से 50 साल पहले यदि देखा जाए तो NH के दोनों किनारे इतना घनघोर वृक्ष हुआ करता था, सिंगल रोड था, कि लोग साइकिल चलाते चलाते कहीं कहीं छांव में बैठकर आराम कर लेते थे, 2 घंटा सो भी लेते थे। तो धीरे धीरे हर गांव से जो है वृक्ष की संख्या कम होती गई, हम लोग का लालच बढ़ता गया, और हम लोग जो है अधिक से अधिक उत्पादन के लिए वृक्षों की कटाई शुरू कर दिए। लेकिन आज भी हम जो है सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, गैर मजरुआ भूमि पर भी वृक्ष आदि लगाते हैं, तो यह पर्यावरण के लिए काफी अनुकूल रहेगा। और जहाँ पर वृक्ष रहता है वहाँ का तापमान 2 से 5 डिग्री तक कम हो जाता है। और आज पशु पक्षी जो है धीरे धीरे समाप्ति के तरफ जा रहे हैं। गौरैया पक्षी जो है पहले इतना होती थी कि हर जगह चहचहाहट सुनाई देता था, उसकी भी संख्या कम हो गई। एक जमाना था कि आकाश में केवल गीधे गीध दिखाई देता था, एक पशु मरता था कहाँ से उल्लू पहुँच जाते थे। आज जो है गीध अपने जिले में कहीं दिखाई ही नहीं देता था। जो पर्यावरण संरक्षक थे और जो जमीन पर के गंदे चीजों को साफ कर देते थे, और वृक्ष का लालच जो है, पेड़ कटाई का लालच इतना हुआ कि इसका ब्लैक मेलिंग होने लगा। सरकार द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वृक्षों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा जो नदी था उसमें इतना जल होता था, पानी होता था कि मई जून में कि गर्मी से बेहाल लोग जो नदी के किनारे नाला किनारे रहते थे वह आनंद लेते थे। और वह पानी जो है लगभग हमको लगता है कि 25 से 40% नदी का पानी भी कम हो गया है। पहले कुआं से पानी निकाल कर आदमी पीता था, नहाता था, तो जितना जरूरत था उतना निकाल लेता था। लेकिन आजकल जो बिजली आ जाने से घर घर मोटर लग गया है, हमारा काम यदि 5 लीटर में होना है तो हम लोग 50 लीटर खींच लेते हैं। और यह जो है संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, आने वाले भविष्य के लिए बड़ा ही कठिनाई होगा, जल संकट होने वाला है। यदि हम लोग जल का संरक्षण नहीं करें, वृक्ष का संरक्षण नहीं करें, अभी जो है वृक्ष कटा है जिसका प्रभाव हम लोग पर पड़ रहा है, और इस धूप में गश्त खा के कई लोग जो है गिर जा रहे हैं, तो हमें जो है वृक्ष कम से कम 1 लगाना चाहिए अपने जीवन काल में। नहीं, प्रति वर्ष 1 से 10 वृक्ष लगाइए। और यह कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने जमीन में लगाएंगे, हम केवल फलदारे लगाएंगे। अरे नहर के किनारे 10 को लगा दीजिए, लोग याद रखेंगे। पोखरा के किनारे लगा दीजिए, अरे सरकारी है तो क्या है, आप लगा दीजिएगा तो लोग याद रखेंगे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस कार्य को करते हैं, गुमनामी में हैं। ऐसे पर्यावरण प्रेमियों का हम स्वागत करेंगे, और हमें भी अपने स्तर से करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे एगो पेड़ लगाने से थोड़े गर्मी कम हो जाएगा, यह बात नहीं सोचना चाहिए। यदि यही बात सब लोग सोचने लगेंगे तो वृक्ष लगाएगा कौन। इसलिए हमें जो है वृक्ष लगाना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए। और वह वृक्ष जो है अपने पूरे जीवन काल में यदि हिसाब जोड़ा जाए तो इतना ऑक्सीजन, इतना जलावन, इतना फल फूल हमें दे देता है कि एक व्यक्ति के लिए एक वृक्ष जो है पर्याप्त हो जाता है। यदि हम 70 साल जिंदा रहे और प्रति वर्ष 1 वृक्ष लगाए तो हम 70 वृक्ष लगा देंगे। तो इस पर हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है हरी किशोर कुशवाहा जी का, बंतैल सासा मूसा से। रेडियो रिमझिम परिवार को नमस्कार, मैं मुंबई में रहकर काम करता हूँ, गांव पर रेडियो से और यहाँ पे ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ और जुड़ता भी हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो अभी कई संदेश मेरे पास है, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
0: आदरणीय कुशवाहा जी, आपके पूरे परिवार को, आपके ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा कि आप मुंबई में रहते हुए रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं। रेडियो रिमझिम में जो आरजे होते हैं वह जब बोलते हैं तो हिंदी और भोजपुरी का मिक्स होता है और वहाँ लगता है कि यह अपने गांव का रेडियो है, इसे हमें सुनना चाहिए, हालचाल हमें सुनना चाहिए कि हम जो है पूरे अपने जिले का सूचना पा जाएंगे। आप जब समाचार पत्र पढ़िएगा तो उसमें पूरे देश विदेश की सूचना होती है। जब राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार सुनिएगा तो पूरे राष्ट्र का और पूरे प्रदेश का सूचना होता है, लेकिन हालचाल जो है केवल गोपालगंज जिले का सूचना देता है और उससे आप अप टू डेट हो जाइएगा कि मेरे जिले में क्या हुआ, कैसे हुआ। जिंदगी में यदि हमारे पास सूचना है, जानकारी है, तो हमारा भी विकास होगा और हमारे समाज का भी विकास होगा। इस बात पर हमें ध्यान रखना है। हम लोग आजकल मोबाइल पर लगातार YouTube पर रील देखते हैं, कई चीज देखते हैं, लेकिन उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाती है। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो रिमझिम जो प्रसारण करता है वह हर बात हर चीज जो है पुष्टि के आधार पर प्रसारित करता है और प्रयास करता है कि श्रोताओं के पास अच्छी से अच्छी सूचना पहुंचे और सच्ची सूचना पहुंचे। हमें जो है अपना TRP नहीं बढ़ाना है, हमें अपने श्रोताओं की संख्या बढ़ाना है, हमें एक दूसरे को दिलों से जोड़ना है। यदि आप हमें सुनते हैं, गुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तब हम कुछ बेहतर कर पाते हैं। हमारे पास न इतनी समझ है, न बुद्धि है, न विवेक है, लेकिन हमारे आदरणीय श्रोताओं के बल पर ही हम कुछ कर पाते हैं। और यदि आप सुनते हैं तो हमारा अस्तित्व बना हुआ है, यदि नहीं सुनते हैं तो हम लोग अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर मानवीय गुण का विकास करना ही हमारा भी उद्देश्य होता है, रेडियो रिमझिम का भी उद्देश्य होता है। और जीवन में यदि व्यक्ति शिक्षित होता है और संस्कार के साथ शिक्षित होता है तो वह न कभी झुकेगा, न कभी टूटेगा, न कभी गरीब होगा। लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार का होना बहुत ही जरूरी है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों से बात करते करते समय कब निकल जाता है हमें भी पता नहीं चल पाता है और मन में बहुत सारी बातें होती हैं। जीवन का कई अनुभव होता है, हमारा अनुभव होता है, हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, उनसे मिलने जुलने के बाद उनका भी अनुभव हम साझा करते हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है और आप लोगों का आपका संदेश मिला कार्यक्रम में जो सूचना आती है, जो संदेश आता है, उससे हमारे पूरे टीम का मनोबल बढ़ता है। तो अंत में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि इस ग्रीष्मकालीन मौसम में, गर्मी के मौसम में अपने को, अपने परिवार को और अपने पास जो पशु पक्षी पाले हुए हैं उस पर ध्यान रखें। संभव है तो यदि कोई इस गर्मी के मौसम में आपके घर के अगल बगल यदि पानी मांगता है तो उसे जरूर पिलाएं, यही एक मानव धर्म भी है। इसी के साथ अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा

0: आ रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं। सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करें बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में।

0: यह प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
1: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोग

0: लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मॉनसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नम्बर है 011-233-1048। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञ
6: विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
16: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
16: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
16: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
17: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
18: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
19: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज की धरती से शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बाढ़ और सुखाड़ पर हुई बैठक में लिया गया आवश्यक निर्णय, नदी में 4 युवक डूबे, 3 की बचाई गई जान, 1 युवक लापता, संदिग्ध स्थिति में 1 मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी और कई जगहों से शराब तस्करों पर की गई आज भी कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी शुरू की है। आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज के अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम घोषणाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाली, ट्रांसफर नीति और लंबित मुकदमों के निपटारे तथा उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर सरकार व्यापक योजना पर काम कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE-4 की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, जुलाई में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी, प्रारंभिक चरण में कम से कम 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही विभाग अगले 10 दिनों में भी सभी स्कूलों से रिक्तियों का डेटा एकत्र करेगा ताकि जरूरत के अनुसार पदों की संख्या बढ़ाई जा सके। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि 30 जून तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन करने के साथ ही नई नीति के तहत शिक्षकों को उनके गृह जिले या उसके आसपास के इलाकों में तैनाती दी जा सकती है। महिला शिक्षिकाओं को घर के नजदीक और पुरुष शिक्षकों को प्रखंड स्तर पर पदस्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। प्राथमिकता के आधार पर 10,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान के लिए भी नई मुकदमा नीति लाई जाएगी। 10 साल से पुराने मामलों की समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। साथ ही शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस दौरान मिथिलेश तिवारी से बातचीत करने पर उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो कहा वह आप भी सुनिए।
20: यूपीएससी को भेजेंगे, ये निर्णय हो गया, उसकी तैयारी चल रही है।
21: सर, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नीति बन रही
20: है। जून 30 जून तक सारे ट्रांसफर के मामले समाप्त कर दिए जाएं। शिक्षकों को बहुत बड़ा रिलैक्स हम लोग देने जा रहे हैं। महिला शिक्षिकाओं को उनके पंचायत के बगल वाले पंचायत में और पुरुषों को उनके जिले में, और हर हाल में शिक्षक चूंकि जिला कैडर होता है इसलिए किसी शिक्षक को दूसरे जिले में नहीं रहने देंगे, उन्हीं के जिले में ला करके उनका पोस्टिंग कर देंगे और जहां भी रिक्ति होगी वो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
19: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, बरौली के विधायक मंजीत सिंह और सदर विधायक सुभाष सिंह तथा विधान परिषद के सदस्य वीरेंद्र नारायण प्रसाद सिन्हा और विधान परिषद के सदस्य जनक राम, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त गौरव कुमार तथा अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे ने प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान बिस्तरी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इसमें मुख्य रूप से बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माझा, गोपालगंज एवं कुचायकोट संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। बाढ़ से निपटने के लिए 41 सरकारी नाव, 62 निजी नाव एवं 103 मत्स्य विभाग की नावें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा 24,670 पॉलीथीन सीट, 162 मानव राहत शिविर तथा 273 सामुदायिक रसोई केंद्र चिन्हित किए गए हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि जिले में SDRF की एक टीम पहले से तैनात है तथा NDRF की टीम भी शीघ्र ही उपलब्ध होगी। तटबंधों, लुइस गेटों एवं बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं को सुरक्षित और क्रियाशील बनाया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए डीजल अनुदान, कम अवधि वाली धान की फसलों तथा वैकल्पिक फसलों के बीज की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी दी गई। जादोपुर थाना क्षेत्र में रविवार की दोपहर एक भीषण दर्दनाक और बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मसान थाना के पास गंडक नदी में नहाने के दौरान चार दोस्त अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। वहां मौजूद स्थानीय लोगों और मल्लाहों ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए तीन युवकों को तो मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन एक 21 वर्षीय युवक तेज बहाव और गहरे पानी में होने के कारण नदी में लापता हो गया। इस खौफनाक हादसे की खबर जैसे ही शहर में फैली, लापता युवक के घर में कोहराम मच गया और घाट पर रोते बिलखते परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। लापता युवक गोपालपुर थाना क्षेत्र के सपहा गांव के घनश्याम लाल श्रीवास्तव का पुत्र अमन कुमार है। परिजनों ने बताया कि अमन BCOM का छात्र है और अपने दो भाइयों में सबसे छोटा है। पिछले 3 महीनों से नगर थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर में अपने मामा के घर पर रह रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वह खुद को आत्मनिर्भर आने के लिए मनी ट्रांसफर का काम भी संभालता था। छुट्टी होने के कारण रविवार को अपने दोस्तों के साथ जादोपुर के मसान थाना बांध के पास गंडक नदी में नहाने के लिए चला गया और वहां नदी उसकी काल बन गई। अब हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर SDRF की टीम नदी में लगातार उसकी तलाशी को लेकर अभियान चला रही है। नगर थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी 38 वर्षीय राजू शाह, जो मजदूरी का काम करता था, बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई है। 2 दिन पहले यूपी के कुशीनगर के बाघा चौर में वह काम के लिए गया था। वहाँ उसका ससुराल भी है और ससुराल से लौटने के दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। अब मृतक राजू शाह के परिवार वाले इस मामले में पुलिस से जांच करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। पुलिस भी फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आज कई जगहों से शराब तस्करों पर भी कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बंजारी पोखरा के पास शिव मंदिर के नजदीक एक गाड़ी को पकड़ा है। इसमें से भारी मात्रा में शराब मिली है। बताया जा रहा है कि 99 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद हुई है। कार को पुलिस ने जब्त किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़ा गया आरोपी बाला रामांत लेकू, यह गुड़गांव का रहने वाला है, और विनय कुमार सिंह, यह मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इनकी गाड़ी और शराब को जब्त किया है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने भी गंडक नदी से 675 लीटर देशी शराब को बरामद किया है और एक नाव को भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी में छापेमारी की। इस दौरान नदी से नाव पकड़ी गई जिस पर 675 लीटर देशी शराब थी। इस दौरान चालक और शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने नाव तथा शराब को जब्त किया है और अब तस्करों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने ही 36 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हरिहरपुर तीन मुहानी के पास जांच अभियान शुरू किया था और इसी में 36 लीटर शराब पकड़ी गई। साथ ही अभियुक्त रंगलाल राम को गिरफ्तार किया गया जो नगर थाना के एक डेरवा गांव निवासी बच्चा राम का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब और आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज जिले के सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना अध्यक्षों ने अपने थानों पर चौकीदारों को सख्त हिदायत दी। बताया जा रहा है कि चौकीदारों को सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और आम जन से बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखने और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों पर विशेष नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए। मुजफ्फरपुर में आगलगी की घटना के बाद से गोपालगंज में भी लगातार अस्पताल इत्यादि की जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड सहित अन्य वार्डों का भी अग्निशमन विभाग के DSP ने जांच किया। आग से बचाव के उपकरण की व्यवस्था फेल दिखी, फायर अलार्म सिस्टम भी फेल दिखा, अन्य कई खामियां सामने आई। DSP विकास कुमार ने इसकी जानकारी दी है और अस्पताल प्रबंधन को सख्त हिदायत देते हुए जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से कुचायकोट के जलालपुर पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता संजीव एवं PLV इमरान अंसारी तथा आशुतोष सिंह की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को नालसा मानव वन्य जीव संघर्ष पीड़ितों के लिए नालसा द्वारा न्याय तक पहुँच, अस्थायी लोक अदालत और विशेष लोक अदालत समाधान समारोह कार्यक्रम इत्यादि के विषयों पर जागरूक किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्राथमिक कृषि शाख समिति पैक्स प्रतिनिधियों एवं कृषकों के साथ सम्मेलन किया गया। इसमें पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक और सदस्य तथा कृषकों सहित 90 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक कृषि समिति के सदस्यों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को एक अभियान का रूप देना तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती और अन्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को अपने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सड़क, शिक्षा, बिजली, पेयजल, भूमि विवाद, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सहित कई जन समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले के त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी ने कहा कि जनता की सेवा ही जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा दायित्व है और सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना हमारी प्राथमिकता है। जनता दर्शन के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। उचका गांव थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी गोविंद माझी है जो उचका गांव के जमसरी निवासी हीरामन माझी का पुत्र है। इस पर पहले से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज की धरती से शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बाढ़ और सुखाड़ पर हुई बैठक में लिया गया आवश्यक निर्णय, नदी में 4 युवक डूबे, 3 की बचाई गई जान, 1 युवक लापता, संदिग्ध स्थिति में 1 मजदूर की मौत, पुलिस जांच में जुटी और कई जगहों से शराब तस्करों पर की गई आज भी कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
25: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
24: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
26: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
27: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
28: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
29: सुनिए सुनिए सुनिए,
30: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
29: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
30: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
29: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
31: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, और आज एक बार फिर से मैं लौट आई हूँ अपनी सुपर हिट पुराने गानों की प्लेलिस्ट के साथ और उनके पीछे छुपी हुई कहानियों के साथ। आज की मेरी प्लेलिस्ट उन गानों के नाम हैं जो आज भी 50 साल के बाद भी उतने ही खूबसूरत हैं, उतने ही जवां हैं और हमें जुबानी याद हैं। उस एरा के नाम है आज का ये शो जब फिल्में रंगों की मोहताज नहीं थी। उस एरा का थ्रिल और एक्साइटमेंट आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं बात कर रही हूँ द ब्लैक एंड व्हाइट एरा की, जब दिलीप साहब, देवानंद साहब, राज कपूर जी, शम्मी कपूर जी, मधुबाला, साधना, मीना कुमारी जी जैसे सितारों ने अपना जादू बिखेरा था बड़े पर्दे पर। जब ओपी नैयर, मदन मोहन, ST बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री को नई पहचान दी। ये वो वक्त था जब गाने वन गो में रिकॉर्ड किए जाते थे, और हम जब भी गोल्डन एरा के गानों की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई गाना दिमाग में अगर आता है तो वो है लता दीदी की आवाज़ में गाना लग जा गले। वैसे क्या आप जानते हैं ये गाना फिल्म के डायरेक्टर ने पहली बार सुनकर रिजेक्ट कर दिया था। म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी ने काफ़ी कन्विंस किया और उसके बाद इस गाने को रिकॉर्ड किया गया, और ये गाना इतना पॉपुलर है कि 50 साल के बाद भी आज के सिंगर्स इस गाने के कवर बना रहे हैं और काफ़ी हिट भी हो रहे हैं। One of my favorites from today's playlist, लग जा गले, लता जी की आवाज में।

श्री 420 फिल्म से था ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। और आज ब्लैक एंड व्हाइट हरा के गोल्डन हरा के कुछ गाने आप तक लेकर के आई हूँ मैं। वैसे उस जमाने में ज्यादातर गाने रोमांटिक और मेलोडियस हुआ करते थे, और सही मायने में उस समय अगर कोई एक सिंगर थी जो कि छाई हुई थी, जो इंडस्ट्री में रूल कर रही थी, तो वो थी लता मंगेशकर जी। वैसे जब लता जी मुंबई आई थी तो उन्होंने अपने संगीत की जो ट्रेनिंग है वो उनके गुरु विनायक जी के अंडर शुरू की थी, लेकिन 1948 में विनायक जी नहीं रहे, जिसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर गुलाम हैदर ने उन्हें मेंटोर किया एज अ सिंगर। उस समय उन्होंने लता जी की मुलाकात करवाई थी प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी जी से, जो कि 1948 की फिल्म शहीद बना रहे थे। लेकिन तब शशाधर साहब ने लता जी की आवाज़ को बहुत पतली कह करके रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से हैदर जी बहुत खफा हो गए थे कि उन्होंने इस आवाज़ को परखा और तराशा और किसी को ये आवाज़ पसंद नहीं आई, तो उनके ईगो पे बहुत ठेस पहुंची थी। उन्होंने कह दिया था, लता मंगेशकर जी से कहा था कि एक समय आएगा जब यही सारे डायरेक्टर्स म्यूजिक प्रोड्यूसर्स तुम्हारे कदमों में गिरे हुए मिलेंगे तुम्हें, और तुमसे भीख मांग के कहेंगे कि मेरी मूवी में गाना गा दो। और लो, ये बात सच भी हुई। वो हैदर जी ही थे जिन्होंने लता जी को अपना पहला ब्रेक दिया था विद द सॉन्ग दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं गाना छोड़ा। मूवी थी मजबूर, जो कि 1948 में आई थी, और इनका बिग ब्रेक बन गया था ये अपने करियर में। लता जी ने खुद भी ये डिक्लेयर किया था कि अगर उनके कोई गॉड फादर हैं या थे तो वो गुलाम हैदर जी ही थे। वो पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने उनमें भरोसा दिखाया। तो चलिए सुनते हैं लता जी का ही अगला गाना, वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स फ्रॉम द फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। अजीब दास्तां।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527888291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527888291 या 95238478 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर और आज ब्लैक एंड व्हाइट इरा के, गोल्डन इरा के कुछ गाने आप तक लेकर के आई हूँ मैं।

0: ना क्या कहेगा।
1: किशोर दा और आशा जी की आवाज में ये गाना सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर पेइंग गेस्ट फिल्म से। वैसे ये गाने मुझे बहुत पसंद है, और अगर गोल्डन एरा की मेलोडी क्वीन लता दीदी की बात करें तो वो गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन तो थी ही, लेकिन अगर एक और एक ऐसी आवाज थी जो उस समय छाई हुई थी तो वो थी मोहम्मद रफी साहब की। क्या आप जानते हैं, रफी साहब को घर पर फीको बुलाया जाता था, और उनका म्यूजिक वर्ल्ड में और सिंगिंग में इंटरेस्ट तब आया जब वो किसी और को इमिटेट करते हुए पकड़े गए थे। एक्चुअली उनके गली में एक फकीर था जो कि बार बार आता था और कुछ तो बोल करके कुछ लोग या कुछ दोहे बोलता रहता था, और वो सुन सुन करके मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आदत हो गई थी उसकी कॉपी करने की, और वो कॉपी करते थे तो खुद उनका इंटरेस्ट आया म्यूज़िक में, और लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया कि ये तो बच्चा गा सकता है, और तब जा कर के उन्होंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। वैसे रफ़ी साहब बॉक्सिंग के भी बहुत शौकीन थे, और बॉक्सिंग किंग उस समय के मोहम्मद अली वो शिकागो गए थे टूर के लिए, तो रफ़ी साहब ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की अपने परिवार वालों से, साथ ही टूर के ऑर्गेनाइजर्स से, कि वो उन्हें भी शिकागो लेकर के जाएं और मोहम्मद अली जी से मिलवाएं। वैसे तो मोहम्मद अली किसी से मिला नहीं करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इंडिया से एक इतना बड़ा कलाकार आया है शिकागो उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने खुद समय निकाला और मोहम्मद रफ़ी जी से मिले थे। और एक ज़माने में रफ़ी जी ने कहा था कि द ओनली सेलिब्रिटी जो वो मानते हैं कि एक सेलिब्रिटी है तो वो सिर्फ मोहम्मद अली हैं। चलिए, खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, ये बहुत ही बड़ी बात है। सुनते हैं रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में गाना नया दौर से उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वीकेंड क्लासिक।

0: हिंदुस्तान।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
9: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स।
2: बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक, हकाम बाईपास, सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक, मैरवा, सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
10: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे।
2: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। गोल्डन एरा की काफी ऐसी फिल्म्स थी जिन्हें आज भी बहुत ही बढ़िया माना जाता है, जिनमें से गुरुदत्त साहब की प्यासा और कागज के फूल, राज कपूर साहब की आवाज और श्री 420, महबूब खान साहब की मदर इंडिया और के आसिफ जी की मुगले आजम रही हैं। ग्रेटेस्ट फिल्म्स के ग्लोबल लिस्ट में रेगुलर फीचर होने के बाद भी ईच वन ऑफ दीज क्लासिक्स इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड सिनेमा इन द सब कॉन्टिनेंट फॉर डेकेड्स टू फॉलो। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस जमाने में फिल्म को या तो कमर्शियल सक्सेस मिलती थी या क्रिटिकली लोगों को फिल्म अच्छी लगती थी। एक ऐसी फिल्म बना पाना जो कि लोगों को भी अच्छी लगे और पैसे भी खूब कमाए, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर जाकर मुगले आजम और प्यासा जैसी फिल्में आईं जो कि कमर्शियली भी हिट हुई और पैसे भी इन्होंने खूब कमाए। पर उस दौरान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली हिंदी फिल्म अगर कोई थी तो वो थी महबूब खान साहब की मदर इंडिया। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इस फिल्म ने। पर फिलहाल सुनते हैं गाना हम उस फिल्म से जिसमें नरगिस और मधुबाला जी को माला सिन्हा और वहीदा रहमान जी ने रिप्लेस किया था। मैं बात कर रही हूँ फिल्म प्यासा की। इस फिल्म में पहले नरगिस और मधुबाला जी लीड रोल निभाने वाले थे, लेकिन दोनों एक्ट्रेसेस सेम डेट पे अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स बड़ा ही चिढ़ गए और उन्होंने फिर दोनों को ही कह दिया कि मत करो ये फिल्म। और गुरुदत्त जी ने खास कहा कि माला जी और वहीदा जी को ये रोल दिया जाए। एंड दैट्स हाउ हमने इन दोनों को देखा इस फिल्म में। चलिए सुनते हैं इस फिल्म का गाना हम आपकी आंखों में, रफी साहब और गीता दत्त जी की आवाज में।

0: आज हम बात कर रहे हैं उस जमाने के बारे में जब लोगों का थिएटर्स तक जाना और फिल्में देखना अच्छा नहीं माना जाता था। मैं बात कर रही हूँ द ब्लैक एंड व्हाइट एरा के बारे में। जब फिल्में देखना ही अच्छा नहीं माना जाता था तो सोचिए फिल्मों में काम करना कितना बुरा माना जाता होगा। लेकिन उस जमाने में भी ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस थीं जिन्होंने इन बंदिशों को तोड़ा और बाहर आईं और बहुत ही खूब सिनेमा हमें दिया। वैसे अगर कोई दो ऐसे उस जमाने के स्टार्स थे, यू नो ब्लैक एंड व्हाइट एरा के, गोल्डन एरा के स्टार्स थे, जिन्हें ग्लोबली पसंद किया गया, जो कि इंटरनेशनल स्टार्स बन गए, तो वो थे राज कपूर साहब और राजेश खन्ना जी। राज कपूर साहब तो इनफैक्ट वो पहले ऐसे इंडियन स्टार थे जिनकी फिल्में बाकी लैंग्वेजेस में भी डब की जाने लगी। इंडियन लैंग्वेजेस ही नहीं, यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी इनकी फिल्मों को डब किया जाने लगा और काफ़ी फैन फॉलोइंग थी इनकी। साथ ही राजेश खन्ना जी वो पहले ऐसे एक्टर बने जिनकी फिल्में जो थी वो अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में भी रिलीज़ हुई और लोग थिएटर्स तक गए जाकर के एक इंडियन एक्टर की फिल्म देखने के लिए, क्योंकि राजेश खन्ना जी का तो स्टार्डम ही कुछ ऐसा था। तो उस जमाने के बेहतरीन सितारों के नाम आज का ये शो था और राजेश खन्ना जी की बात हो रही है तो उन्हीं का अगला गाना आपको सुनाते हैं। राजेश खन्ना जी और आर डी बर्मन जी की साथ में पहली फिल्म थी, लता जी की आवाज में ये गाना है, आजा पिया तो है प्यार दूं, बहारों के सपने फिल्म से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।
1: आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी भैया

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रिमझिम पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
2: मनीषा जैन और प्रमोद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, शिक्षा, समुद्री व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्र
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिदम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
1: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दे अपना।
2: मुंबई से बोल रहा हूँ, मुझे गाना सुनना है।
1: ओके, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: मुझे गाना सुनना है जुदा अपने दिल भर को होने लगी है मोहम्मद।
1: अच्छा, और ये गाना आपको किसको सुनाना है?
2: और रुबीना जी, दीप्ति जी, हीना जी, गुड़िया जी, सज्जा जी, शबनम जी और अरिसा, सभी को सुनवाना चाहता हूँ।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हमको एक गाना सुनना है।
0: और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी हम लुधियाना से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ, फिर बताएं क्या हो रहा है?
1: बस काम हो रहा है, सिलाई कर रहे हैं यहाँ पे।
0: बढ़िया है।
1: आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं 5 बजे से।
0: जी जी
1: हाँ, 7 बजे तक।
0: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: मेरा एक फरमाइश है, कोई राजू प्यार न करियो, दिल छूट गया।
0: अच्छा जी, फिर ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: जी एक मेरा मंजीत दोस्त है, उसको सुनाना चाहते हैं और आपको सुनाना चाहते हैं। आप जो इतना रेडियो सुन रहा है सबको सुनाना चाहते
0: हैं। ओके ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते,
5: और बताइए
6: कैसे हैं आप?
5: बहुत बढ़िया, आप ना सुनाइए।
6: मेरा भी ठीक है, क्या हो रहा है अभी?
5: अभी तो पूछ रही हूँ, आपके पास फोन लगा रहे।
6: अच्छा, फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
5: गाना सुनना है वो पवन सिंह का।
6: जी, सॉन्ग बता दें।
5: सॉन्ग का नाम है धनी हो सब धन सहारे निभाते।
6: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
5: जितना रेडियो रिंगिंग सुनने वाले बंदे हैं सबको, और साथ में आप भी।
6: जी
5: जी,
6: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी बहुत आपको नमस्कार।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: लालबहादुर प्रसाद नारायण पंचायती।
1: अच्छा, कैसे हैं आप?
0: ठीक है, आपका प्रोग्राम सुने बहुत अच्छा लगा, जो आपकी आवाज बुलंद है।
1: जी धन्यवाद। और सब बताएं क्या हो रहा है?
0: अभी तो गैस लेकर आ रहे थे, टाइम में थोड़ा देखते हैं, लग रहा है कि
1: तबीयत ठीक है ना?
0: हाँ बिल्कुल, थोड़ा धूप की।
1: अच्छा जी, क्या फरमाइश है आपकी?
0: स्वास्थ्य अभियान का जाना, स्वास्थ्य अभियान
1: क्या?
0: स्वास्थ्य अभियान का, सफाई कर्मचारी का।
1: जी जी, किसी को सुनाना चाहते हैं?
0: जितना भी लगे हैं लोहिया स्वास्थ्य अभियान से भारत वर्ष में उनको सारे को।
1: ओके,
0: चार महीने के पश्चात इंजीनियर स्वास्थ्य मिलेगा और जितना ग्रामीण क्षेत्र से लगे हैं सारे को और आपको।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो इंजीन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: इसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं बहुत अच्छा हूँ, अपना सुनाइए घर परिवार में रेडियो रंजन पूरा परिवार कैसे हैं आप लोग?
6: हम सब बढ़िया हैं। नाम बता दे अपना।
5: रामविलास प्रसाद कुशवाहा, कृतपुर बघा, पूर्वी चंपारण से।
6: ओके,
5: तुम कैसा है उधर?
6: मौसम बढ़िया है अभी फिलहाल उधर।
5: जी जी जी, यहाँ पर भी सुबह में बारिश हुई है, मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है इधर भी।
6: जी चलिए तो बढ़िया है।
5: जी जी,
6: थैंक। क्या फरमाइश है आपकी?
5: फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में, भोजपुरी सॉन्ग है और गाने का बोल है तू दीवानी हो ताजा।
6: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
5: जी सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ। और दोस्त होंगे संजय, साजिद, दीपक कुमार, दासी, रामचंद्र, मुखर्जी, मोहम्मद सलार जी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारसनाथ कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू उस विकास, अभय कुमार, सुदीश कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, बौली प्रसाद कुशवाहा जी, रविन्द्र प्रसाद कुशवाहा जी और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुजीता जी, सूर्यमोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जख्मी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी और अभी रेडियो रेंजिंग सुन रहे सभी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
6: ओके फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: रेडियो रिमझिम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: धन्यवाद बहन। और बहन जी आप कैसे हैं अभी?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी बहन जी हम भी बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है और व्यस्त है बहन जी।
0: ओके, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन जी।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: और सब बढ़िया है बहन जी। इन दिनों क्या है, मैं खेती बाड़ी करता हूँ बहन जी, किसान हूँ।
0: ओके,
1: और इन दिनों मक्का की कटाई चल रही है बहन जी, और धान की कटाई भी हो रही है, और गेहूं धान की कटाई, गेहूं और चने की कटाई पहले से हो गई है।
0: हाँ फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: जी बहन जी गाना सुनने से पहले बहन जी आप कौन बोल रही है? आपकी आवाज जो है बहुत ही मधुर, मनमोहक, मीठी, प्यारी और लाजवाब पेशकश होती है बहन जी।
0: जी मेरा नाम भारती है और मैं रेडियो रिमझिम से बोल रही हूँ।
1: हाँ तो भारती जी आपके लिए दो पंक्ति है, दो लाइन की पंक्ति है, अगर इजाजत हो तो बोलो।
0: जी बोलिए।
1: जी जिंदगी एक सफर है, जिंदगी एक सफर है, सफर सभी की चलती रहे। जिंदगी एक कारवा है, कारवा सभी की चलती रहे। जिंदगी एक झरोखा है, झरोखा जो है नदियों की तरह कल कल कल कल छल छल छल छल करके बहती रहे। और रेडियो रिमझिम में आवाज की दुनिया के बुलंद सितारे, प्यारी बहना भारती जी की आवाज जो है स्वर लहरी में, स्वर धारा में हमेशा बहती रहे। और हेलो रिमझिम का यह कारवा का सफर हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे, हमेशा चलती रहे बहन जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहन जी, तो मैं कुछ बोल दिया बहन जी।
0: जी
1: और आपके कुछ प्रशंसक श्रोता भाई बहन हैं बहन जी, इजाजत हो तो दो चार लोगों का नाम ले लूं बहन जी।
0: जी बोलिए।
1: जी हमारे सागर मध्य प्रदेश से हमारे प्रोफेसर चंद्रेश गौहर जी साहब है, जालौन उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव जी है, हमारे विजेंद्र भाई विश्वकर्मा जी है दुल्हापुर यूपी से, मुकेश कुमार कश्यप जी है बहन जी, और हमारे भानवेरम वार्ड से भारत राम पटौती जी है, साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू जी है, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी जी है बहन जी, कन्या दमोह बालाघाट से हमारे आदरणीय झुरुआ राम साहू गुरु जी है, और डोंगरिया मलाजखंड से मुन्ना लाल पाटले जी है बहन जी।
0: जी
1: और आर्यन रेडियो की बहुत ही प्यारी उद्घोषिका आरजे उद्घोषिका आप ही की तरह
0: जी,
1: हमारी बहना पूनम गौतम जी है। अगर आप भी सुनते होंगे बहन जी तो आप उसको जानते होंगे।
0: जी जी
1: है ना। तो बहन जी और इन दिनों गर्मी बहुत ही चरम पर है बहन जी।
0: जी गर्मी तो है,
1: और हो सके तो पशु पक्षियों के लिए अपने घर के सामने
0: जी जी
1: पानी पानी भर के रखना चाहिए, ताकि वो बेजान बेजुबान जानवर जो है बहन जी वो उस पानी को वो पी करके अपना शीतलता प्रदान कर सके।
0: जी बिल्कुल।
1: और अपना सेहत का ख्याल अवश्य रखे बहन जी, क्योंकि जान है तो जहान।
0: जी बिल्कुल। फिर बताएं आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अब गीत तो ऐसा है बहन जी, एक मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना है बहन जी, ऐ यार सुन यारी मेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी।
0: और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
1: ये गाना तो सबसे पहले तो हमारी प्यारी बहना आरजे उद्घोषिका बहन भारती जी को हम डेडिकेट करना चाहेंगे, साथ ही साथ हमारे जितने भी अभी लिसनर श्रोता मित्रों का नाम लिया हूँ उनको भी डेडिकेट करना चाहेंगे, और साथ ही साथ हमारे एफएम रिमझिम के जितने भी सुनने वाले तमाम श्रोता मित्र हैं
0: जी,
1: भाई बहन है, उनको हम डेडिकेट करना चाहेंगे बहन जी, और साथ ही साथ हमारे रेडियो रिमझिम के जितने भी आर्य उद्घोषक भाई बहना है
0: ओके,
1: उनको भी हम डेडिकेट करना चाहेंगे भारती बहन जी।
0: ओके तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी।

0: पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्कार मैडम, मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
5: जी जी बताएं, क्या फरमाइश है आपकी?
6: क्रांति फिल्म का सुनना गाना मुझे।
5: जी
6: क्रांति फिल्म का सुनना मुझे गाना, अब के बरस में मुझे भर दे रानी।
5: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहते हैं?
6: जी मैं सभी श्रोतागण को सुनाना चाहता हूँ और आपको भी।
5: ओके तो ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

ना कदम कर...

0: के बरस।
1: हेलो
2: हेलो मैडम,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
2: हेलो मैडम,
1: क्या नाम है आपका?
2: प्रीति।
1: और आप कहाँ से हैं?
2: कोन्हा मोड़।
1: फिर बताएं कैसी हैं आप?
2: ठीक है, आप बताइए।
1: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
2: सोई हूँ। आपके पास कॉल लगने का इंतजार कर रही थी, सोमवार को, फिर बुधवार को, एकदम दिन याद करके रखी हूँ कि हाँ आपसे बात करना है।
1: फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी, बता दें।
2: आहो राजा।
1: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
2: आपको, सिर्फ आपको।
1: बिल्कुल, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हेलो मैडम, नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: जी, आपको भी साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आप गाना सुनवाने की। आज पहला दिन है कि आपका हम प्रोग्राम सुने हैं रेडियो पे।
2: जी
3: हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, लास्ट में आप जो है अदनान सामी का जो कव्वाली एक सुनवाई है।
2: जी जी,
3: भर दो झोली
2: है
3: ना। और जो आप टोन में जो आप टोन में बोलती हो ना।
2: हाँ,
3: वो बहुत हमको भाता है, इतना अच्छा भाता है।

0: बाबू नाम का है उनको सुनवाना है और एक बेनजीर है उनको सुनवाना है।
1: ओके
0: बाबू को सुनवाना है।
1: और सब बढ़िया ना, आप ठीक है ना?
0: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बढ़िया है, आपकी दुआ से बहुत कुछ अच्छा है। अब कल का बारी है बकरीद का हम लोग का
1: जी,
0: और उसी का तैयारी चल रहा है।
1: फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रह सकते
0: हैं
1: साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: जी। अच्छा, मेरा बताएं कैसे हैं। कुछ
0: मैं भी ठीक हूँ। फिर बताएं क्या हो रहा है? खाना
1: नहीं, आपका इंतजार हो रहा है, सब रिकॉर्डिंग चालू हो गई।
0: हो गया?
1: जी मैडम जी, बंजारा
0: ओके, और बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का कभी आएगा मेरे बंजारा।
0: ओके, और ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो आप देना है सब दोस्तों के साथ।
0: ओके ओके, फिर

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
3: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
4: जी नमस्कार।
5: नमस्कार
4: जी मैडम जी, क्या हाल चाल है?
5: मेरा बढ़िया, आप अपना बताएं।
4: हम लोग का तो ठीक ही है
5: जी। क्या फरमाइश है आपकी, बताएं।
4: दिल है बेताब मूवी का गाना है
5: जी।
4: क्या तुम्हें पता है ए गुलशन,

0: और सबसे पहले सुनाना चाहता हूँ आपको, जितने रेडियो रेंजिंग है सभी लोग सुनेंगे
1: जी जी,
0: और हम लोग धनाव से एक साथ मास्टर भी सुनेंगे, और हम लोग जितने रेडियो रोशन तरह में काम करते हैं केरल का काम, हम लोग सभी लोग सुनते हैं। नौशाद भाई है, गिलानी भाई है, समीम हजाम है, शाहिद मुखिया है, लोग सभी लोग सुनेंगे।
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
0: थैंक यू। कैसी हैं?
1: अच्छे हैं, आप अपना बताएं।
0: हम भी अच्छा, हम सीमान से बोल रहे हैं, नीलम।
1: अच्छा जी, तो बताएं फिर क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं।
1: है, कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: हमको गाना सुनना है, उन्हीं है नया मेहमान जुड़े वाले का गाना, नहीं है करीना पांडे का नया मेहमान जुड़े वाला का।
1: जी,
0: वही वाला सुनना है।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
0: आप सभी को, जितने लोग रेडियो सुन रहे हैं उन सब।
1: ओके,
0: मैं हर फिल्म को सुनाना चाहती हूँ।
1: जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone kindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो, नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: हाँ, मैं मैडम हीरा सानी बोल रहा हूँ, संबलपुर ओडिशा से।
5: जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक है मैडम, इधर अभी बहुत गर्मी चल रहा है।
5: अच्छा जी, गर्मी उधर है?
6: बहुत गर्मी है आपके तरफ, गोपालगंज में तो गर्मी नहीं होता होगा।
5: गर्मी होता है लेकिन अभी फिलहाल मौसम ठीक है।
6: अच्छा अच्छा, इधर तो बहुत 45 डिग्री होता है गर्मी।
5: हाँ, इधर भी बढ़ता है लेकिन अभी ठीक है।
6: ठीक है मैडम, तो
5: फिर बताएं गाना कौन सा सुनना है आपको?
6: दो आंखें 12 हाथ फिल्म का।
5: जी
6: हाँ, लता मंगेशकर का गाना है, तैयार छोटे झूठों का बड़ा सरताज निकला है।
5: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
6: अरे अपने दोस्तों लोगों को।
5: अच्छा, हाँ हाँ सुन रहे हैं।
6: मेरे दोस्त लोगों को भी सुनाना चाहता हूँ, और ये मेरा दोस्त है आपका गोपालगंज में ही है, अरविंद जायसवाल।
5: जी
6: हाँ, अरविंद जायसवाल, और यही सचिन तिवारी। ठीक है मैडम, और कहिए।
5: और सब बढ़िया, आप अपना बताएं।
6: बस यही चल रहा है, धंधा पानी मंदा है, अभी गर्मी का मौसम है मैडम।
5: जी
6: हाँ, मेरा इलेक्ट्रिक का दुकान है।
5: हाँ,
6: चल रहा है।
5: हाँ,
6: ऐसे इधर बसर चल रहा है।
5: चलेगा, अच्छे से चलेगा।
6: हाँ, और मैडम, हाँ ये कब सुनवाएंगे ये गीत?
5: रिकॉर्डिंग चालू है, थोड़े वक्त के बाद चला देंगे।
6: ठीक है मैडम, ठीक है,
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं रमाल गुप्ता बिरला खास से बोल रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बड़ा धूप लगल बा, बड़ा घाम भइल बा, छिया पथल बनी जा।
0: अच्छा जी, धूप भइल बा बहुत ज्यादा,
1: बड़ा घाम भइल बा। हवा बहते नीक है, छिया पथल बनी है। गीत सुने के बा
0: जी, बताएं कौन सा गाना सुने?
1: दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।
0: अच्छा, और ये गाना क्यों सुना एक बार?
1: गाना सुनवाएंगे प्रोपराइटर हाफिज अंसारी को
0: जी,
1: और साइकिल दुकान संदापुर सतीश जी को।
0: जी जी
1: जी, इन्हीं लोगों को।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही इसके साथ। रेडियो में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान,
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up, pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: नमस्कार आरती जी, दिल से धन्यवाद।
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: आपको दिल से धन्यवाद मैम।
6: जी शुक्रिया।
7: बहुत दिनों से इंतजार था, आप सब सूचना दिए।
6: जी
7: और सब सुनाइए।
6: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
7: बस हम भी काम पे हैं।
6: जी
7: टाइम हुआ तो रुक गए के बाद कॉल लगाए, तो दूसरा कॉल लगी है ना।
6: जी
7: और सब कैसा है मौसम?
6: मौसम अभी फिलहाल ठीक है।
7: बारिश हो रही है।
6: मौसम कैसा है
7: इधर? तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप निकल रही है। नाश्ता पानी हो गया?
6: जी मेरा हो गया। आपका?
7: हमारा तो 9 बजे ड्यूटी है ना, तो नाश्ता करके तो आते हैं।
6: अच्छा,
7: अब चाय के टाइम हुआ, चाय का होगा।
6: ओके फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी
7: आज? सीमा सरगम के सीमा गुप्ता का है सॉन्ग।
6: जी
7: मारही के बांधे तो मार देना जान से, नजरिया के बांध से।
6: जी
7: सीमा गुप्ता का है।
6: हाँ हाँ
7: हाँ, तो वही बजा दीजिए।
6: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
7: पूरे सारे लिसनर जितने सुनने वाले हैं सब सुन लेंगे, हम तो पुराना लिसनर है ना।
6: हाँ जी,
7: बहुत दिनों से इंतजार था कि कब भारती जी का थोड़ा शो सुने कैसा है। तो कल सुने हैं तो हाँ, मैं बोला कि हाँ ठीक है चलिए।
6: ठीक है फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: हाँ जी।

0: हेलो
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: करिश्मा कुमारी।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: तीर्थ नारायण से
1: जी। कैसी हैं आप?
0: बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। फिर बताएं क्या हो रहा है?
0: कुछ भी नहीं, आपका फर्स्ट कॉल लगा रहा है।
1: खाना हो गया?
0: हाँ, आपका हो गया
1: जी। फिर बताए क्या फरमाइश है आपकी?
0: हमको नीलकमल सिंह के बाद में गीत सुनना है।
1: और कौन सा सॉन्ग?
0: कोई भी बजा दीजिए।
1: आप अपनी पसंद नहीं बताएंगी?
0: व्यवसाय बजा दीजिए।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना चाहती हैं?
0: हाँ, सबसे पहले आपको और जितना सुन रहे हैं लो रेडियो मुझे मुझको आप मेरे गणेश जी सुनेंगे और हम सुनेंगे।
1: ओके, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू दीदी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।